अभी संभल जाइए भाई, मत आने दीजिए जीवन में वो कठिन समय। पकड़िए प्रभु के चरण। संसार को अपना समझने की भूल हमसे आज तक हुई है, और ये जितना दुख जीवन में है ये उसी भूल का परिणाम है। और मैं साथ साथ कहता चलूं, लड़ झगड़ मत पड़ना किसी से, बस केवल इस बात को समझ लेना, संसार में जितनी आशा है, अच्छा आशा अपने से ही तो होती है, पराए से कोई आशा नहीं है, पराए से कोई आशा नहीं है। और संतों का सिद्धांत है, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। कई बार आपसे मैंने कहा, भाई संसार से सुख की आशा का नाम ही दुख है, और सुख की आशा किससे होगी, जिसे आप अपना समझेंगे। एक बार अपना प्रभु को समझ कर देखिए, सुख की आशा पूर्ण हो जाएगी, सदा सदा के लिए पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए व्यास जी ने समझाया था, व्यास राधिका रमण बिन

तन बलहीन हुआ, बुद्धि कार्य नहीं करती, दो पग चलने के लिए भी मैं आश्रित हूं, झूठे कुटुंबी के रंग भीनो और सांचे प्रभु सो चित नहीं दीनो। जो वस्तुतः अपना था, जो जन्म जन्म का साथी है, उसके चरणों में कभी चित्त नहीं दिया और बस इसी झूठे संसार के रंग में रंगा रहा। रोगी कह रहा है, कहां लग कहूं मूर्ता अपनी, अब मैं अपनी मूर्खता कहां तक कहूं। ढक लिया जैसे जैसे माया ने मेरे मन बुद्धि को, आवरण पड़ गया मेरी मेरी बुद्धि पर और मैं सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाया, मैं सही समय पर सही दिशा में पग आगे नहीं बढ़ा पाया। नयन गए और श्रवण हूं और गए मुख दंत, बुद्धि घटी तन गति लटी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, तृष्णा को नहीं अंत। अच्छा, एक ये भूल भी न करना कि आपको लगे कि वृद्धावस्था आने पर विषय से अरुचि हो जाती है। महाभारत में भीष्म पितामह शरशय्या पर पड़े युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दे रहे हैं और उस समय महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि धर्मराज, विषय की वासना यौवन के काल में इतना पीड़ित नहीं करती जितना वृद्धावस्था में करती है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि पितामह, ये आप क्या कह रहे हैं, जब जब शरीर अशक्त है तो विषय में रुचि कैसे होगी। बहुत लोग ऐसा प्रयास करते हैं, भोजन कम कर देंगे और जाने कई कई साधन करते हैं कि मन से विषय की रुचि घट जाए। रसबल छूटे जो विषय रस, तब पावे विश्राम। हरि के भजन के अतिरिक्त मन को विषय से हटाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, कोई साधन कुछ नहीं कर सकता, अंत में सब असफल हैं। तो महामहिम कह रहे हैं कि धर्मराज, मेरे जीवन का अनुभव है, वृद्धावस्था आने पर तृष्णा और बलवती होती है और अधिक दुखदायी स्थिति क्या होती है कि युवावस्था में तन में और मन में बल और शक्ति रहती है, इंद्रिय निग्रह करना सरल है, लेकिन वृद्धावस्था में तो तन अशक्त हो जाता है, बुद्धि कार्य नहीं करती और कभी कभी कभी कभी व्यक्ति इस बड़ी हुई तृष्णा के कारण दुस्सह दुख पाता है। इसलिए स्वयं को सुधारने का, स्वयं को संवारने का और मैं कहूंगा स्वयं को सजाने का जो श्रेष्ठ काल है वो यौवन का काल है। युवावस्था में तो श्रृंगार अच्छा लगता है, बहुत छोटा सा बालक श्रृंगार करे तो भी अच्छा नहीं लगता, वृद्ध श्रृंगार करे तो भी संसार उपहास करता है। श्रृंगार कब अच्छा लगता है, जब युवावस्था होती है। ऐसे ही भक्ति क्या है, ये उर अंतर का श्रृंगार है, भक्ति जीवात्मा का श्रृंगार है। तो जब जब तन पर यौवन हो उसी काल में भजन करिए, उसी काल में हरि की भक्ति करिए। मैं तो कई बार कहता ही हूं ना आपसे कि भक्ति जीव को सताती नहीं है, भक्ति जीव को सजाती है, वो श्रृंगार कर देती है जीव का, अनेक अनेक सद्गुणों से वो सुसज्जित अलंकृत कर देती है जीव को, प्रभु के मिलन के योग्य बना देती है। पर मैं फिर कहूंगा भाई, सही निर्णय तभी वस्तुतः सही है जब वो सही समय पर लिया जाए। भजन तो करना है पर देर से नहीं करना है, देर ही अंधेर है, भजन के मार्ग पर देर ही अंधेर है। भजन करना है, आज करना है, अभी करना है, मन लगे तो भी करना है और मन लगे ना लगे तो भी करना है, भजन करना है, केवल भजन के लिए भजन करना है। ये भूला बिसरा जीव प्रभु के सन्मुख हो जाए, प्रभु से संबंध जुड़ जाए, प्रभु के चरणों से तन मन की गति रति लग जाए, इसलिए भजन करना है। प्रभु अपने लगने लगे इसलिए भजन करना है, प्रभु मीठे लगने लगे इसलिए भजन करना है। टूटी खाट न छाड़ी भावे, सुत के सुत

और बहुत लोगों से मैंने सुना है भाई, वो कहते हैं महाराज मरने से डर लगता है, हमको मरने से बड़ा डर लगता है। टूटी खाट न छाणी भावे और सुत के सुत नातीन खिलावे, लेकिन ये सब करने के बाद भी तृष्णा को नहीं, अंत संसार का विषय ऐसा है वो स्पर्श करते ही बढ़ने लगता है और फिर बढ़ता ही चला जाता है। विषय के सेवन से कभी विषय से अरुचि नहीं होगी भाई। ये सब बात मैं समेट कर एक पंक्ति में कह दूं, विषय का सेवन करने से विषय से अरुचि नहीं होगी, विषय के त्याग से ही विषय से अरुचि होगी। ये आप आज समझ लें या कभी समझिएगा। आप सोचें कि आज सेवन कर ले, कल दूर हो जाएंगे, कल कभी नहीं आएगा। विषय के सेवन से विषय में रुचि बढ़ती है। अग्नि में घी डालो तो अग्नि प्रज्वलित ही तो होती है। विषय का त्याग ही विषय से दूर लेकर जाता है। और मैं तो कभी कभी एकांत में बैठता हूं तो विचार करता हूं, दो स्थितियां आती हैं, मन जानता है कि यह अनुचित है, इसे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी बार बार उस ओर जाता है, बलात् कोई उस ओर ले जाता है मन को। ना करो तो भी मन दुख पाता है, करो तो भी मन दुख पाता है, पर विचार करना चाहिए, अगर ना करके भी दुख है और करके भी दुख है तो फिर ना करके ही दुख पा लेना चाहिए। कम से कम उस ना करने की अवस्था में आप तो अपने साथ होंगे, आपका आत्म बल तो उस समय बना रहेगा। दुख तो है और संसार में सुख की आशा लगाना ही बड़ी मूर्खता है, तो दुख ही दुख है भाई। मैं तो इसलिए आपको बीच बीच में कह देता हूँ, स्मरण करा देता हूँ कि साधन का पथ है भाई बड़ा कठिन है, खरोई कठिन है भजन डिंग डरिबो। संसार सरल है, विषय का सेवन बड़ा सरल है, खूब आनंद आता है थोड़ी देर के लिए तो, लेकिन संसार का विषय का सेवन करते करते कब जरा जीर्ण हो जाती है ये देह, कब चेहरे पर झुर्रिया आ गई, कब बाल सफेद हो गए, रोज देखते थे आप दर्पण में, देखते ही देखते ये झांकी हो गई और अभी आगे जाने और क्या दिखाई पड़ेगा, नैन गए और श्रवण हूं और गए मुख दंत। हमारे वृंदावन में एक संत थे, भजन करते थे, बड़े विनोदी स्वभाव के थे, युवावस्था में ही आ गए थे, बड़ा सुंदर उनका दर्शन था, वृंदावन में रहकर भजन किया, वृद्धावस्था आई तो आते जाते कोई भी बाबा बाबा कहकर चले जाता था, तो हंसते हुए कहते थे, बाल सफेद देखकर कहते थे, बोले केशव केसन अस्करी जो अरिहू न कराही, बोले इन श्वेत केशों ने तो हमारे साथ में वो किया है जो शत्रु भी नहीं करता। बोले केशव केसन अस्करी जो अरिहू न कराही, किसी ने कहा बाबा ऐसा क्या कर दिया इन केशों ने, बोले अरे चंद्रमुखी मृगलोचनी और बाबा कह कह जाही। तो भाई देखते ही देखते ही स्थिति आ जाएगी। मैंने तो कहा ना कि जैसा जल वो कूप में वैसा बाहर आए, महात्मा खींचे तो भी उसमें से वही आएगा, दुरात्मा खींचे तो भी वही आएगा, तन की गति तो भाई वही होनी है, वही होगी। इसलिए काल चुरैया चुग रही, और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज तो कहते हैं अरे भूले भूले कोई भूले, तुम जिन भूलो मालाधारी। व्यास जी ने कहा मूंड मुंडाए कि लाज निभाइए, आपको तो वैष्णव वेश मिला है, हरि का नाम मिला है माथे पर, ये हरि मंदिर है, गले में तुलसी की कंठी है, हाथ में जप की माला है, तुम जिन भूलो मालाधारी, बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान।

और यह रुचय मुख नाम ना आवे, जैवो जम के घर ही भावे। और उसमें दुर्दशा में दुर्दशा क्या है कि पीड़ा पा रहा है मन, पर फिर भी रुचता संसारी है, फिर भी इच्छा संसार की है। अभी मैं आपसे कह रहा था ना, छोड़िए एक बार मन को, छोड़ दीजिए, देखिए मन कहाँ जाता है, सहज में मन किस ओर जाता है, सहज में मन संसार का स्पर्श करता है कि नहीं, ये देखिए और देखते रहिए। रोगी यही देख रहा है कि मैं इतना दुख पा रहा हूं, देख लिया संसार का हर रंग कच्चा है, झूठा है, पर इतना होने पर भी कैसी माया ने मेरी मति फेरी है, कैसी मेरी मति भ्रमित हुई है कि यह रुचय मुख नाम ना आवे, तो भी संसार रुचता है पर मुख में हरि का नाम नहीं आता, मुख में हरि का नाम नहीं आता। और जैवो जम के ही घर भावे। सुनता हूं शास्त्रों पुराणों की कथाएं, सुनता हूं कि अंत में जम के घर जाना पड़ेगा, पर जम के घर जाना तो ठीक है लेकिन संसार नहीं छोड़ना है, ऐसी मन की दुर्दशा हो गई है। और ये आपकी मेरी भाई हम सबकी कहानी है, ये आपकी मेरी हम सबकी कहानी है। एक बात गांठ बांध लीजिए, आज भजन नहीं किया कल कभी आएगा नहीं, कल कभी नहीं आएगा। भजन आज नहीं किया तो फिर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और मैं तो आपको एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि अरे कभी बैठकर प्रभु के स्वभाव का विचार करिए, कभी बैठकर प्रभु के स्वभाव का विचार करिए, देखिए उनका स्वभाव कैसा है। रंच प्रेम में अपन पो हारत नवल किसो, श्री ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है, राई के दाने जितना कोई उनका भजन कर ले उसे अपना बना लेते हैं, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। और सही कहते हैं संत भाई, अस प्रभु छाण भजही जे आना, ऐसे प्रभु को छोड़कर कोई संसार का भजन करे तो ते नर पशु बिन पूछ समाना। और कल एक और बात मैंने आपसे कही थी, विवेकहीन पशुवत है पर एक प्रकार से पशु से भी गया बीता है। मनुष्य अगर विचार नहीं करता तो वो पशु नहीं है, पशु से गया बीता है, क्योंकि पशु में तो विवेक की संभावना नहीं है, आप में तो संभावना है, आप में तो संभावना है। तो मनुष्य यदि भजन नहीं करता है, मनुष्य यदि आत्म कल्याण का प्रयास नहीं करता है, मनुष्य यदि विवेक युक्त होकर विचार नहीं करता है तो वो पशुवत नहीं है, वो पशु से भी गया बीता है। पशु पंछी ताको समय मानत अपनो राई, मन लागो अति झूठ सो तज सांच ही सुख मूल। मन लग गया इस झूठ में, अब क्या करें, अब हटाए हटता नहीं। और ये सरल नहीं होगा भाई, आज तो आप में बल है, शक्ति है, सत्संग में जा सकते हो, दो घड़ी बैठकर भजन कर सकते हो, ग्रंथ का पाठ कर सकते हो, स्वाध्याय कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो, आने जाने में स्वतंत्र हो। कल जब निर्भर हो जाओगे, कल जब आश्रित हो जाओगे और कुछ जीवन में नहीं रहेगा, तब आपको लगता है भजन हो पाएगा। कितना क्षण भंगुर ये देह है,

झिली ना झिली, इसीलिए कहा है हरि का नाम रटले री रसना फिर अंत समय ये हिली ना हिली। अरे नेक सी पीड़ा कहीं तन में हो जाए सब भजन साधन छूट जाता है, सब भजन साधन छूट जाता है। नेक सत्तन में कष्ट हो, मन में कष्ट हो, इसलिए आज ये सुख का जो समय है इसका लाभ लीजिए। ये सुख सदा के लिए आपके पास रह जाए, आपके निकट रह जाए, इसका सदुपयोग करिए। भजन करिए और कब करिए? आज करिए, अभी करिए, यहीं से आरंभ करिए। और छाण सुधा के सुख फल ही जाए गही विष शूल, ये विष के फल मैंने खाए हैं और जो

और जैसे जैसे तन जीर्ण हुआ वैसे वैसे लोभ का रोग और बढ़ता चला गया। युवावस्था में तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, लड़ लेता है शरीर रोग से, वृद्धावस्था में तो वो भी नहीं रहता। ये पूरी चर्चा का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे तन जीर्ण होता है, संसार तो यही सिखाता है ना भाई, ये कोई अवस्था है भजन करने की, जब समय आएगा तब भजन करेंगे। संसार तो यही शिक्षा देता है, संसार तो यही सिखाता है, संसार तो कहता है मन लगाकर काम करो, संसार की शिक्षा तो यही है भाई, मन लगाकर काम करो। हमारा काम मन लगाकर करो, हमारे काम में कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए, हमारा काम करो, समय पर करो, मन लगाकर करो, यही संसार की सीख है। पर भाई संत सिखाते हैं मन लगा के हरि का नाम लो, संसार का काम बुद्धि लगाकर करो, माने जितनी आवश्यकता है उतना कर दो, उसके साथ बहुत लिपटने चिपटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बुद्धि का प्रयोग करिए, इन संतों की बात को सुनिए, फिर मनन करिए, चिंतन करिए, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या तात्पर्य है इनका, बुद्धि का प्रयोग संसार में करिए, निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना करिए, पर मन लगाकर हरि का नाम लीजिए। यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहो कौन है सचु पाए। राज महाराज जी ने आज के प्रसंग के बिल्कुल अनुकूल ये पंक्तियां मुझे लाकर दी हैं, और मैं चाहूंगा ये बड़ा सुंदर श्री चाचा वृंदावन दास जी का पद है, आप सब साथ साथ गाना।

और आपके हाथ में जो वाणी है उसके बिल्कुल अंतिम पृष्ठ पर चार पंक्तियां लिखी है श्री ध्रुवदास जी की हैं, प्रार्थना की है युगल चरणों में। सत्र का विश्राम इन्हीं पंक्तियों से किया करेंगे।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: सोचिए, एक दिन आपका मूड बहुत खराब है, दिल में हजार बातें हैं, लेकिन आप अपने मम्मी पापा या अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करने की जगह AI से बात करना शुरू कर देते हैं। ये सुनने में बहुत नॉर्मल लगता है आजकल, लेकिन क्या ये धीरे धीरे हमारे रिश्तों को बदल रहा है?
1: नया नजरिया विद आरजे पलक।
0: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे हैं नया नजरिया। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इमोशंस दोनों से जुड़ा हुआ है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। वेलकम मैम।
2: गुड मॉर्निंग, ओम शांति, थैंक यू।
0: ज्योति जी, आजकल काफी लोग हर प्रॉब्लम सबसे पहले AI से शेयर करते हैं और अपनों से बात ही नहीं करते, तो क्या ये स्मार्ट यूज है या ये हमारे रिश्तों से दूरी बनाने की शुरुआत है?
3: आज हम देख भी रहे हैं कि परिवारों में प्यार खत्म होता जा रहा है। आज बच्चे, हर कोई अपने आप को बच्चा है या बड़ा है, हर कोई अपने आप को अकेला फील कर रहा है। अकेला भी ऐसा फील कर रहा है कि अगर किसी की इम्पोर्टेंस उसकी लाइफ में रही ही नहीं है, ना बच्चों की लाइफ में पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस है, ना पेरेंट्स की लाइफ में आज बच्चों की इम्पोर्टेंस।
0: सही बात है,
3: सब अपनी अपने जीवन में जी रहे हैं और जब उन्हें सच में किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जिसके कंधे पे वो सर रख सके, जिसके पास वो जा करके जिसकी गोद का वो सहारा ले सके, तो उस समय पर उनको कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि AI ये नहीं दे सकता है।
0: बिल्कुल।
3: और इन्हीं चीजों को हमने खुद ने दूर किया है। आज कोई भी चीज, आज हम जब, अभी मैं रिसेंट एक सिचुएशन आपको बताऊं कि कल परसों हमारे पास एक फैमिली आई और उनका किसी कारणवश वैष्णो देवी जाना हो रहा था और रास्ते में ही परिवार था, उसमें जो फादर थे उनके किसी बड़े का फोन आया और कहा कि वहाँ की सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो आप लोग जहाँ हैं वहीं उतर जाएं। तो फादर बहुत, क्योंकि पहले के समय के हैं, तो उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट की अपने बड़ों की।
0: बिल्कुल।
3: वो तुरंत उतर गए। उतर करके जब वो आए, लेकिन जो आज के यंगस्टर हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनको अब वो बार बार जो और ग्रुप गया उसके फोटोज देख करके अब वो इरिटेट हो रहे हैं। उनके फादर ने घर वापस जाने की प्लानिंग भी नहीं की, उन्होंने दूसरे अपने किसी रिलेशंस के पास जाने की तरीका ढूंढा कि यहाँ हम चल करके किसी और जगह घूम लेंगे। माने वहाँ पे उन्होंने ऐसा भी नहीं किया कि आप घर में ही बैठे, डिनाई नहीं किया घूमने को, उन्होंने सिर्फ प्लेस चेंज किया। लेकिन बच्चे, क्योंकि AI से जुड़े हुए हैं, आज की टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो वो देख रहे हैं सबके फोटोज कि वो लोग घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, हम वहाँ नहीं गए हैं। वहां तो एंजॉय वो कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो सिचुएशन चली गई है, लेकिन यहाँ जिस जगह पर वो है वहां भी वो एंजॉय नहीं कर पा रहे।
0: सही बात
3: है। तो उनकी लाइफ तो अपने आप को वो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद को ही, किसी भी चाहे पास्ट की बातों को लेकर के वो अपने जीवन को कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में ले जा रहे हैं और उसकी एंजॉयमेंट खत्म हो रही है।
0: बिल्कुल।
3: 3 दिन के बाद उनका वो टाइम पीरियड एंड हो जाएगा, वापस घर चले जाएं, फिर उनको अफसोस होगा कि वो जो 3 दिन थे हम जहाँ रहे एटलीस्ट हम वहाँ एंजॉय कर सकते थे।
0: सही बात।
3: तो आज का टाइम यही चल रहा है, आज हम दूसरों की लाइफ से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, आए दिन हम ये चीजें देखते हैं, लेकिन हम उनकी पर्सनल लाइफ में उतर के नहीं देख रहे हैं।
0: सही बात।
3: कि उनकी पर्सनल लाइफ क्या सच में हैप्पीएस्ट है, क्या सच में उन्होंने कोई चीज सर्वाइव नहीं की, जो लोग वहां गए होंगे उन्होंने क्या सर्वाइव किया होगा, वो तो जब वापस आएंगे उनसे मुलाकात होगी तब, लेकिन उतने टाइम पीरियड तक तो उन्होंने अपनी पूरी ही टाइम को खत्म कर दिया, अपने रिलेशनशिप में भी एक दूसरे पे ब्लेम करके, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करके उस रिलेशंस को भी हम खराब कर रहे हैं। और आज यही कारण हो रहा है कि बच्चे थोड़ी सी बात में कोई सुसाइड कर रहा है, कोई जो है वो अपने घर को छोड़ के चला जाता है, तो ये सारी चीजें इसी वजह से, ये कोई स्मार्टनेस नहीं है, इसको हम सच्चाई कहें तो किसी भी एंगल से हम इसको स्मार्टनेस नहीं कह सकते हैं।
0: बिल्कुल।
3: क्योंकि ये हमें चीजें मिली थी सिर्फ इसलिए कि हाँ कभी कोई ऐसी सिचुएशन है जहां मेरे अपने मेरे पास नहीं है, उस सिचुएशन में हमें ये थोड़ा सा गाइड कर सके।
0: बिल्कुल।
3: लेकिन हमने पूरी लाइफ उसको सारे अपने मम्मी पापा भाई बहन फ्रेंड सब कुछ अगर हमने उसको बना लिया है तो फिर मेरे वो रिश्ते तो मुझसे दूर हो ही जाएंगे। और जब एक दिन ये टेक्नोलॉजी ये नेट बंद हो जाएगा, ये टेक्नोलॉजी बंद हो जाएगी, उस समय क्या सच में वो रिश्ते हमें मिल पाएंगे? तब हमें उन्हीं रिश्तों को ढूंढना पड़ेगा जो हमें मिले हैं ओरिजिनल में अपनों के। इसलिए अपने रिश्तों को तोड़े नहीं, AI से जुड़े, लेकिन इतना नहीं कि हम अपनों से दूर हो जाएं।
0: बिल्कुल।
3: तो अपनों की नजदीकी बनाए, थोड़ा सा टाइम छोड़ करके फोन को हम उनके पास बैठे उनके दिल की लेन देन करें, फिर आप देखें आपके जीवन में कितनी मिठास आती है और आपको खुशी मिलेगी। आप हेल्थ वाइज भी अच्छे होंगे। आपको AI आपको अच्छा बना करके भोजन नहीं देगा, आपको खाने की चीजें अच्छी अच्छी नहीं बना के देगा, वो मम्मा ही देंगी, है ना। और अगर कहीं पर भी कोई बात की कोई ऐसी मीठी यादें है, कोई गिफ्ट है, तो वो AI हमें नहीं देगा। हम एक दूसरे रिश्तों को ही आपसी कोई गिफ्ट की भी अगर छोटी सी भी गिफ्ट की लेन देन होती है, क्योंकि जैसे हम उस गिफ्ट को देखते हैं हमें वो पुरानी यादें याद आ जाती है।
0: सही बात
3: है। अपने रिश्तों को संजोएं, इन AI से जुड़े, लेकिन इतना नहीं जुड़ जाएं कि हम अपनों से दूर हो जाएं, अपने अपने ही रहते हैं। और ये AI एक सपना है और सपना आँख खुलते टूट जाता है।
0: काफी इंटरेस्टिंग बातचीत चल रही है। थोड़ी देर में बात करेंगे कि आखिर AI से बात करना लोगों को इतना कंफर्टेबल क्यों लगने लगा है।

रवि याद है तुम कहा करते थे कि सफर शुरू होने से पहले तुम सफर के मालिक होते हो, मगर जब सफर शुरू होता है तो सफर ही मालिक हो जाता है।

0: यह निकाला ना तूने देसी मुर्गा। अब उन इंटरनेशनल फाइटर्स के सामने ऐसा देसी फाइटर डालूंगा कि सालों की सांस बैक साइड से निकलेगी।
1: थैंक यू।
2: यस इट्स कंफर्म, हमारी सरकार ने राइट टू फाइट को इंडिया लाने का फैसला कर लिया है। R2F का पहला टूर्नामेंट मुंबई सिटी में होगा।
3: सर R2F दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज में एक बैंड स्पोर्ट है।
2: USA, UK, जर्मनी और कई यूरोपियन कंट्रीज में R2F एक बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है। तो यार स्पोर्ट को स्पोर्ट ही रहने दो, कुछ और नाम ना दो।
4: Hey David, आजा, ऊपर आ।

0: टूर्नामेंट किसी भी क्रिकेट लीग से ज्यादा पैसा कमा के देख। इट्स अ मनी स्पिनर, ये मेरा चैलेंज है।
1: मिस्टर ब्रिगेंजा, इंडिया में आपको उस लेवल के फाइटर्स मिलेंगे?
0: नहीं, उसके भी ऊपर के लेवल के मिलेंगे।
2: A country of a billion people and le deke what 10 world class sportsmen? And now by sanctioning RTF, you mean to say ye jo sadkon pe ladte hain wo seedha international fighters se ladenge?
3: Sadkon pe gali cricket khelne wale national cricket team mein nahi dekhe aapne?
4: Indian sports ka har champion shayad sadak se uth kar aaya ma'am.
5: Ex fighter Mr. Baz Rawat ki is very strongly for the R2F.
6: I don't agree with Mr. Baz Rawat.
7: हमारे देश को ऐसे स्पोर्ट की जरूरत है जिसमें थोड़ा स्ट्रेटजी, थोड़ा सा मेंटल पावर यूज हो।
8: ब्रेन पावर इज द मेन पावर यू सी।
9: व्हाट डू यू थिंक दिस इज ऑल अबाउट? फाइट भी तो ब्रेन से लड़ते हैं सर। अगर ये ब्रेन इस हाथ के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो सब खत्म।
10: स्ट्रेटजी, रिफ्लेक्स, कोऑर्डिनेशन ये सब लगता है इस गेम में। यू गॉट टू थिंक ऑन योर फीट और योर डेड।
11: ए पीटर, जाएगा क्या? बोलना जाएगा क्या?
12: अरे जाएगा नहीं, गया।

0: आजकल ना एक बात बहुत सुनने को मिलती है कि एआई मुझे जज नहीं करता, और शायद इसी वजह से कई लोग उससे बात करना ज्यादा इजी समझने लगे हैं।
1: नया नजरिया विद आरजे पलक।
0: प्रिया जी, हम अगर अपनी फीलिंग्स धीरे धीरे सिर्फ एआई के साथ ही शेयर करने लगे तो क्या रियल ह्यूमन कनेक्शंस इससे वीक हो सकते हैं?
2: जैसा कि पहला सवाल है कि वो मुझे जज नहीं करता है, तो ज्योति जी ने भी इसका आंसर दिया था कि हम उससे इसीलिए ही ज्यादा लिंकअप हो रहे हैं क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता।
0: बिल्कुल।
2: पर अगर हम कोर में जाकर देखें, अंदर जाकर देखें, डीपर डाउन देखें, वो ऑलरेडी हमें जज कर चुका है।
0: बिल्कुल।
2: वो हमें जान चुका है हमारी एक क्लिक से कि हम किस वे में, किस बिहेवियर के हैं, हमारा क्या मूड है, क्या नेचर है, हमारी क्या अप्रिसिएशंस है, हम किसे पसंद नहीं करते, वो सब हमारा डिटेल ले चुका है।
0: एग्जैक्टली।
2: और जब हम उसे अपनी डिटेल दे चुके हैं तो उसे अपना माल बेचना है, और अगर उसे अपना माल बेचना है तो हमारे पसंद का ही बेचेगा।
0: सही बात है।
2: और जितना माल हमारे को पसंद आएगा हम उतना उससे खरीदना स्टार्ट करेंगे। पर ध्यान दीजिए, ये AI है।
0: बिल्कुल।
2: आर्टिफिशियल है, जैसा कि ज्योति जी ने वर्ड यूज किया, सपना है। ये कैसे टूटेगा? आपका मोबाइल नहीं रिचार्ज है, या फिर आपका मोबाइल चार्ज ही नहीं है, आप बहुत दूर है, आपके नेटवर्क ही नहीं है, फिर आप किससे डील करेंगे? क्योंकि आप ह्यूमन से डील करना तो भूल रहे हैं, आप लोगों से डील करना तो भूलते चले जा रहे हैं, छोड़ते चले जा रहे हैं, उन पे विश्वास नहीं है आपको, आपको वो अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि वो जज कर रहे हैं। इंसान जज करेगा क्योंकि वो इंसान है। इस नेचर के साथ हमें हर इंसान को एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि हम भी इंसान है, हम AI नहीं है।
0: बिल्कुल।
2: हम सॉफ्टवेयर नहीं है, हम कंप्यूटर नहीं है, हम सिस्टम नहीं है, हम इंसान है। और हम इंसानों को एंड तक, लाश जलाने तक के लिए भी एक इंसान ही चाहिए।
0: सही बात है।
2: इसलिए इंसान से जुड़े रहिए, ये एक प्रलोभन है जो बहुत सुंदर है, जो हर कोई अट्रैक्ट हो रहा है, और बहुत अच्छा रीजन है। वो हमें कंपेयर नहीं करता, वो आपको कंपेयर कर चुका है, वो आपको जज कर चुका है, वो सब कुछ कर चुका है, वो बहुत मास्टर है। इसीलिए इस धोखे में नहीं रहे। और जैसा कि आपने लास्ट में पूछा कि क्यों ह्यूमन जो कनेक्शंस हैं वो वीक नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो रहे हैं। और आज आपको AI अगर गाइड कर भी देता है तो क्या फ्यूचर में सारे रिलेशनशिप्स के मसले जैसे पहले हमारी मम्मियां नाटक देख करके निकाला करती थी, तो क्या हम AI से पूछेंगे? और अगर उसी पे रिलाई करने लगेंगे तो इंसान से तो भरोसा उठ ही जाएगा ना, इंसान से तो हम बात करेंगे ही नहीं। और फिर क्योंकि हम इंसान हैं, हमें इंसान चाहिए ही चाहिए, ये गांठ मार लीजिए, चाहे ऐसे या वैसे मुझे हर इंसान से ताल्लुक रखना ही होगा, और अगर मैं नहीं रख रहा हूं तो ये मेरी

0: पट्टी खुजा के बीती रात, रास्ता ना दिखे कोई आज,
1: पत्ती जला रात भगा, पासा पलट दे बोर्ड उलट दे,
2: अरे उठ बाजी ले अपने हाथ,
0: टाइम जा रहा है भाई, तो करे रिस्टार्ट।

0: restart.
1: सोचिए, फ्यूचर में एआई इतना एडवांस्ड हो जाए कि वो आपकी फीलिंग्स समझकर इमोशनल सपोर्ट भी देने लगे, क्या उस वक्त भी मम्मी का प्यार, एक दोस्त की अंडरस्टैंडिंग या लाइफ पार्टनर का साथ रिप्लेस हो सकता है?
0: नया नजरिया विद आरजे पलक।
1: ज्योति जी, आप इसे स्पिरिचुअली कैसे देखती हैं?
2: जैसे कि आप देखिए, मशीन है, ये भी चीजें गैजेट्स हैं, मशीनें हैं, है ना? तो मशीन से अगर हम बहुत कुछ, अगर वो हमारे हिसाब से चल रही है, तब तक तो हम उसे यूज कर रहे हैं
1: जी।
2: और मशीन के साथ हम भी क्या बन रहे हैं? मशीन बन रहे हैं। तो हमें कोई भी एआई या कोई भी ऐसी चीज साइंस तैयार कर ले, कितना भी एडवांस, लेकिन, और इसके ऊपर तो एक मूवी भी बनी हुई है जिसमें एक रोबोट इमोशनली टच्ड है और पूरे सारे काम कर रहा है, लेकिन लास्ट वो इमोशन, वो है तो एक रोबोट ही
1: जी, बिल्कुल।
2: वो आपका बेटा नहीं बन सकता है, वो आपका फ्रेंड नहीं बन सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके अकॉर्डिंग काम कर सकता है, वो एक मशीन है। आप जब भगवान से रिश्ता बनाते हैं, वो धोखा नहीं देता है, और भगवान हमारे रिश्तों को भी बहुत सुंदर बना देता है, हमारे टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ देता है, लेकिन एक बार पहले खुद से और पहले उस परमात्मा से रिश्ता जोड़ के दे। आज हम मशीनों से रिश्ता जोड़ रहे हैं, उनसे पहले हम एक प्रश्न पूछें अपने आप से, क्या मेरा खुद खुद से रिश्ता है?
1: बिल्कुल सही बात है।
2: क्या हम खुद खुद के दोस्त बने हुए हैं? जब हम खुद के दोस्त नहीं है, हम अपने मन की फीलिंग भी हम एआई से पूछ रहे हैं, जब हम अपने ही दोस्त नहीं है, तो हम दूसरों के रिश्तों को कैसे संभाल के रख सकते हैं? तो पहले खुद के दोस्त बने, परमात्मा को अपना दोस्त बनाएं, और अपने जीवित रिश्तों के साथ, जो कभी भी फेल नहीं होंगे, उन रिश्तों के साथ जब तक ताउम्र चलेंगे, तब तक वो हमारे साथ रहेंगे, हम उनके साथ समय बिताएं।
1: अब सवाल ये है कि एआई को अपनी लाइफ का हिस्सा भी बनाएं और अपने रिश्तों को भी मजबूत रखें, इसका बैलेंस कैसे बनेगा, जानेंगे थोड़ी देर में।

0: AI हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुका है और आने वाले वक्त में इसका रोल और भी बदलेगा, लेकिन इंसान को इंसान बनाते हैं उसके रिश्ते और इमोशंस।
1: नया नजरिया विद आरजे पलक।
0: प्रिया जी, आज के यूथ के लिए टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बीच हेल्दी बैलेंस बनाए रखने के लिए आप ऐसी कौन सी सिंपल हैबिट सजेस्ट करेंगी?
2: जी, बहुत अच्छा। और मैं समझती हूँ शायद ये हमारा ऐसा जनरेशन ना हो जो ये बना पा रहा है, पर इसके बाद वाले ना बना पाए।
0: बिल्कुल।
2: तो उसके लिए इस जनरेशन को स्ट्रिक्टली लिमिट्स जो है वो बनानी पड़ेंगी, सो दैट आने वाला फ्यूचर सिर्फ AI फ्यूचर ना रह जाए।
0: सही बात है।
2: वो अपनी मम्मी को भी AI बना ले और पापा को भी AI बना ले, उससे पहले हम सबको संपूर्ण रीति इस चीज को बहुत लिमिट्स में रखना होगा। तो सबसे पहले कि मुझे लिमिट्स ही बाउंड्रीज क्रिएट करनी होगी कि मुझे कितना AI यूज करना है।
0: सही बात है।
2: जो मैंने कहा था कि एक बच्ची है जिसने एक क्वेश्चन पूछा कि व्हीकल कहाँ मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन था पापा को कैसे मनाए, तो यहाँ मुझे लॉजिकली सोचना है कि व्हीकल की इंफॉर्मेशन AI देगा, ओके फाइन, लेकिन पापा को कैसे मनाए ये क्वेश्चन मुझे मेरी माँ से पूछना है।
0: सही बात है।
2: तो ये चीज का मेरे अंदर बहुत क्लैरिटी चाहिए, मुझे मेरे अंदर बहुत शायद मेरे ख्याल से पावर भी लानी पड़ेगी, क्योंकि जनरेशन बात ही नहीं कर रही है अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स में वो ओपन नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर है, वो जज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही फिर वो मुझे आगे देखेंगे।
0: सही बात है।
2: तो आपकी बिल्कुल सही है, वो आपको भी आगे ऐसे ही शायद पुल एंड पुश करेंगे, लेकिन क्योंकि जैसा कहा कि इंसान है और इंसान के नाते मुझे इंसानों से जुड़े रहना है, यही स्वाभाविक है और यही होना चाहिए। हाँ, उन इंसानों में कोई एक तो जरूर होगा ना जो मेरे अकॉर्डिंग सोचता है, जो मेरे लिए सोचता है, और अगर वो भी कोई नहीं मिल रहा है फ्रेंड सर्कल में तो बेस्ट तो मेरे मम्मी पापा है।
0: बिल्कुल।
2: वो तो मेरे लिए ही सोच रहे ना। तो मैं AI की जगह अपने मम्मी पापा को कैसे दे सकता हूँ, माना मम्मी पापा को वहां ओमिट या खत्म कैसे कर सकता हूँ।
0: सही बात है।
2: जहाँ मैं AI को खड़ा कर रहा हूँ, तो ये बाउंड्रीज बहुत जरूरी है जो मुझे सेट करनी है कि कितना मुझे टाइम स्क्रीन को देना है और कितना मुझे रिलेशनशिप में देना है। ठीक है, मैं अगर पूरे दिन में 12 घंटा हूँ तो 6 घंटा अगर मैं 8 घंटा मैं अगर इन सब में हूँ, सिस्टम्स में हूँ, जॉब की वजह से किसी भी कारण से, तो बचा हुआ कुछ टाइम एटलीस्ट 1-2 घंटा तो मैं ह्यूमंस के साथ ह्यूमन की रीति ही डील कर।
0: सही बात है।
2: ये गैजेट को दूर ही रखूं, इनफैक्ट अपने स्किन से भी टच, मैं तो कहूँ अपने जेब में, अपने पर्स में, अपने वॉलेट, अपने बॉडी के आसपास भी मत रखिए। स्पेशली रिक्वेस्ट करती हूँ जो यंगस्टर्स हैं, सोते वक्त अपने रूम में इसे ना रखें, लेकिन आज के यंगस्टर्स ने इसे मुर्गा बना रखा है, कैलेंडर बना रखा है, इसे कैमरामैन बना रखा है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। लेकिन जीवन संभव नहीं है कब तक? ऑफिशियल आज तक, उसके बाद ऐसा नहीं है कि इसके बिना जिया नहीं जा सकता। बहुत लोग आज भी बिना मोबाइल के चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और जहां हम देखते हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं उनका स्क्रीन टाइम इतना छोटा, इतना मिनिमम है, यू कांट इवन इमेजिन कि वो कितना कम मोबाइल को देते हैं।
0: सही बात है।
2: इसीलिए वो सक्सेसफुल है। तो ये चीजें अगर मैं अपनी लाइफ में सेट कर लेती हूँ तो ये चीज मेरे को, मेरे लिए फायदा नहीं, मेरे आने वाली जनरेशन को भी फायदा करेगी, मेरे आने वाली पीढ़ी उसका फायदा उठा सकेगी। और पक्की बात है कि इन चीजों से अगर, इन प्रलोभनों से मैं अगर दूर हूँ तो मैं सक्सेसफुल भी 101% होऊंगा, क्योंकि मैं तो उसे मानती हूँ आज की डेट में सक्सेसफुल जो इन गैजेट से अपने आप को इच्छा से दूर रख पाता है, वो अपने आप में सक्सेसफुल है।
0: बीके सिस्टर्स, आज की इस मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन के लिए थैंक यू सो मच।
2: ओम शांति। थैंक यू।
0: दोस्तों, याद रखिए, टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को आसान जरूर बना सकती है, लेकिन अपनों का साथ, एक सच्ची मुस्कान और दिल से हुई बातचीत की जगह कोई मशीन नहीं ले सकती। AI को अपनी लाइफ का टूल बनाइए, लेकिन अपने रिश्तों को कभी ऑप्शन मत बनने दीजिए। मैं हूँ आरजे पलक, आपसे इजाजत लेती हूँ, फिर मिलेंगे नया नजरिया के एक अगले एपिसोड में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए 89.6 FM रेडियो महारानी कुछ हटके।

गुड मॉर्निंग फरीदाबाद भाई, कैसे हैं आप सभी? कैसा रहा कल का दिन? आई नो मंडे ब्लूज को दूर करते करते ना अब ट्यूजडे में आ गए और बहुत सारी बातें आज करने के लिए। वेलकम टू रेडियो महारानी, दिस इज अंजलि और शो लेकर आ गई हूँ अंजलि ऑन एयर। तो अब हर सुबह आपके साथ 7 से 11 रहने वाली हूँ, फुल ऑन एनर्जी के साथ, फुल ऑन वाइब के साथ। अंजलि ऑन एयर, अंजलि ऑन एयर। वीकेंड और मंडे से ना आज का दिन बहुत ही अलग होता है, एक अलग सी फीलिंग होती है। और वो पता है फीलिंग क्या है? वो फीलिंग ये बोलती है कि मंडे निकल गया है बॉस, अब पूरा वीक को थोड़ा सा सीरियसली ले ही लिया जाए। यानी कि जो भागदौड़ भरी जिंदगी है ना, उसमें वापस जाने का वक्त आ गया है। तो अगर आज बिना स्नूज के उठ गए है ना, तो यकीन मानिए आप ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं आज के दिन के लिए। और अगले 4 घंटे होने वाले हैं बहुत ही बिंदास, क्योंकि रेडियो महारानी पर आपको मिलने वाला है फरीदाबाद की अपडेट, वेदर, बॉलीवुड, सोशल मीडिया की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, साथ ही साइबर अलर्ट से लेकर फिटनेस वाले फंडे। तो बने रहिए रेडियो महारानी पर मेरे साथ और एंजॉय कीजिए पैसो ट्रैक।

चांसेस लगभग 80% है और ह्यूमिडिटी भी काफी ज्यादा हो गई है। ह्यूमिडिटी आपको 86% मिलने वाली है। तो यही कहना चाहूंगी, अगर बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं ना तो जरूर सोच कर ही जाइएगा, बिकॉज बारिश में फंसने से अच्छा है घर में बैठकर ना गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म पकौड़े खाओ यार, और आज के दिन को एंजॉय करो, इससे बेटर क्या ही होगा। तो भाई मौसम का मूड जरूर अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन आपका मूड फॉर श्योर अच्छा होने वाला है। तो इसी के साथ सुनते रहिए रेडियो महारानी पर ये शानदार सा ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

हसाता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो। है मन उदास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स लॉट।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: मेरा नाम डॉक्टर रवि शेखर झा है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद में डायरेक्टर ऑफ पल्मोनोलॉजी हूँ। बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश और बदलते हुए मौसम में सांस के मरीजों के लिए काफी तकलीफें आ सकती हैं। खास तौर पे ध्यान रखने की बात होती है कि जैसे ही बारिश में ह्यूमिडिटी बढ़ती है, हवा में नमी बढ़ती है, तो वायरल इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। साथ ही में बारिश के मौसम में हम गर्मी से सर्दी की तरफ ट्रांजिशन कर रहे होते हैं, तो इस चेंजिंग वेदर में सांस के मरीजों की तकलीफ बढ़ जाती है। खासतौर पर जिनको एस्थमा या सीओडी नाम की बीमारी है, उनकी सडनली वर्सनिंग होने के चांस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपको इनहेलर या नेबुलाइजर चलते हैं तो उसको इस मौसम में बिल्कुल भी बंद ना करें। थैंक यू
0: डॉक्टर कॉलिंग।
2: द लास्ट राइड किंग।

ओ ये तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और ये तारीख पे तारीख, फिर से ले आई हूँ मैं तारीख पे तारीख। वेलकम टू रेडियो महारानी। अंजलि अंजलि अंजलि। तो भाई सुबह उठते ही मैंने आज तारीख की बात कर दी और फाइनली सेगमेंट लेकर आ गई हूँ तारीख पर तारीख। तो चलिए जानते हैं आज क्या कुछ खास लेकर आई हूँ और आज के दिन को ना क्या खास बनाने वाला है। देखिए वैसे मैं अगस्त में आ गया और आपको नहीं लगता कि ये दिन कुछ ज्यादा ही जल्दी जा रहा है। आज 4th अगस्त है और आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है सिंगल वर्किंग वुमेन्स डे, यानी कि ये दिन उन सभी महिलाओं को सैल्यूट करता है जो अपनी मेहनत हिम्मत डेडिकेशन से ना सिर्फ अपना करियर संभाल रही है बल्कि अपनी जिंदगी के हर फैसले को भी खुद कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल कर रही है। और भाई अगर मैं बात करूँ ना आज के दिन की, तो आज का दिन वाकई सेलिब्रेट करना तो बनता ही है, फिर चाहे ऑफिस हो, बिजनेस हो या फिर अपना पैशन, हर वर्किंग वुमेन अपनी एक अलग पहचान बना रही है। और अगर आज के दिन को सेलिब्रेट करना ही है ना, तो अपने आसपास जितने भी वुमेन है ना जो आपका घर संभाल रही है, आपके ऑफिस में है, आपके दोस्त है, नो मैटर व्हाट, फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना दूर रहती है, आज ही जाके उन्हें अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा, एक अप्रिशिएशन मैसेज जरूर भेजिएगा और उन्हें ये जरूर बताइएगा कितनी खास है वो, क्योंकि वो मनिया ये जो वुमनिया है ना, ये अगर अपनी पर आ जाए ना तो कुछ भी कर सकती है। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ये पास ट्रैक, हम बढ़ते हैं आगे, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

हेलो हेलो एंटरटेनमेंट के पागल लोग, वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, जहां हम स्क्रीन के इस पार की दुनिया को थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा फनी और फुल मसालेदार अंदाज में डिकोड करते हैं। तो भाई, जिस शो ने जेल के अंदर से इतना ड्रामा बाहर भेजा कि घर बैठे लोगों को भी लगा भाई हमारी लाइफ तो काफी पीसफुल है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लॉकअप की। तो अब लॉकअप पहुंच चुका है अपने ग्रैंड फिनाले के दरवाजे तक, और जैसे जैसे ट्रॉफी करीब आ रही है, कंटेस्टेंट के असली गेम प्लान्स भी बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि रियलिटी शो का रूल सिंपल है। शुरुआत में सब बोलते हैं मैं ना यहाँ दोस्त बनाने आया हूँ, और फाइनली आते आते वही दोस्ती बदल जाती है, सॉरी ब्रो, ट्रॉफी के बीच में फ्रेंडशिप नहीं आती। इस शो में फाइट्स भी मिले, इमोशंस भी मिले, सीक्रेट्स भी मिले, और कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आए जहां ऑडियंस ने रिमोट नहीं बल्कि अपना पेशेंस पकड़ रखा था। और अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन बनेगा लॉकअप का अल्टीमेट विनर? किसके फैंस करेंगे सबसे ज्यादा नॉइस? किसका गेम पड़ेगा सबसे स्ट्रॉन्ग? और कौन निकलेगा असली जेल का बाजीगर? क्योंकि रियलिटी शो में आखिरी वीक में ना भाई कंटेस्टेंट नहीं बल्कि उनकी स्ट्रेटेजी का मेकओवर होता है। तो अगर आप भी पॉपकॉर्न लेके बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं उस फाइनल धमाके का, तो बने रहिए एंटरटेनमेंट की दुनिया के साथ। मैं हूँ गीत और चल रहा है सिनेमा का कैप्सूल।

हेलो हेलो जी, चलिए फिर अब बढ़ते हैं आगे बॉलीवुड की गलियों की तरफ। बॉलीवुड के गलियारे में आ गए हैं, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं हैप्पी वाले बर्थडे की। यानी कि आज हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है टीवी की एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी एक्टिंग और पर्सनालिटी दोनों से ऑडियंस का दिल जीत लिया। आज हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है रश्मि देसाई का। और अगर मैं रश्मि की बात करूँ ना, तो भाई उत्तरायण की तपस्या के किरदार से इन्होंने घर घर में एक पहचान बनाई है। इसके बाद रियलिटी शोज और टीवी पर इन्होंने अपनी एक अलग ही फैन फॉलोइंग बना ली है। आज भी इनके फैन इन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और तो अगर आप भी रश्मि देसाई के फैन है ना, तो जरूर बताइएगा कि आपको उनका कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद है। और ये बताने के लिए फटाफट से जाइए हमारे इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर अपना वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए विश करते हैं रश्मि को, विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे रश्मि। आप ऐसे ही अपने फैंस का दिल जीतते रहें और साथ ही बने रहे रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

सोशल मीडिया पर कोई ट्रेंड चले और लोग उसे फॉलो ना करें। अरे सोशल मीडिया पर अगर कोई ट्रेंड आया और लोग उसे फॉलो ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अब सवाल ये है कि हर ट्रेंड को फॉलो करना जरूरी है क्या? बात हो रही है अब सोशल स्यापा की, तो वही सबसे बड़ा स्यापा ये है कि आजकल इंटरनेट पर एक नया ट्रेंड काफी वायरल हो रहा है जिसका नाम है 10 मैक्सिंग। यानी कि इस ट्रेंड में ना लोग जानबूझकर धूप में घंटों खड़े हैं ताकि उनकी स्किन टैन हो जाए और वो इस ट्रेंड का हिस्सा बन सके। और देखा है आपने, जहाँ कुछ दिनों पहले सनस्क्रीन का इतना ज्यादा क्रेज था कि हर कोई इतने SPF लेवल वाली सनस्क्रीन ढूंढ रहा था, लेकिन अब भाई ना तो कैप, ना तो अम्ब्रेला, ना ही सनस्क्रीन, सबका खर्चा जो है बचने वाला है, बिकॉज अब लोग टैनिंग के पीछे भाग रहे हैं और टैनिंग ना फैशन का पार्ट बन गया है। लेकिन अब बात ये है कि क्या हमें वाकई ये ट्रेंड फॉलो करना चाहिए? तो चलिए एक्सपर्ट से जानते हैं। तो भाई यहाँ पर ना एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अगर आप बहुत देर तक धूप में रहते हैं ना तो ये आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है आपको और सनबर्न और बहुत सारी प्रॉब्लम। तो भाई यहाँ पर टिप ये है कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, ना कि किसी ट्रेंड को। और हमेशा याद रखिएगा कि लाइक्स एंड व्यूज आपको दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन हेल्थ रिप्लेसमेंट नहीं है। तो याद रखिएगा इन बातों को और साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक। मिलते हैं म्यूजिक ब्रेक के बाद।

शानदार तरीके से खेल रहा है। अब तक इंडिया ने 39 मेडल्स अपने नाम कर लिए और इतना ही नहीं जिनमें से 13 गोल्ड 17 सिल्वर शामिल है। और सबसे पता है सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस बॉक्सिंग में देखने को मिली है जहां इंडिया ने 7 गोल्ड और 3 सिल्वर जीते हैं। एथलेटिक्स में भी एथलीट ने दमदार खेल दिखाया और वेट लिफ्टिंग, जूडो, पैरा एथलेटिक्स और पैरा पावर लिफ्टिंग ने भी मेडल टैली को मजबूत बनाया है। तो यहाँ पर आज मैंने जो आपको गुड न्यूज दिया ना, ये सुनकर ना वाकई ऐसा लग रहा है कि ये जो मेडल है ना, हिंदुस्तान यानी कि भारत में नहीं, सिर्फ हम सबके घर में आया। और जो खुशी है ना वो पर्सनल सी है। ये मेडल सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये खिलाड़ियों की सालों की मेहनत है, डिसिप्लिन और देश के लिए जज्बे की कहानी है। ठीक है, तो भाई टीम इंडिया को हमारी तरफ से ढेर सारी बधाइयां। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और इंडिया का नाम रोशन करते रहिए। साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक जो है खास आपके लिए मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: है अंदर पॉल्यूटेड एयर घुसते रहती है। तो अगर पॉल्यूटेड एयर लगातार आपके फेफड़ों में घुसती है तो आपका एस्थमा बिगड़ सकता है, आपको सीओपीडी नाम की बीमारी हो सकती है, और साथ ही साथ एक बहुत खतरनाक बीमारी लंग कैंसर होने के चांस भी एयर पॉल्यूशन की वजह से बढ़ जाते हैं। इसके साथ हमें सबसे जरूरी बात ध्यान देने की है कि एयर पॉल्यूशन आपके सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि अगर पार्टिकुलेट मैटर काफी छोटे होते हैं तो आपके फेफड़ों के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाके आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपकी किडनी को और बॉडी के लगभग हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें पॉल्यूटेड एयर में जाने से पूरी तरह से अपने आप को बचाना चाहिए। थैंक यू।
1: डॉक्टर कॉलिंग।

चलिए थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, यानी कि नौकरी के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम को भी अपने घर का रास्ता दिखाते हैं। अंजलि ऑन एयर, अंजलि ऑन एयर, अंजलि, अंजलि ऑन एयर हो और आइडियाज ना लाए, ऐसा कैसे हो सकता है। वेलकम टू रेडियो महारानी भाई। और आज का मैं बिजनेस बूस्ट लेकर आ गई, और आज का बिजनेस बूस्ट ये है कि नौकरी के साथ साथ ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम पर भी ध्यान देंगे। तो चलिए आज का बिजनेस बूस्ट में बात करते हैं एक ऐसे होम ग्रोन बिजनेस आइडिया की जो कम इन्वेस्टमेंट में शुरू किया जा सकता है। तो भाई अगर आपको भी कुकिंग का शौक है तो होम मेड पिकल्स और चटनी बिजनेस के बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं, बिकॉज आज कल लोग ना घर के बने प्रिजर्वेटिव फ्री अचार और चटनियाँ काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो भाई ये बिजनेस करने के लिए ना आपको करना क्या है, शुरुआत में अपने घर के आसपास लोगों को जाकर बताइए, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर अपने अचार की फोटोज भेजिए, इंस्टाग्राम पर रील बनाइए, और धीरे धीरे ना आपके रेगुलर कस्टमर आपसे जुड़ने लगेंगे। तो ये छोटा सा आइडिया है जो आपकी कुकिंग स्किल को बिजनेस में बदल सकता है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, बड़ा बिजनेस हमेशा बड़े इन्वेस्टमेंट से नहीं बल्कि एक छोटे से आइडिया और कंसिस्टेंसी से शुरू होता है। और इसी के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइएगा, और जब बिजनेस बढ़ जाए ना, फल फूल जाए ना, तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। और आपको बताना है मुझे याद करने के लिए कहाँ जाना है, रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर जाना है, वहाँ पर आप अपना मैसेज हमें भेज सकते हैं। और साथ

वेलकम बैक गाइज, यू आर लिसनिंग टू फेवरेट सेगमेंट सिनेमा कैप्सूल। मैं हूँ आरजे गीत और यहाँ मैं रिव्यूज नहीं देती बल्कि बताती हूँ कि वीकेंड का डेटा पैक इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मुसाफिर कैफे की, जो बहुत ज्यादा हाईलाइट है इन दिनों। अब ऑनेस्टली ओटीटी पर इतना अच्छा कॉन्टेंट आ रहा है, रिमोट से ज्यादा तो थंब वर्कआउट कर लेता है। हाफ एन आवर सिर्फ स्क्रॉल करने में निकल जाता है और एंड में वही पुराना सिटकॉम ऑन। लेकिन मुसाफिर कैफे इज अ लिटिल डिफरेंट। सबसे पहले विक्रांत मेसी, ये बंदा भाई एक्टिंग नहीं करता, बस स्क्रीन पर आ जाता है और बाकी के इमोशंस ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं। इसको ओवर एक्टिंग का पासवर्ड शायद आज तक मिला ही नहीं। और अच्छी बात ये है कि ये सीरीज अननेसेसरीली लाउड बनने की कोशिश नहीं करती, ना फोर्स्ड एक्शन, ना रैंडम ट्विस्ट, ना वो बैकग्राउंड म्यूजिक जो हर सीन में चलता रहता है, बल्कि एवरीथिंग फील सिंपल ऑर्गेनिक। वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना भी काफी नेचुरल लग रही है। तीनों की केमिस्ट्री स्क्रीन पर बिल्कुल एफर्टलेस फील होती है। ऐसा लगता है कि कैरेक्टर्स एक्टिंग नहीं कर रहे बल्कि अपनी लाइफ जी रहे हैं। ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो स्लो कन्वर्सेशन एंजॉय करते हैं, जो कॉफी पे दो घंटे बैठ सकते हैं और जिन्हें हर 10 मिनट में एक्सप्लोजन की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो हर एपिसोड के बाद बोलते हो बस ट्विस्ट कहाँ है यार, तो मे बी दिस वंस नॉट योर कप ऑफ कॉफी। लेकिन अगर मूड है समथिंग काम, फील गुड और जेन्युइनली वेल परफॉर्म देखने का, देन मुसाफिर कैफे डेफिनेटली डिजर्व अ चांस। मैं हूँ गीत और मिलते हैं नेक्स्ट सिनेमा कैप्सूल में, क्योंकि ओटीटी पर कंटेंट खत्म हो सकता है लेकिन भाई मेरी बातचीत खत्म नहीं होगी। तो वक्त है गाने का, गाना सुनकर आते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

हम ध्यान नहीं देते, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही ना जिंदगी भर का दर्द बन जाती है। अगर बात की जाए पिछले कुछ हफ्तों में, तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट सामने आए हैं जहाँ पर पानी से भरे गड्ढों की वजह से या फिर खुले वाटर टैंक की वजह से, वाटर लॉगिंग की वजह से बहुत सारे छोटे बच्चे और काफी सारे लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी। और ये सिर्फ एक सिटी की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हम सबके लिए एक वार्निंग है। तो आज मैं आपको यही बताने के लिए आई हूँ, अगर आपके घर या फिर कहीं आसपास कोई खुला गड्ढा, नाला या फिर वाटर टैंक दिखे तो उसे इग्नोर मत कीजिएगा। अथॉरिटीज को जाकर जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। और साथ ही अगर आपको लग रहा है कि छोटे बच्चे आसपास खेल रहे हैं तो उन पे जरूर नजर रखिए, उन्हें सावधान कीजिए और उन्हें बताइए यहाँ नहीं जाना है, आप इस एरिया में खेल सकते हैं, बिकॉज थोड़ी सी सतर्कता किसी की जिंदगी बचा सकती है। और इसी के साथ ही मिलेंगे छोटे से म्यूजिक ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरह की किसी भी फाइल को डाउनलोड करने का, खासकर अगर वो आपके बॉस या फिर आपके कलीग की तरफ से आए। अरे मैं आपको जॉब से निकालने का मंत्रा नहीं बता रही हूँ, बल्कि मंत्रा लेकर आ गई हूँ कि साइबर शील्ड में खुद को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज साइबर क्राइम का ना एक और नया तरीका आ गया है मार्केट में। तो नया तरीका ये है, मार्केट में जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं वो आजकल वर्किंग प्रोफेशनल्स को टारगेट करने के लिए नया स्कैम कर रहे हैं, और वो स्कैम ये है, वो आपका बॉस, आपका सीनियर या फिर आपका कलीग बन करना आपको व्हाट्सएप पर एक फाइल भेजते हैं, और जैसे ही आप उस फाइल को डाउनलोड करते हो या फिर ओपन करते हो ना, और फोन में हो जाता है मैलवेयर इंस्टॉल। और इसके बाद होता क्या है, इसके बाद आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाता है, और साथ ही पहुंच जाते हैं आपके बैंक डिटेल्स तक, और फिर क्या होता है, फिर होता है आपका अकाउंट खाली। तो अगर इस तरह के स्कैम से बचना है ना, तो किसी भी फाइल को डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, खासकर अगर आपका बॉस कोई फाइल भेजता है तो। तो आज का साइबर मंत्र सिर्फ इतना सा है, अनोन फाइल्स को इग्नोर कीजिए, डायरेक्ट स्किप कर दीजिए, और अगर कोई फाइल आती भी है तो पहले जाकर अपने बॉस से जरूर कंफर्म कीजिए, देन फिर ही डाउनलोड कीजिए, और इस तरह से खुद भी सुरक्षित रहिए। और आज जाकर अपने पूरे ऑफिस वालों को बता दूं कि किसी भी तरह की फाइल को बिना पूछे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

मिलना है तो थोड़ी दूरी छोड़ दूं क्या, कुछ इश्क जता दिया है शाही से, थोड़ा सा इश्क जरूरी छोड़ दूं क्या।

अगर ऑफिस के लिए निकल ही गए हो तो अब ये सुनते जाओ। तो आज की अपडेट खास आपके लिए, और अपडेट ये है कि फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ अगर जाने वाले हो ना, तो जितने भी कम्यूटर्स आज मुझे सुन रहे हैं वहाँ पर जाने वाले, तो आज आपको बदरपुर बॉर्डर, NHPC चौक और मथुरा रोड पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है। बिकॉज आप सभी को पता है कि भाई ऑफिस वाला टाइम है, पीक आर है, और ऐसे में ना ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो हो ही जाता है। और इसके साथ ही खास चीज का ध्यान ये रखना है कि अगर सरिता विहार के फ्लाईओवर से जा रहे हो ना, तो वहाँ पर ना रिपेयरिंग का कुछ काम चल रहा है, तो वहाँ पर भी आपको आज ट्रैफिक मिलेगा, और तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर जाइएगा। और अगर एक्स्ट्रा टाइम नहीं है तो रूट को जरूर डाइवर्ट कर लीजिए। और बस साथ ही ये कहना चाहती हूँ कि ट्रैवल को एंजॉय कीजिएगा, ज्यादा गुस्सा मत कीजिएगा, बिकॉज गुस्सा करने से ना बीपी हाई हो जाता है, और आपको पता ही है कि आपका गुस्सा ट्रैफिक को नहीं हटा सकता है। तो ऐसे में एंजॉय कीजिए अंजलि ऑन एयर, और एंजॉय कीजिए इस प्यारे ट्रैक। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

मेरा नाम डॉक्टर शिलाखा चमन है। मैं मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में सीनियर कंसल्टेंट हूँ पीडियाट्रिक्स और न्यूनेटोलॉजी में। वैक्सीनेशन का मतलब सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता, वैक्सीनेशन का मतलब है हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन किसी भी बीमारी से। जिस बीमारी से हमें प्रोटेक्शन चाहिए उसके खिलाफ हम वैक्सीन लेते हैं। उससे क्या होता है, छोटी सी थोड़ा सा जीवाणु जो कि बीमारी नहीं कर सकता बच्चे को दिया जाता है, उससे उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और इम्यून सेल्स में मेमोरी रहती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब असल जीवाणु उसको इन्फेक्ट करे तो वो उसके खिलाफ लड़ सके। तो वैक्सीनेशन सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता। बच्चा बिल्कुल ठीक लग रहा हो,

फिर भी वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी हमारे लिए पर्याप्त नहीं होती। नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो एक इम्यूनिटी है जो हमें सभी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि वो हमें हर इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगी। अगर हमारा इम्यून सिस्टम पहले से सचेत हो किसी भी बीमारी के खिलाफ, तो वो अच्छे से लड़ सकता है उस बीमारी से। इसीलिए हमें बच्चा बिल्कुल ठीक हो फिर भी वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है। डॉक्टर कॉलिंग।

तो चलिए फिर अब वक्त हो गया है दिमाग की बत्ती जलाने का। अंजलि ओले, अंजलि ओले, अंजलि। जैसे कि पहले ही कहा था कि वक्त हो गया है दिमाग की बत्ती जलाने का, तो बात कर लेते हैं अपने फेवरेट सेगमेंट की, जो है फरीदाबाद की पहेली। तो आज मैं एक पहेली लेकर आ गई हूँ। मैं फरीदाबाद की एक ऐसी जगह हूँ जहाँ सुबह सुबह लोग वॉक करने आते हैं, शाम को फैमिली के साथ वक्त बिताते हैं और वीकेंड्स पर मेरी खूबसूरती देखने वालों की भीड़ लग जाती है। कभी मुझे फरीदाबाद की शान कहा जाता है और जैसे ही लोग मुझे देखते हैं तो नेचर के करीब पहुंच जाते हैं। अब फटाफट से बताइए मैं कौन हूँ, और बताने के लिए आपको पता है ना कहाँ जाना है? जाना है आपको रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर अपना जवाब बताइएगा और देखते हैं कौन फरीदाबाद को कितना अच्छे से जानता है। और तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ट्रैक दस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

सो एंटरटेनमेंट की दुनिया में अगर किसी ट्रेलर ने इस हफ्ते सबसे ज्यादा बज क्रिएट किया है तो वो है रामायण। 30 जुलाई को इसका ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया है एंड बिलीव मी इंटरनेट लिटरली पॉज हो गया था। सोशल मीडिया से लेकर थिएटर्स तक हर जगह बस इसी की बात हो रही है। डायरेक्टर नितेश तिवारी की रामायण पार्ट 1 दिवाली 2026 पर थिएटर्स में रिलीज होने वाली है और ट्रेलर देखकर लग रहा है कि मेकर्स ने स्केल के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। सबसे पहली बात कर लेते हैं विजुअल्स की। VFX इतने ग्रैंड और पॉलिश्ड लग रहे हैं कि काफी लोग बोल रहे हैं फाइनली माइथोलॉजी इज गेटिंग द सिनेमैटिक ट्रीटमेंट इट डिजर्व्स। और हाँ, सबसे ज्यादा सरप्राइज दिया है रणबीर कपूर ने। ट्रेलर आने से पहले बहुत सारे लोगों का एक ही कंसर्न था एनिमल के बाद क्या वो श्रीराम के रोल में एक्सेप्ट हो पाएंगे, लेकिन ट्रेलर के बाद काफी हद तक वो डाउट खत्म होता दिख रहा है। उनका काम, स्क्रीन प्रेजेंस और सटल एक्सप्रेशंस ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। अब बात करते हैं साई पल्लवी। एस सीता बिल्कुल ग्रेसफुल, एलिगेंट और एफर्टलेस लग रही हैं। और अब बात आती है उस एंट्री की जिसका सबको था इंतजार, यश एस रावण। पावरफुल लुक, रॉयल ऑरा और सिर्फ कुछ ही सेकंड की प्रेजेंस में उन्होंने सोशल मीडिया पर धमाका कर दिया है। काफी लोग तो कह रहे हैं कि रावण का कैरेक्टर ऑलरेडी घूस पम्प दे रहा है। और हाँ, एक बात फैंस ने जरूर नोटिस की है, ट्रेलर में हनुमान जी का प्रॉपर ग्लिम्प्स दिखा ही नहीं और बस इसी वजह से ऑडियंस और भी ज्यादा क्यूरियस हो गई है। शायद मेकर्स ने वो बिगेस्ट मोमेंट फिल्म के लिए सेव कर रखे हो। ओवरऑल ट्रेलर को ऑडियंस ने जबरदस्त रिस्पांस दिया है और बस काउंटडाउन शुरू हो चुका है दिवाली 2026 का। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। एंटरटेनमेंट की दुनिया में हर बड़ी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।

0: सचिन, ये क्या कर रहा है तू?
1: क्या हो रहा है भाई? हा?
2: पापा, रोमांटिक सीन लिख रहा हूँ।
1: यहाँ किस तरह बीच सड़क पर नाच कर
2: फील कर रहा हूँ।
1: अरे फील क्या कर रहा है डफर, सब लोग देख रहे हैं।

चलिए जी, अब बात कर लेते हैं फरीदाबाद की, जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर एक अच्छी खबर सामने आ गई है। और वो क्या है, और क्या है वो खबर जानेंगे। तो चलिए जी, जिस खबर की मैं बात कर रही थी, पीएम ई बस सेवा योजना के तहत फरीदाबाद को जल्द ही 50 इलेक्ट्रिक बसेस मिलने वाली है। लेकिन आपको पता है खास बात क्या है? खास बात यह है कि बसेस के रूट डिसाइड करने के लिए AI बेस्ड सर्वे किया जा रहा है। यानी कि सर्वे में देखा जा रहा है कि किस रूट पर सबसे ज्यादा पैसेंजर ट्रेवल करते हैं, किस टाइम ट्रैफिक ज्यादा होता है और किन एरियाज को बेहतर बस कनेक्टिविटी की जरूरत है। तो इसका मोटिव सिर्फ ये है कि बसेस उन्हीं रूट्स पर चलाई जाएंगी जहां लोगों को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, कितनी कमाल की बात। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो फरीदाबाद के लोगों का सफर और भी ज्यादा इजी और कंफर्टेबल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली मिल सकता है। उम्मीद है इस इनिशिएटिव से ट्रैफिक का प्रेशर भी कम होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक नई रफ्तार मिलेगी। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस ट्रैक के बाद।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

मैंने ना ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो माइग्रेन के दर्द को बोलते हैं कि क्या है, ज्यादा से ज्यादा सर दर्द ही तो होता है, इतने ड्रामे करने की क्या जरूरत है। तो भाई उनके लिए मैं आज का फिटनेस वाला फंडा लेकर आ गई, उन्हें बताने के लिए आ गई हूँ कि माइग्रेन का दर्द जो है बिल्कुल भी नॉर्मल हेडेक नहीं होता है। और डॉक्टर्स क्या कहते हैं, डॉक्टर्स के मुताबिक माइग्रेन को इग्नोर करना, दर्द शुरू होने के बाद भी मेडिसिन को लेने में देर करना, बार बार पेन किलर्स लेना और प्रॉपर नींद ना लेना, ये सब माइग्रेन को और भी बढ़ा सकता है। इसलिए जब भी आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है ना, तो सबसे पहले अपने ट्रिगर को पहचानिए, टाइम पर डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए, बिकॉज जो माइग्रेन का दर्द है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको कभी कभी ब्लर देखने लग। अब सोच कर जरूर देखिएगा कि वो जो दर्द है वो कितना पीक पर होता है कि जब इंसान को धुंधला धुंधला नजर आता है, वो जो गाना है ना, सब कुछ धुंधला धुंधला, तो भाई लगता है वो माइग्रेन के दर्द को लेकर ही बना है। तो हमेशा याद रखिए, हर हेडेक माइग्रेन नहीं होता और हर माइग्रेन को इग्नोर करना भी सही नहीं होता। अपने हेल्थ को प्रायोरिटी बनाइए, क्योंकि हेल्दी रहेंगे तभी तो एनर्जेटिक रहेंगे। और साथ ही एंजॉय कीजिए, इसलिए ऑन एयर मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

मंदी अभी गया है, फ्रेंडशिप डेड, और फिर से दुनिया भर के दोस्त ऑनलाइन हो गए हैं।

0: तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती।
1: मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ संजना, सिर्फ तुम्हारा।

हाँ जी, अगर आप भी आज फरीदाबाद से दिल्ली या फिर दिल्ली से फरीदाबाद का सफर करने वाले हैं तो आज की अपडेट आपके लिए बहुत काम की है। जैसे कि सभी को पता है कि कांवड़ यात्रा स्टार्ट हो चुकी है और फरीदाबाद पुलिस ने 11 अगस्त तक स्पेशल ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान लागू कर दिया है, यानी कि दिल्ली टू मथुरा हाईवे के कांवड़ रूट पर हैवी और मीडियम व्हीकल्स की एंट्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है और साथ ही हल्के वाहनों के लिए भी कुछ जगहों पर ऑल्टरनेट रूट्स बना दिए गए हैं। इसलिए घर से निकलने से पहले एक बार रूट जरूर चेक कर लीजिएगा, साथ ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ट्रेवल के लिए लेकर चलिएगा, बिकॉज हम सबको पता है कि हमारी थोड़ी सी प्लानिंग हमारा काफी सारा वक्त बचा सकती है। तो ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए और साथ ही कांवड़ यात्रियों को भी मोटिवेट और चेयर करते हुए चलिए। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी, मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

नाम डॉक्टर आनंद है, आई एम ए कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एट सऊदे सेक्टर 8। जैसे कि आपने वैसे ही कहा कि 6 महीने के बच्चों के लिए सबसे आइडियल और कंप्लीट न्यूट्रिशन इज मदर्स मिल्क यानी कि ब्रेस्ट मिल्क। और ये सही कहते हैं कि लोग कि माँ का दूध बेस्ट है। साइंटिफिकली इसलिए ऐसा बोला जाता है कि मदर्स मिल्क में सारी चीजें जो बच्चे के ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हैं स्टार्टिंग के 6 महीने में वो पर्याप्त मात्रा में हैं। मदर्स मिल्क में बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता और उसके कण भी हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी भी है, और जिस क्वांटिटी फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स अवेलेबल हैं वो बच्चे के द्वारा आसानी से पचाए जा सकते हैं। साथ साथ में बच्चे की दिमाग और बच्चे की आंखों के विकास के लिए और पूर्ण विकास के लिए मदर्स मिल्क इज द बेस्ट मिल्क। एंड जैसे आपने कहा कि सिर्फ एज ग्रुप में बच्चे को मिल्क ही काफी होता है, ये सही कह रहे हैं आप कि 0 से 6 महीने के बच्चे में सिर्फ मदर्स मिल्क ही देना होता है। और पानी देना चाहिए या नहीं, खासकर जब मौसम चेंज होने वाला है, गर्मी आने वाली है, काफी पेरेंट्स का कंसर्न ये रहता है, तो 6 मंथ्स तक पानी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है बिकॉज मदर्स मिल्क कंटेन्स मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर जो बच्चे की नीड के लिए अप्रोप्रिएट होता है। तो सिर्फ मदर्स मिल्क ही इम्पॉर्टेंट है 0 to 6 months में, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मेडिकेशन देने की जरूरत नहीं है, कोई टॉप फीड नहीं, कोई पानी नहीं, कोई घुटी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये बस एक ही कंडीशन होता है, अगर बच्चा बीमार है तो सिर्फ दवाइयां या ORS वो आप दे सकते हैं 6 महीने से कम के बच्चे में, उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ मदर्स मिल्क ओनली। डॉक्टर

0: सबसे अलग। मेरी बात सुनते हो, रियली लिसन। काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता। Am I making sense?
1: Not at all. But that'll be 3,000 rupees.

0: हेलो हेलो जी, फिर से लौट आई हूँ मैं और अब बात ही नहीं करने वाली है। अब मैं ना पहेली का जवाब जानने के लिए आई हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने एक पहेली पूछी थी और पहेली थी फरीदाबाद की ऐसी कौन सी जगह है जिसे हर कोई पसंद करता है। तो अब वक्त हो गया है हमारे फरीदाबाद की पहेली का जवाब जानने का, लेकिन उससे पहले ना मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ हमारे सभी लिसनर्स का, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे जवाब आए हैं और बहुत सारे जवाब सही भी हैं। लेकिन जो जवाब सबसे पहले आया, बात करते हैं उनकी। चलिए पहले सुनते हैं कि इस पहेली का आखिर जवाब क्या है।
1: हाय अंजलि, गुड मॉर्निंग। और मेरा नाम पलक है। अभी तुमने जो पहेली पूछी थी वो तो फरीदाबाद की बहुत फेमस जगह है। वहां तो मैं ना अपने बचपन से जाती आ रही हूँ। अपनी फैमिली के साथ ना अलग ही वाइब है उस जगह की। तो यार वो जगह है फरीदाबाद की बड़कल झील। थैंक यू।
0: थैंक यू पलक, बहुत अच्छे से फरीदाबाद को जानते हो। और जैसे कि आपने बताया ना कि आपका बचपन बीता है यहाँ पर, मैं तो यही कहूँगी कि जिस तरह से आपने बचपन यहाँ पर बिताया है ना, ऐसे ही पूरी जिंदगी आप इस फरीदाबाद की जगह से जुड़े रहे और साथ ही एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ मी टाइम यहाँ पर। और इसी के साथ ही आपका आंसर एकदम सही था। ये बताता है कि आप फरीदाबाद को कितने अच्छे से जानते हैं। लेकिन जिन्होंने आज अपना आंसर मिस कर दिया है, टेंशन मत लीजिए, कल फिर से लौटूंगी एक और नई पहेली के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। ट्रैक मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

सो एंटरटेनमेंट की दुनिया में सिर्फ डायलॉग्स ही नहीं, कभी कभी करंट भी लगता है, और इस करंट का नाम है खतरों के खिलाड़ी 15। रोहित शेट्टी वंस अगेन इज बैक, और इस बार भी उनका मिशन बिल्कुल क्लियर है, कंटेस्टेंट के कंफर्ट जोन को परमानेंटली अनइंस्टॉल कर देना। नए सीजन फुल ऑन एक्शन मोड में है, हेलीकॉप्टर हो, पानी हो, क्रीपी क्रूल आइस हो या स्काई हाई स्टंट्स, यहाँ हर एपिसोड एक रिमाइंडर है कि घर की EMI भरना शायद इन स्टंट से ज्यादा आसान है। इस सीजन के कंटेस्टेंट लाइनअप भी काफी इंटरेस्टिंग है, हर कोई ट्रॉफी जीतने आया है, लेकिन स्टंट शुरू होते ही सबकी बॉडी लैंग्वेज एक ही बात बोलती है, मम्मी मैं घर आ जाऊं क्या। और रोहित शेट्टी उनके एक्सप्रेशन देखकर लगता है कि उन्हें कंटेस्टेंट से ज्यादा मजा उनके रिएक्शन देखने में आता है। सोशल मीडिया पर भी शो को लेकर काफी ज्यादा बज बना हुआ है, फैंस अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, स्टंट्स की क्लिप्स वायरल हो रही है, और हर एपिसोड के बाद एक ही डिबेट चलती है, ये स्टंट में मैं होता तो भाई मैं तो कर लेता। हाँ जी, सोफे पर बैठकर तो हम सब कर ही सकते हैं ना। तो फिलहाल सीजन ने जबरदस्त स्टार्ट लिया है, अब देखना ये है कि कौन अपने डर को हरा कर ट्रॉफी तक पहुंचता है और कौन सिर्फ मीम्स का फेवरेट बनकर रह जाता है। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। तो अगली अपडेट में फिर मिलेंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया से एक और फ्रेश डोज के साथ।

और मैं सुशील के साथ आज कंचले ऑन एयर यहीं तक था। बहुत सारी बातें की मैंने आज आपसे, बहुत सारी चीजें जानी और बहुत कुछ बताया भी। तो भाई अब बात कर लेते हैं कि आखिर मैं टिफिन में क्या लेकर आई हूँ। बिकॉज जब मैं ऑफिस आती हूँ ना, तो मेरा पहला सवाल अपने कलीग्स के साथ यही होता है कि भाई आज क्या लेकर आई हो टिफिन में। और जैसे मुझे पता चलता है ना कि टिफिन में कुछ टेस्टी आया, तो मैं खा जाती हूँ उनका सारा टिफिन। कह रहा है कि आज अपने टिफिन की मैं बात करूँ ना, तो आज मेरे टिफिन में है सैंडविच और कोल्ड कॉफी। अब आप बोलोगे कि क्या यार अंजलि, हमें तो फिटनेस वाला फंडा देकर जाती है और खुद सैंडविच खाती हो। तो भाई देखिए, मेरा सैंडविच बड़ा ही हेल्दी है, ब्राउन ब्रेड लेकर आई हूँ, उसके साथ में मैं वेजीज वेज सैंडविच लेकर आई हूँ। अगर कोल्ड कॉफी की मैं बात करूँ तो आलमंड मिल्क में है मेरी कोल्ड कॉफी। देखा कितना हेल्दी और टेस्टी सैलेंच लेकर आई हूँ मैं। खैर, आप क्या लेकर आए हैं मुझे जरूर बताइएगा। और पता है ना बताने के लिए कहाँ जाना है? जाना है आपको रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर वॉइस मैसेज भेजना है और साथ ही एंजॉय करना है रेडियो महारानी पर शो को। और मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

ऐसी बढ़िया रिलीज स्ट्रीमिंग्स जिनका लुत्फ आप उठा सकते हैं। हर्टबीट सीजन 3 जिसको प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया जा चुका है, हाल फिलहाल द लेजेंड ऑफ कर्न को भी ओटी पर स्ट्रीम किया गया। वही बात करें यहाँ पे एक और बढ़िया कहानी द डेविल्स माउथ, इसका इंतजार लंबे समय से चल रहा था जहाँ स्ट्रीमिंग के बाद अच्छा खासा प्यार बटोरती नजर आई। और इनमें अगर बात करूँ कुछ खास नाम जिनको बिल्कुल देखना चाहिए, अच्छे खासा व्यूज भी मिल रहा है, द लेजेंड ऑफ कर्न जहाँ महाभारत के युग कर्ण पर बनी एनिमेटेड वेब सीरीज है और इसको फैंस बेसब्री से इंतजार करते आ रहे थे और रिलीज होते सारे अच्छी खासी व्यूअरशिप भी हासिल करता नजर आया। हर्टबीट सीजन 3 जहां में रीना की कहानी नए इंटर्न रोमांजी का हॉस्पिटल पॉलिटिक्स दिखाए जाने की बात है जिसको भी आप ओटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। बाकी ऐसी भी चर्चाएं करता रहूंगा, उससे पहले का और खूबसूरत सा ट्रैक।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फॉरएवर। यहां हम बात करते हैं भूमि पेडनेकर अब ऋषभ शेट्टी के फिल्म द प्राइड ऑफ भारत छत्रपति शिवाजी महाराज का हिस्सा बन चुकी है।

वो बेलावड़ी का किरदार निभाएंगी। जहां अगर बात करें बेलावड़ी मल्लम्मा कर्नाटक की एक वीर योद्धा रानी थी जिन्हें बहादुरी और अटूट जज्बे के लिए याद किया जाता। कहा जा रहा है कि उन्होंने देश की पहली महिला सैनिक टुकड़ी बनाई और 4 महीने के बेटे को गोद में लेकर युद्ध भी लड़ा। फिल्म में ऋषभ शेट्टी शिवाजी महाराज की भूमिका निभाएंगे और शेफाली शाह अर्जुन राव पाल विवेक ओबेरॉय भी कास्ट का हिस्सा। 2-पार्ट हिस्टोरिक एपिक होने वाली है जहां इसका बजट 500 करोड़ से ज्यादा है और पहला पार्ट अगले साल जल्दी तक रिलीज किया जा सकता है। फिल्म में अमित त्रिवेदी म्यूजिक देने वाले हैं और प्रसन्न जोशी गाने लिखेंगे। ऋषि विरमानी की लिखी गई इस कहानी को इतने बेहतरीन स्टार कास्ट के साथ सजाया गया है तो देखते हैं क्या धमाल मचाएगी ये कहानी। बाकी ऐसी भी चर्चाएं करता रहूंगा, उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक।

नाम डॉक्टर आनंद है। आई एम ए कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एट सरोदय सेक्टर 8। जैसे कि आपने सही कहा कि 6 महीने के बच्चों के लिए सबसे आइडियल और कंप्लीट न्यूट्रिशन इज मदर्स मिल्क यानी कि ब्रेस्ट मिल्क। और ये सही कहते हैं कि लोग कि माँ का दूध बेस्ट है। साइंटिफिकली इसलिए ऐसा बोला जाता है कि मदर्स मिल्क में सारी चीजें जो बच्चे के ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हैं स्टार्टिंग के 6 महीने में वो पर्याप्त मात्रा में हैं। मदर्स मिल्क में बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता और उसके कण भी हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी भी है और जिस क्वांटिटीज फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स अवेलेबल हैं वो बच्चे के द्वारा आसानी से पचाए जा सकते हैं। साथ साथ में बच्चे की दिमाग और बच्चे की आंखों के विकास के लिए और पूर्ण विकास के लिए मदर्स मिल्क इज द बेस्ट मिल्क। एंड जैसे आपने कहा कि सिर्फ एज ग्रुप में बच्चे को मिल्क ही काफी होता है, ये सही कह रहे हैं आप कि 0 से 6 महीने के बच्चे में सिर्फ मदर्स मिल्क ही देना होता है। और पानी देना चाहिए या नहीं, खासकर जब मौसम चेंज होने वाला है, गर्मी आने वाली है, काफी पेरेंट्स का कंसर्न ये रहता है, तो 6 मंथ्स तक पानी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है बिकॉज मदर्स मिल्क कंटेन्स मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर जो बच्चे की नीड के लिए अप्रोप्रिएट होता है। तो सिर्फ मदर्स मिल्क ही इम्पॉर्टेंट है 0 to 6 months में, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मेडिकेशन देने की जरूरत नहीं है, कोई टॉप फीड नहीं, कोई पानी नहीं, कोई घुटी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये बस एक ही कंडीशन होता है, अगर बच्चा बीमार है तो सिर्फ दवाइयां या ORS वो आप दे सकते हैं 6 महीने से कम के बच्चे में, उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ मदर्स मिल्क ओनली। डॉक्टर कॉलिंग।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ हम बात करते हैं बंटवारा 1947 जहाँ इसका ट्रेलर रिलीज हुआ और फिल्म को 14 अगस्त को रिलीज किया जाने वाला। सिंगल अपनी माँ के साथ फोटो शेयर करके लिखा कि उनकी माँ ही उनका रब, प्यार, हौसला और ताकत है। जहाँ ट्रेलर रिलीज होने के बाद से इस कहानी कुछ ऐसे ही माँ के साथ जो बॉन्डिंग है कुछ इसी हिसाब से दिखाई गई है। फिल्म को इंडिपेंडेंस वीकेंड पर रिलीज किया जाए ताकि और अच्छा खासा प्यार मिलता नजर आए और ज्यादा बस क्रिएट हो। जहाँ कास्ट में सनी के अलावा प्रीटी ज़िंटा, शबाना आज़मी, अली फजल, करण देओल और अभिमन्यु सिंह नजर आ रहे हैं। बात करें इस कहानी के बारे में तो ये भी कुछ पैट्रियोटिक कह लीजिए या फिर एक मदरहुड की बात कर लीजिए, कुछ ऐसी ही कहानी जुड़ते हुए नजर आएगी। और इंतजार है फैंस को कहानी के रिलीजिंग का, सनी देओल के एक बार फिर से वही धमाकेदार किरदार को देखने का। बाकी चर्चा करता हूँ सुपर रिकॉर्ड।

सो एंटरटेनमेंट की दुनिया में सिर्फ डायलॉग्स ही नहीं, कभी कभी करंट भी लगता है और इस करंट का नाम है खतरों के खिलाड़ी 15। रोहित शेट्टी वंस अगेन इज बैक और इस बार भी उनका मिशन बिल्कुल क्लियर है, कंटेस्टेंट के कंफर्ट जोन को परमानेंटली अनइंस्टॉल कर देना। नए सीजन फुल ऑन एक्शन मोड में है, हेलीकॉप्टर हो, पानी हो, क्रीपी क्रू लाइस हो या स्काई हाई स्टंट्स, यहाँ हर एपिसोड एक रिमाइंडर है कि घर की EMI भरना शायद इन स्टंट से ज्यादा आसान है। इस सीजन के कंटेस्टेंट लाइनअप भी काफी इंटरेस्टिंग है, हर कोई ट्रॉफी जीतने आया है, लेकिन स्टंट शुरू होते ही सबकी बॉडी लैंग्वेज एक ही बात बोलती है, मम्मी मैं घर आ जाऊं क्या। और रोहित शेट्टी उनके एक्सप्रेशन देखकर लगता है कि उन्हें कंटेस्टेंट से ज्यादा मजा उनके रिएक्शन देखने में आता है। सोशल मीडिया पर भी शो को लेकर काफी ज्यादा बज बना हुआ है, फैंस अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, स्टंट्स की क्लिप्स वायरल हो रही है और हर एपिसोड के बाद एक ही डिबेट चलती है, ये स्टंट में मैं होता तो भाई मैं तो कर लेता। हाँ जी, सोफे पर बैठकर तो हम सब कर ही सकते हैं ना। तो फिलहाल सीजन ने जबरदस्त स्टार्ट लिया है, अब देखना ये है कि कौन अपने डर को हरा कर ट्रॉफी तक पहुंचता है और कौन सिर्फ मीम्स का फेवरेट बनकर रह जाता है। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। तो अगली अपडेट में फिर मिलेंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया से एक और फ्रेश डोज के साथ।

0: चली।
1: कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरह की किसी भी फाइल को डाउनलोड करने का, खासकर अगर वो आपके बॉस या फिर आपके कलीग की तरफ से आए। अरे अरे, मैं आपको जॉब से निकालने का मंत्रा नहीं बता रही हूँ, बल्कि मंत्रा लेकर आ गई हूँ कि साइबर शील्ड में खुद को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। बिकॉज साइबर क्राइम का ना एक और नया तरीका आ गया है मार्केट में। तो नया तरीका ये है मार्केट में, जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं वो आजकल वर्किंग प्रोफेशनल्स को टारगेट करने के लिए नया स्कैम कर रहा है। और वो स्कैम ये है, वो आपका बॉस, आपका सीनियर या फिर आपका कलीग बन करना आपको व्हाट्सएप पर एक फाइल भेजते हैं, और जैसे ही आप उस फाइल को डाउनलोड करते हो या फिर ओपन करते हो ना, और फोन में हो जाता है मैलवेयर इंस्टॉल। और इसके बाद होता क्या है, इसके बाद आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाता है और साथ ही पहुंच जाते हैं आपके बैंक डिटेल्स तक। और फिर क्या होता है, फिर होता है आपका अकाउंट खाली। तो अगर इस तरह के स्कैम से बचना है ना, तो किसी भी फाइल को डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, खासकर अगर आपका बॉस कोई फाइल भेजता है। तो आज का साइबर मंत्र सिर्फ इतना सा है, अननोन फाइल्स को इग्नोर कीजिए, डायरेक्ट स्किप कर दीजिए, और अगर कोई फाइल आती भी है तो पहले जाकर अपने बॉस से जरूर कंफर्म कीजिए, देन फिर ही डाउनलोड कीजिए, और इस तरह से खुद भी सुरक्षित रहिए। और आज जाकर अपने पूरे ऑफिस वालों को बता दूं कि किसी भी तरह की फाइल को बिना पूछे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फ्लेवर। और यहाँ पे अब फिल्मी पिटारे से लाया हूँ बात अक्षरा सिंह, जहाँ अपने नया गाना मैं दीवानी महाकाल की रिलीज किया। ये महाकाल बोल बम थीम पर डिवोशनल सॉन्ग है और कहा जा रहा है कि ये गाना, हम सब जानते हैं कि सावन की शुरुआत हो चुकी है और कल सोमवार था, तो इसी बात को देखते हुए अक्षरा सिंह का ये नया गाना रिलीज किया गया है, जहाँ सिंगर अक्षरा सिंह है तो लिरिक्स खुशबू तिवारी ने लिखे। शशि भगत इस गाने को लेकर क्या है, टू लाइन समरी भी अगर बात करें तो एक गाने की अच्छी खासी प्यार दिया जा रहा है। स्टार्टिंग की दो लाइंस ही इस गाने को इतना खास बना देती कि आगे सुनने को आप टिकी जाते। मैं दीवानी महाकाल की, तो आप भी सुनिए सावन के दौरान ये गाना जो अक्षरा सिंह की आवाज में रिलीज किया गया। फैंस भी पसंद करते नजर आ रहे हैं इस डिवोशनल ट्रैक को। बाकी ऐसी भी चर्चाएं होती रहेंगी, उससे पहले एक और ट्रैक।

अभी अभी गया है फ्रेंडशिप डे, और फिर से दुनिया भर के दोस्त ऑनलाइन हो गए हैं।

इसी गाने के साथ एक बार फिर लौट आना लेकर के शो यानी के फिल्मी फ्लेवर। यहाँ बात करते हैं प्लेग्राउंड सीजन 5 जिसका प्रीमियर हाल फिलहाल किया गया उसी प्लेटफॉर्म पर। एक सीजन में अल्पेश यादव अपनी टीम को कैप्टन्स के साथ लौटे हैं जहाँ तेजस्वी प्रकाश ने मेंटर के रूप में डेब्यू किया और आरुष बोला ने पावर की कमान संभाली। शो को फॉर्मेट पहले से बढ़ाया जिसमें 6 वीक्स 3 टीम्स और हाउस एज बैटल ग्राउंड सेटअप किया गया। ओटी प्लेटफॉर्म पर इसका लुत्फ उठाइए जहां चारों सीजन ने अच्छा खासा प्यार बटोरता और यंगस्टर्स के लिए एक ऐसा शो बना रहा कि जहां हर यंगस्टर इस शो को कैच करना चाहता, देखना चाहता कि होम ग्राउंड इस बैटल में क्या कुछ अनोखा होने वाला है और ये बैटल ग्राउंड जो है बैटल किस मुद्दे पर होने वाली है।

मेरा नाम डॉक्टर शिलाखा चमन है। मैं मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में सीनियर कंसल्टेंट हूँ पीडियाट्रिक्स और न्यूनेटोलॉजी में। वैक्सीनेशन का मतलब सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता, वैक्सीनेशन का मतलब है हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन किसी भी बीमारी से। जिस बीमारी से हमें प्रोटेक्शन चाहिए उसके खिलाफ हम वैक्सीन देते हैं। उससे क्या होता है, छोटी सी थोड़ा सा जीवाणु जो कि बीमारी नहीं कर सकता बच्चे को दिया जाता है, उससे उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और इम्यून सेल्स में मेमोरी रहती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब असल जीवाणु उसको इन्फेक्ट करे तो वो उसके खिलाफ लड़ सके। तो वैक्सीनेशन सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता। बच्चा बिल्कुल ठीक लग रहा हो फिर भी वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी हमारे लिए पर्याप्त नहीं होती। नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो एक इम्यूनिटी है जो हमें सभी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि वो हमें हर इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगी। अगर हमारा इम्यून सिस्टम पहले से सचेत हो किसी भी बीमारी के खिलाफ तो वो अच्छे से लड़ सकता है उस बीमारी से। इसीलिए हमें बच्चा बिल्कुल ठीक हो फिर भी वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है। डॉक्टर कॉलिंग।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ अब हम बात करते हैं मम्मी बैठने का ऋषभ शेट्टी की फिल्म मैं जहाँ नजर आएंगी। वो कर्नाटक की एक वीर रानी जिन्हें रानी मल्लामा भी कहा जाता था, उनका जन्म 1624 के कर्नाटक के सोड में हुआ था और वो युद्ध नीति में निपुण थी। उन्हें महिलाओं की पहले सैन्य टुकड़ी बनाई जिसमें 5000 से ज्यादा महिलाएं शामिल थे। इसे भारतीय इतिहास की पहली महिला सैन्य टुकड़ी बताया जाता। बिलावड़ी राज्य और छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना के बीच युद्ध हुआ था। कहा जाता है कि मल्लम्मा को 4 महीने के बच्चे को गोद में लेकर युद्ध के मैदान में उतरी। बाद में शिवाजी महाराज को अपने सैनिकों की गलती का पता चला तो उन्हें मल्लम्मा से माफी मांगी और उनका राज्य लौटा दिया। इस कहानी को 2 पार्ट्स में रिलीज किया जाने वाला इंतजार रहेगा इसकी कहानी का। बाकी 500 करोड़ के बजट में बताइए कहानी का जो फिल्म सेट रेडी किया गया है वो भी बहुत बेहतरीन होगा।

तो एंटरटेनमेंट की दुनिया में अगर किसी ट्रेलर ने इस हफ्ते सबसे ज्यादा बज क्रिएट किया है तो वो है रामायण। 30 जुलाई को इसका ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया है एंड बिलीव मी इंटरनेट लिटरली पॉज हो गया था। सोशल मीडिया से लेकर थिएटर्स तक हर जगह बस इसी की बात हो रही है। डायरेक्टर नितेश तिवारी की रामायण पार्ट 1 दिवाली 2026 पर थिएटर्स में रिलीज होने वाली है और ट्रेलर देखकर लग रहा है कि मेकर्स ने स्केल के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। सबसे पहली बात कर लेते हैं विजुअल्स की। VFX इतने ग्रैंड और पॉलिश्ड लग रहे हैं कि काफी लोग बोल रहे हैं फाइनली माइथोलॉजी इज गेटिंग द सिनेमैटिक ट्रीटमेंट इट डिजर्व्स। और हाँ, सबसे ज्यादा सरप्राइज दिया है रणबीर कपूर ने। ट्रेलर आने से पहले बहुत सारे लोगों का एक ही कंसर्न था एनिमल के बाद क्या वो श्रीराम के रोल में एक्सेप्ट हो पाएंगे, लेकिन ट्रेलर के बाद काफी हद तक वो डाउट खत्म होता दिख रहा है। उनका काम, स्क्रीन प्रेजेंस और सटल एक्सप्रेशंस ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। अब बात करते हैं साई पल्लवी। एस सीता बिल्कुल ग्रेसफुल, एलिगेंट और एफर्टलेस लग रही हैं। और अब बात आती है उस एंट्री की जिसका सबको था इंतजार, यश एस रावण। पावरफुल लुक, रॉयल ऑरा और सिर्फ कुछ ही सेकंड की प्रेजेंस में उन्होंने सोशल मीडिया पर धमाका कर दिया है। काफी लोग तो कह रहे हैं कि रावण का कैरेक्टर ऑलरेडी घूस पम्प दे रहा है। और हाँ, एक बात फैंस ने जरूर नोटिस की है, ट्रेलर में हनुमान जी का प्रॉपर ग्लिम्प्स दिखा ही नहीं और बस इसी वजह से ऑडियंस और भी ज्यादा क्यूरियस हो गई है। शायद मेकर्स ने वो बिगेस्ट मोमेंट फिल्म के लिए सेव कर रखे हो। ओवरऑल ट्रेलर को ऑडियंस ने जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया है और बस काउंटडाउन शुरू हो चुका है दिवाली 2026 का। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। एंटरटेनमेंट की दुनिया में हर बड़ी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।

जरूरत नहीं है किसी भी तरह की किसी भी फाइल को डाउनलोड करने का, खासकर अगर वो आपके बॉस या फिर आपके कलीग की तरफ से आए। अरे अरे, मैं आपको जॉब से निकालने का मंत्रा नहीं बता रही हूँ, बल्कि मंत्रा लेकर आ गई हूँ कि साइबर शील्ड में खुद को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। बिकॉज साइबर क्राइम का ना एक और नया तरीका आ गया है मार्केट में। तो नया तरीका ये है मार्केट में, जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं वो आजकल वर्किंग प्रोफेशनल्स को टारगेट करने के लिए नया स्कैम कर रहा है। और वो स्कैम ये है, वो आपका बॉस, आपका सीनियर या फिर आपका कलीग बन करना आपको व्हाट्सएप पर एक फाइल भेजते हैं, और जैसे ही आप उस फाइल को डाउनलोड करते हो या फिर ओपन करते हो ना, और फोन में हो जाता है मैलवेयर इंस्टॉल। और इसके बाद होता क्या है, इसके बाद आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाता है, और साथ ही पहुंच जाते हैं आपके बैंक डिटेल्स तक। और फिर क्या होता है, फिर होता है आपका अकाउंट खाली। तो अगर इस तरह के स्कैम से बचना है ना, तो किसी भी फाइल को डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, खासकर अगर आपका बॉस कोई फाइल भेजता है। तो आज का साइबर मंत्र सिर्फ इतना सा है, अनोन फाइल्स को इग्नोर कीजिए, डायरेक्ट स्किप कर दीजिए, और अगर कोई फाइल आती भी है तो पहले जाकर अपने बॉस से जरूर कंफर्म कीजिए, देन फिर ही डाउनलोड कीजिए, और इस तरह से खुद भी सुरक्षित रहिए। और आज जाकर अपने पूरे ऑफिस वालों को बता दूं कि किसी भी तरह की फाइल को बिना पूछे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: है झुमका।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: फिल्मी फ्लेवर
1: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
2: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
1: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
3: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
1: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
4: आवारा हूँ, आवारा
1: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ देखिए वक्त हो चला है सिनेमा की गली आरे में कलंदर का कि आज की तारीख है 4 अगस्त और आज बात करने वाला हूँ उस एक्ट्रेस का जिन्होंने हर दौर में अपनी एक्टिंग से यह साबित किया कि असली टैलेंट कभी पुराना नहीं होता। कह रहे हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, थिएटर हो टेलीविजन या फिर बॉलीवुड, हर मीडियम में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी नेचुरल एक्टिंग और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें इंडियन सिनेमा के सबसे रिस्पेक्टेड एक्टर्स में शामिल किया। मैं बात कर रहा हूँ वेटेरियन एक्ट्रेस नीना गुप्ता जी की। जहाँ आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और नीना गुप्ता की अगर बात की जाए तो उनकी जर्नी ना कि सिर्फ बॉलीवुड में थे सिल्वर स्क्रीन तक सीमित रही बल्कि ओटी प्लेटफॉर्म भी अच्छा खासा किरदार निभाते हुए नजर आ रही हैं। उनके लिए बहुत सी चर्चाएं करने वाला हूँ लेकिन ये सारी चर्चाएं करने से पहले सुना देता हूँ कुछ बढ़िया बढ़िया से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं नीना गुप्ता। जहाँ नीना गुप्ता ने थिएटर से अपने करियर की शुरुआत की और फिर टेलीविजन और फिल्मों में अपनी पहचान बनाई। 80 और 90 में उन्होंने कई यादगार टीवी सीरियल्स और फिल्मों में काम किया, लेकिन उनके करियर की सबसे खास बात यह रही कि कभी नए और चैलेंजिंग रोल्स करने से परहेज नहीं किया। सालों बाद भी उन्होंने एक शानदार कमबैक किया और नए दौर की ऑडियंस का भी दिल जीता। नीना गुप्ता के करियर की कुछ यादगार फिल्में और प्रोजेक्ट्स बधाई हो,

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

सजदा है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार।

0: करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें पीएम सूर्य घर .gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।

0: एयर पॉल्यूशन का लंग्स पे काफी सीरियस असर हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हवा में जो पॉल्यूशन है वो हमारी हर सांस के साथ हमारे नाक को और हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करते रहती है, अंदर पॉल्यूटेड एयर घुसते रहती है। तो अगर पॉल्यूटेड एयर लगातार आपके फेफड़ों में घुसती है तो आपका अस्थमा बिगड़ सकता है, आपको COPD नाम की बीमारी हो सकती है, और साथ ही साथ एक बहुत खतरनाक बीमारी लंग कैंसर होने के चांस भी एयर पॉल्यूशन की वजह से बढ़ जाते हैं। इसके साथ हमें सबसे जरूरी बात ध्यान देने की है कि एयर पॉल्यूशन आपके सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि अगर पार्टिकुलेट मैटर काफी छोटे होते हैं तो आपके फेफड़ों के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाके आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपकी किडनी को और बॉडी के लगभग हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें पॉल्यूटेड एयर में जाने से पूरी तरह से अपने आप को बचाना चाहिए। थैंक यू।
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: हर कलाकार का सफर तन्हा शुरू होता है, लेकिन साथ होती है आपकी सद्भावना और आशीर्वाद की मंगल ध्वनि। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ हम बात करते हैं दोस्तों नीना गुप्ता की, जहाँ नीना गुप्ता की जिंदगी और करियर दोनों ही नए कलाकारों के लिए इंस्पिरेशन है। उन्होंने हमेशा अपनी शर्तों पर काम किया और हर जनरेशन को ये सिखाया कि टैलेंट और मेहनत की कोई उम्र नहीं होती। आज भी उनकी सिंप्लिसिटी, कॉन्फिडेंस और रियलिस्टिक एक्टिंग ऑडियंस को बहुत पसंद आती है। बात की जाए OTT प्लेटफॉर्म पर भी नीना गुप्ता अच्छा किरदार निभाते नजर आ रही है, जो आजकल के टाइम में यंगस्टर्स के साथ बढ़िया किरदार निभाते हुए उन्हें भी सिखा रही है, तो कुछ उनसे भी कुछ नया जेंजी स्टाइल सीखती भी नजर आ रही है। एक बार फिर से नीना गुप्ता को हैप्पी वाला बर्थडे। बाकी ऐसी भी चर्चाएं लाता रहूंगा सिनेमा के गलियारे से, लेकिन आज नहीं, अब आपसे मुलाकात होगी कल के दिन सेम टाइम सेम जगह करूंगा ढेरों बातें। तब तक सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM को छटके और ये ट्रैक आप सभी के लिए।

हेलो हेलो एंटरटेनमेंट के पागल लोग, वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, जहां हम स्क्रीन के इस पार की दुनिया को थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा फनी और फुल मसालेदार अंदाज में डिकोड करते हैं। तो भाई, जिस शो ने जेल के अंदर से इतना ड्रामा बाहर भेजा कि घर बैठे लोगों को भी लगा भाई हमारी लाइफ तो काफी पीसफुल है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लॉकअप की। तो अब लॉकअप पहुंच चुका है अपने ग्रैंड फिनाले के दरवाजे तक, और जैसे जैसे ट्रॉफी करीब आ रही है, कंटेस्टेंट के असली गेम प्लान भी बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि रियलिटी शो का रूल सिंपल है। शुरुआत में सब बोलते हैं मैं ना यहाँ दोस्त बनाने आया हूँ, और फाइनली आते आते वही दोस्ती बदल जाती है, सॉरी ब्रो, ट्रॉफी के बीच में फ्रेंडशिप नहीं आती। इस शो में फाइट्स भी मिले, इमोशंस भी मिले, सीक्रेट्स भी मिले, और कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आए जहाँ ऑडियंस ने रिमोट नहीं बल्कि अपना पेशेंस पकड़ रखा था। और अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन बनेगा लॉकअप का अल्टीमेट विनर? किसके फैंस करेंगे सबसे ज्यादा नॉइस? किसका गेम पड़ेगा सबसे स्ट्रॉन्ग? और कौन निकलेगा असली जेल का बाजीगर? क्योंकि रियलिटी शो में आखिरी वीक में ना भाई कंटेस्टेंट नहीं बल्कि उनकी स्ट्रेटेजी का मेकओवर होता है। तो अगर आप भी पॉपकॉर्न लेके बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं उस फाइनल धमाके का, तो बने रहिए एंटरटेनमेंट की दुनिया के साथ। मैं हूँ गीत और चल रहा है सिनेमा का कैप्सूल।

घड़ी ने 2 बजा दिए हैं, मतलब ऑफिशियली दिन का वो टाइम शुरू हो चुका है जब लंच खत्म हो चुका होता है, काम अभी भी बाकी होता है और मोटिवेशन थोड़ी सी ब्रेक पर चली जाती है। हो सकता है इस वक्त आप ऑफिस में लैपटॉप के सामने बैठे हो, घर के सारे काम निपटाकर फाइनली अपने लिए थोड़ा सा वक्त मिला हो, या फिर फरीदाबाद की ट्रैफिक में FM के सहारे सफर काट रहे हो। जहां भी हो अगले 2 घंटे बस एक काम करना, मुस्कुराते रहना। Happy Hours। मैं हूं RJ पलक और आप सुन रहे हैं द हैप्पी आवर्स 89.6 FM रेडियो महारानी पर, जहां हर दिन मिलेंगे इंटरनेट की इंटरेस्टिंग बातें, जेंजी के नए नए वर्ड्स, वायरल मीम्स, बॉलीवुड की गर्मा गर्म अपडेट्स, फरीदाबाद का लोकल बज और लाइफ की कुछ ऐसी स्टोरीज जो कभी हंसाएंगी, कभी सोच करेंगी और कभी बस आपका मूड फ्रेश कर देंगी। और आज की शुरुआत एक ऐसे वर्ड से होने वाली है जो आपने इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर सुना जरूर होगा, लेकिन उसका एक्चुअल मतलब शायद आज तक नहीं समझा होगा। आखिर ब्रेड क्रमिंग होता क्या है? बस 2 मिनट में डिकोड करते हैं इस वर्ड को, लेकिन उससे पहले एक मस्त सा गाना एंजॉय कीजिए और गाने के बाद मिलते हैं डिकोडेड के साथ। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 FM रेडियो महारानी।

अटक आता माची सटक सटक बम तेरा गुते खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कमॉन बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: पीड़ा
1: yeah.
0: पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker
1: yeah.

कितना दी मशीन बैड बॉय ऑन द ट्रैक बेबी करे बाउंस जैसे हिटरों के चेक सर पे है क्राउन बेबी नो कैप सिक मेरी ट्रिप मेरी सिक ओ कैप बच्चे बच्चे घोराटे मेरा रैप बेबी माइंड होते ब्लो जब बीट करे

0: अच्छा, क्या आपके पास कभी ऐसा मैसेज आया है कि हाय लॉन्ग टाइम नो सी, और आपको तुरंत लगा हो कि वाओ यार इसको तो मेरी याद आ गई, मैं इसकी प्रायोरिटी हूँ, और उसके बाद आप दोनों की एक दूसरे से काफी बात भी होती है, और उसी के बाद 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता 1 महीना सन्नाटा दोबारा से, और उसके बाद फिर से एक और मैसेज आता है कि और बताओ क्या चल रहा है। अगर ये सीन आपको रिलेटेबल लग रहा है तो बधाई हो भाई, आप ब्रेड क्रमिंग के शिकार हैं। अच्छा, इसका नाम सुन के लगता है ना कि जैसे किसी बेकरी का कोई आइटम हो, लेकिन रियलिटी में ना ये डेटिंग और सोशल मीडिया कल्चर का काफी पॉपुलर टर्म है। ब्रेड क्रमिंग का मतलब होता है किसी को इतनी अटेंशन देते रहना कि उसे लगे कनेक्शन अभी भी है, लेकिन सामने वाले पर्सन का मोटिव यही होता है कि इस चीज को यानी कि इस रिश्ते को सीरियसली आगे ही नहीं बढ़ाना है। कभी गुड मॉर्निंग भेज देते हैं, कभी कोई इमोजी भेज देते हैं, कभी रैंडम रील ही शेयर कर देते हैं, और फिर बिना किसी एक्सप्लेनेशन के गायब हो जाते हैं। यानी सामने वाले को बस इतनी होप देते रहते हैं कि भाई वो एक लूप में फंस जाए और वेट करता रहे कि हाँ भाई ही इज माइन या शी इज माइन, और ये हमें नहीं छोड़ेगा, ये हमें लेकर बहुत सीरियस है। और ये आजकल सिर्फ रिलेशनशिप में ही देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि दोस्तियों में भी काफी सीन्स ऐसे देखने को मिले हैं। इसलिए सिर्फ वर्ड्स पे मत जाइए, एक्शन और कंसिस्टेंसी देखनी भी जरूरी है, क्योंकि जो इंसान वाकई आपकी लाइफ में रहना चाहता है वो सिर्फ मैसेज नहीं करता, अपनी प्रेजेंस भी फील करवाता है। चलिए अब थोड़ा म्यूजिक हो जाए, गाना एंजॉय कीजिए, और थोड़ी देर में वापस मिलते हैं इंटरनेट के एक ऐसे ट्रेंड के साथ जो शायद आपने भी रील्स स्क्रॉल करते वक्त जरूर देखा होगा। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 FM रेडियो महारानी। हैप्पी आवर्स।
1: सुनो सुनो सुनो, सबको तरसाने, मोहल्ले में आग लगाने, अपना मैजिक बरसाने आ गई है कोल्हापुर की बिजली।

मेरा नाम डॉक्टर शिलाखा चमन है। मैं मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में सीनियर कंसल्टेंट हूँ पीडियाट्रिक्स और न्यूनेटोलॉजी में। वैक्सीनेशन का मतलब सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता, वैक्सीनेशन का मतलब है हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन किसी भी बीमारी से। जिस बीमारी से हमें प्रोटेक्शन चाहिए उसके खिलाफ हम वैक्सीन देते हैं। उससे क्या होता है, छोटी सी थोड़ा सा जीवाणु जो कि बीमारी नहीं कर सकता बच्चे को दिया जाता है, उससे उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और इम्यून सेल्स में मेमोरी रहती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब असल जीवाणु उसको इन्फेक्ट करे तो वो उसके खिलाफ लड़ सके। तो वैक्सीनेशन सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता। बच्चा बिल्कुल ठीक लग रहा हो फिर भी वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी हमारे लिए पर्याप्त नहीं होती। नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो एक इम्यूनिटी है जो हमें सभी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि वो हमें हर इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगी। अगर हमारा इम्यून सिस्टम पहले से सचेत हो किसी भी बीमारी के खिलाफ तो वो अच्छे से लड़ सकता है उस बीमारी से। इसीलिए हमें बच्चा बिल्कुल ठीक हो फिर भी वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है। डॉक्टर कॉलिंग।

0: लवर्स।
1: कभी नोटिस किया है, पहले हम लोग फिल्मों के डायलॉग्स रिपीट करते थे, फिर टीवी सीरियल्स के, और अब इंस्टाग्राम डिसाइड करता है कि हमें इस हफ्ते क्या बोलना है। आजकल अगर किसी की बात पर थोड़ा सा भी डाउट हो ना, तो बस एक ही रिएक्शन निकलता है, अच्छा जी ऐसा है क्या? दोस्त बोले कि भाई बस 5 मिनट में पहुंच रही हूँ, अच्छा जी ऐसा है क्या? और बॉस अगर बोले कि आज का काम जल्दी खत्म हो जाएगा, ये बहुत बड़ा झूठ है, पर फिर भी अच्छा जी ऐसा है क्या? वैसे सोशल मीडिया की यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है, एक नॉर्मल सा डायलॉग, एक सिंपल सा एक्सप्रेशन, और देखते ही देखते रील्स, कमेंट्स, व्हाट्सएप चैट्स, हर जगह वही लाइन सुनाई देने लगती है। पता ही नहीं चलता कि ट्रेंड कब हमारे फोन से निकलकर हमारी डेली कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा बन जाता है। तो अगर आज कोई आपको अच्छा जी बोल दे तो सीरियस मत हो जाइएगा, हो सकता है वो अभी अभी यही डायलॉग देखकर आपके पास आया हो। और हैप्पी आर्स की तरफ से एक बात याद रखिएगा कि ट्रेंड्स चेंज होते रहेंगे, लेकिन हंसी का ट्रेंड कभी पुराना नहीं होता। चलिए अब इसी हैप्पी वाइब के साथ एक जबरदस्त गाना एंजॉय कीजिए, और गाने के बाद मिलते हैं एक ऐसी स्टोरी के साथ जहां सिर्फ 4 लोगों की वजह से बहुत सीन्स क्रिएट होते हैं। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 FM रेडियो महारानी।
0: हैप्पी आवर्स।

वेलकम बैक गाइज, यू आर लिसनिंग टू फेवरेट सेगमेंट सिनेमा कैप्सूल। मैं हूँ आरजे गीत और यहाँ मैं रिव्यूज नहीं देती बल्कि बताती हूँ कि वीकेंड का डेटा पैक इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मुसाफिर कैफे की, जो बहुत ज्यादा हाईलाइट है इन दिनों। अब ऑनेस्टली ओटीटी पर इतना अच्छा कॉन्टेंट आ रहा है, रिमोट से ज्यादा तो थंब वर्कआउट कर लेता है, हाफ एन आवर सिर्फ स्क्रॉल करने में निकल जाता है और एंड में वही पुराना सिटकॉम ऑन। लेकिन मुसाफिर कैफे इज अ लिटिल डिफरेंट। सबसे पहले विक्रांत मेसी, ये बंदा भाई एक्टिंग नहीं करता, बस स्क्रीन पर आ जाता है और बाकी के इमोशंस ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं। इसको ओवर एक्टिंग का पासवर्ड शायद आज तक मिला ही नहीं। और अच्छी बात ये है कि ये सीरीज अननेसेसरीली लाउड बनने की कोशिश नहीं करती, ना फोर्स्ड एक्शन, ना रैंडम ट्विस्ट, ना वो बैकग्राउंड म्यूजिक जो हर सीन में चलता रहता है, बल्कि एवरीथिंग फील सिंपल ऑर्गेनिक। वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना भी काफी नेचुरल लग रही है, तीनों की केमिस्ट्री स्क्रीन पर बिल्कुल एफर्टलेस फील होती है। ऐसा लगता है कि कैरेक्टर्स एक्टिंग नहीं कर रहे बल्कि अपनी लाइफ जी रहे हैं। ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो स्लो कन्वर्सेशन एंजॉय करते हैं, जो कॉफी पे दो घंटे बैठ सकते हैं और जिन्हें हर 10 मिनट में एक्सप्लोजन की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो हर एपिसोड के बाद बोलते हो बस ट्विस्ट कहाँ है यार, तो मे बी दिस वंस नॉट योर कप ऑफ कॉफी। लेकिन अगर मूड है समथिंग काम, फील गुड और जेन्युइनली वेल परफॉर्म देखने का, देन मुसाफिर कैफे डेफिनेटली डिजर्व अ चांस। मैं हूँ गीत और मिलते हैं नेक्स्ट सिनेमा कैप्सूल में, क्योंकि ओटीटी पर कंटेंट खत्म हो सकता है लेकिन भाई मेरी बातचीत खत्म नहीं होगी। तो वक्त है गाने का, गाना सुनकर आते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरह की किसी भी फाइल को डाउनलोड करने का, खासकर अगर वो आपके बॉस या फिर आपके कलीग की तरफ से आए। अरे अरे, मैं आपको जॉब से निकालने का मंत्रा नहीं बता रही हूँ, बल्कि मंत्रा लेकर आ गई हूँ कि साइबर शील्ड में खुद को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। बिकॉज साइबर क्राइम का ना एक और नया तरीका आ गया मार्केट में। तो नया तरीका ये है, मार्केट में जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं वो आजकल वर्किंग प्रोफेशनल्स को टारगेट करने के लिए नया स्कैम कर रहा है। और वो स्कैम ये है, वो आपका बॉस, आपका सीनियर या फिर आपका कलीग बन करना आपको व्हाट्सएप पर एक फाइल भेजते हैं, और जैसे ही आप उस फाइल को डाउनलोड करते हो या फिर ओपन करते हो ना, और फोन में हो जाते हैं मैलवेयर इंस्टॉल। और इसके बाद होता क्या है, इसके बाद आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाता है और साथ ही पहुंच जाते हैं आपके बैंक डिटेल्स तक। और फिर क्या होता है, फिर होता है आपका अकाउंट खाली। तो अगर इस तरह के स्कैम से बचना है ना, तो किसी भी फाइल को डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, खासकर अगर आपका बॉस कोई फाइल भेजता है तो। तो आज का साइबर मंत्र सिर्फ इतना सा है, अननोन फाइल्स को इग्नोर कीजिए, डायरेक्ट स्किप कर दीजिए, और अगर कोई फाइल आती भी है तो पहले जाकर अपने बॉस से जरूर कंफर्म कीजिए, देन फिर ही डाउनलोड कीजिए। और इस तरह से खुद भी सुरक्षित रहिए, और आज जाकर अपने पूरे ऑफिस वालों को बता दूं कि किसी भी तरह की फाइल को बिना पूछे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लवर्स।
1: कभी नोटिस किया है, पहले हम लोग फिल्मों के डायलॉग्स रिपीट करते थे, फिर टीवी सीरियल्स के, और अब इंस्टाग्राम डिसाइड करता है कि हमें इस हफ्ते क्या बोलना है। आजकल अगर किसी की बात पर थोड़ा सा भी डाउट हो ना, तो बस एक ही रिएक्शन निकलता है, अच्छा जी ऐसा है क्या? दोस्त बोले कि भाई बस 5 मिनट में पहुंच रही हूँ, अच्छा जी ऐसा है क्या? और बॉस अगर बोले कि आज का काम जल्दी खत्म हो जाएगा, ये बहुत बड़ा झूठ है पर फिर भी, अच्छा जी ऐसा है क्या? वैसे सोशल मीडिया की यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है, एक नॉर्मल सा डायलॉग, एक सिंपल सा एक्सप्रेशन, और देखते ही देखते रील्स, कमेंट्स, व्हाट्सएप चैट्स, हर जगह वही लाइन सुनाई देने लगती है। पता ही नहीं चलता कि ट्रेंड कब हमारे फोन से निकलकर हमारी डेली कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा बन जाता है। तो अगर आज कोई आपको अच्छा जी बोल दे तो सीरियस मत हो जाइएगा, हो सकता है वो अभी अभी यही डायलॉग देखकर आपके पास आया हो। और हैप्पी आज की तरफ से एक बात याद रखिएगा कि ट्रेंड्स चेंज होते रहेंगे, लेकिन हंसी का ट्रेंड कभी पुराना नहीं होता। चलिए अब इसी हैप्पी वाइब के साथ एक जबरदस्त गाना एंजॉय कीजिए, और गाने के बाद मिलते हैं एक ऐसी स्टोरी के साथ जहां सिर्फ 4 लोगों की वजह से बहुत सीन्स क्रिएट होते हैं। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 FM रेडियो महारानी।
0: हैप्पी आवर्स।

0: कुछ हटके।
1: ऑफिस स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी। यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वार्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वार्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधरा थेरेपी, वार्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
2: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
3: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: कभी ऐसा हुआ है किसी फिल्म का टीजर भी ना आया हो और फिर भी पूरा इंटरनेट उसी की बात कर रहा हो? बस बॉलीवुड में अभी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज की पॉपकॉर्न अपडेट में बात करते हैं लव एंड वॉर की। वैसे नाम सुनते ही क्यूरियोसिटी तो बनती है, और जब डायरेक्टर हो संजय लीला भंसाली तो एक्सपेक्टेशंस वैसे ही डबल हो जाती हैं। अब रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि फिल्म का फाइनल शूटिंग स्केड्यूल चल रहा है और मेकर्स जल्द ही शूट रैप अप करने की प्लानिंग में है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म में एक साथ नजर आएंगे रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल। अभी टीजर रिलीज नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस ने अपना काम शुरू कर दिया है। कोई फर्स्ट लुक प्रिडिक्ट कर रहा है, कोई रणबीर और विक्की के फेस ऑफ की बात कर रहा है, और कोई भंसाली जी के ग्रैंड सेट्स को लेकर ऑलरेडी एक्साइटेड है। अच्छा, वैसे भंसाली जी की एक बात तो माननी पड़ेगी, उनकी फिल्म सिर्फ देखी नहीं जाती, फील की जाती है। अब टीजर कब आएगा ये तो मेकर्स ही बताएंगे, लेकिन फिलहाल बॉलीवुड की गॉसिप गलियों में लव एंड वॉर का नाम फुल ट्रेंड में है। देखते हैं ये एक्साइटमेंट रिलीज तक बरकरार रहती है या नहीं। फिलहाल म्यूजिक ब्रेक लेते हैं, गाना एंजॉय कीजिए, और गाने के बाद मिलते हैं स्टाइल स्टूडियो में, जहां बात होगी एक ऐसी फैशन मिस्टेक की जो हम सब कभी न कभी कर ही देते हैं। कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। हैप्पी आवर्स।
1: It's the

आता है न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: Covers.
1: कल ऑफिस में ना एक फनी सीन हुआ। एक कॉलीग अंदर आया और सबसे पहले किसी ने उसके शूज नोटिस किए, फिर शर्ट, और फिर किसी ने बोला कि भाई तेरा आउटफिट तो मस्त है लेकिन कलर्स कॉम्बिनेशन में थोड़ी कमी है। सब हंस पड़े और उसी टाइम मुझे लगा कि फैशन सिर्फ ब्रांडेड कपड़े पहनने का नाम नहीं है, कलर कॉम्बिनेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे व्हाइट और डेनिम ब्लू, ब्लैक और बेज, या फिर लेवेंडर के साथ व्हाइट, ये कॉम्बिनेशन सिंपल भी लगते हैं और क्लासी भी। वैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो ब्राइट और फ्रेश कलर्स जैसे स्काई ब्लू, मिंट ग्रीन, लेवेंडर या पीच मूड को भी रिफ्रेश फील देते हैं। और एक बात और, हर ट्रेंड हर किसी पर सूट नहीं करता। किसी इन्फ्लुएंसर पर जो कलर अच्छा लग रहा है जरूरी नहीं वो हम पर भी वैसा ही लगे। इसलिए ट्रेंड को फॉलो जरूर करिए लेकिन पहनिए वही जिसमें आप कंफर्टेबल भी फील करें और कॉन्फिडेंट भी। क्योंकि याद रखिए, बेस्ट आउटफिट वही होता है जिसे पहनकर आपको बार बार शीशा देखना पड़े और खुद की आरती उतारनी पड़े, खुद को ऐसे काला टीका लगाना पड़े। चलिए अब फैशन की बातें बहुत हो गई, थोड़ा म्यूजिक भी हो जाए, गाना एंजॉय कीजिए और गाने के बाद मिलते हैं फरीदाबाद लोकल बस के साथ, जहां बात होगी अपने शहर की एक जरूरी अपडेट की। कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। हैप्पी आवर्स।
2: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: आनंद है। आई एम ए कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एट सऊदी सेक्टर 8। जैसे कि आपने सही कहा कि 6 महीने के बच्चों के लिए सबसे आइडियल और कंप्लीट न्यूट्रिशन इज मदर्स मिल्क यानी कि ब्रेस्ट मिल्क। और ये सही कहते हैं कि लोग की माँ का दूध बेस्ट है। साइंटिफिकली इसलिए ऐसा बोला जाता है कि मदर्स मिल्क में सारी चीजें जो बच्चे के ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हैं स्टार्टिंग के 6 महीने में वो पर्याप्त मात्रा में है। मदर्स मिल्क में बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता और उसके कण भी हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी भी है और जिस क्वांटिटी फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स अवेलेबल हैं वो बच्चे के द्वारा आसानी से पचाए जा सकते हैं। साथ साथ में बच्चे की दिमाग और बच्चे की आंखों के विकास के लिए और पूर्ण विकास के लिए मदर्स मिल्क इज द बेस्ट मिल्क। एंड जैसे आपने कहा कि सिर्फ एज ग्रुप में बच्चे को मिल्क ही काफी होता है, ये सही कह रहे हैं आप कि 0 से 6 महीने के बच्चे में सिर्फ मदर्स मिल्क ही देना होता है। और पानी देना चाहिए या नहीं, खासकर जब मौसम चेंज होने वाला है, गर्मी आने वाली है, काफी पेरेंट्स का कंसर्न ये रहता है, तो 6 मंथ्स तक पानी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है बिकॉज मदर्स मिल्क कंटेन्स मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर जो बच्चे की नीड के लिए अप्रोप्रिएट होता है। तो सिर्फ मदर्स मिल्क ही इम्पॉर्टेंट है 0 to 6 months में, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मेडिकेशन देने की जरूरत नहीं है, कोई टॉप फीड नहीं, कोई पानी नहीं, कोई घुटी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये बस एक ही कंडीशन होता है, अगर बच्चा बीमार है तो सिर्फ दवाइयां या ORS वो आप दे सकते हैं 6 महीने से कम के बच्चे में, उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ मदर्स मिल्क ओनली।
1: डॉक्टर कॉलिंग।

0: बर्ड्स।
1: आज सुबह जब मैं ऑफिस आ रही थी ना, तो एक चीज मैंने पर्सनली नोटिस की कि बारिश की वजह से नीलम चौक के पास काफी पानी जमा हुआ था और उसकी वजह से ट्रैफिक काफी स्लो हो गया था। जो रूट नॉर्मली कुछ ही मिनट्स में क्रॉस हो जाता है, आज वहाँ गाड़ियां बम्पर टू बम्पर चल रही थी। तब लगा ये अपडेट आपसे शेयर करना जरूरी है। आज जब आप शाम को ऑफिस से घर जाएं या शाम को ही उस साइड से निकलने का प्लान है, तो नीलम चौक और अंडरपास वाले रूट को फिलहाल अवॉइड करने की कोशिश करिएगा, स्पेशली अगर बारिश फिर से शुरू हो जाए। अगर पॉसिबल हो तो हाईवे से निकलना ज्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है। कई बार डिस्टेंस जरूर बढ़ जाता है, लेकिन ट्रैफिक में फंसने से अच्छा है। और हाँ, बारिश के मौसम में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि पानी भरी रोड देखकर स्पीड बिल्कुल मत बढ़ाइए। थोड़ा पेशेंस रखिए, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करिए और आराम से ड्राइव करिए। घर 10 मिनट लेट पहुंचना चलेगा, लेकिन सेफ पहुंचना सबसे जरूरी है। चलिए अब एक मस्त सा गाना एंजॉय कीजिए और थोड़ी देर में बात करेंगे एक छोटी सी हैबिट की जो शायद आपका नजरिया बदल दे। कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड।
0: हैप्पी आवर्स।

सो एंटरटेनमेंट की दुनिया में अगर किसी ट्रेलर ने इस हफ्ते सबसे ज्यादा बज क्रिएट किया है तो वो है रामायण। 30 जुलाई को इसका ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया है एंड बिलीव मी इंटरनेट लिटरली पॉज हो गया था। सोशल मीडिया से लेकर थिएटर्स तक हर जगह बस इसी की बात हो रही है। डायरेक्टर नितेश तिवारी की रामायण पार्ट 1 दिवाली 2026 पर थिएटर्स में रिलीज होने वाली है और ट्रेलर देखकर लग रहा है कि मेकर्स ने स्केल के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। सबसे पहली बात कर लेते हैं विजुअल्स की। VFX इतने ग्रैंड और पॉलिश्ड लग रहे हैं कि काफी लोग बोल रहे हैं फाइनली माइथोलॉजी इज गेटिंग द सिनेमैटिक ट्रीटमेंट इट डिजर्व्स। और हाँ, सबसे ज्यादा सरप्राइज दिया है रणबीर कपूर ने। ट्रेलर आने से पहले बहुत सारे लोगों का एक ही कंसर्न था, एनिमल के बाद क्या वो श्रीराम के रोल में एक्सेप्ट हो पाएंगे, लेकिन ट्रेलर के बाद काफी हद तक वो डाउट खत्म होता दिख रहा है। उनका काम, स्क्रीन प्रेजेंस और सटल एक्सप्रेशंस ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। अब बात करते हैं साई पल्लवी। एस सीता बिल्कुल ग्रेसफुल, एलिगेंट और एफर्टलेस लग रही हैं। और अब बात आती है उस एंट्री की जिसका सबको था इंतजार, यश एस रावण। पावरफुल लुक, रॉयल ऑरा और सिर्फ कुछ ही सेकंड की प्रेजेंस में उन्होंने सोशल मीडिया पर धमाका कर दिया है। काफी लोग तो कह रहे हैं कि रावण का कैरेक्टर ऑलरेडी घूस पंप्स दे रहा है। और हाँ, एक बात फैंस ने जरूर नोटिस की है, ट्रेलर में हनुमान जी का प्रॉपर ग्लिम्स दिखा ही नहीं और बस इसी वजह से ऑडियंस और भी ज्यादा क्यूरियस हो गई है। शायद मेकर्स ने वो बिगेस्ट मोमेंट फिल्म के लिए सेव कर रखे हो। ओवरऑल ट्रेलर को ऑडियंस ने जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया है और बस काउंटडाउन शुरू हो चुका है दिवाली 2026 का। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। एंटरटेनमेंट की दुनिया में हर बड़ी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।

0: watch more, log on to www.erosnow.com. Best of
1: Anjali. कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरह की किसी भी फाइल को डाउनलोड करने का, खासकर अगर वो आपके बॉस या फिर आपके कलीग की तरफ से आए। अरे अरे, मैं आपको जॉब से निकालने का मंत्रा नहीं बता रही हूँ, बल्कि मंत्रा लेकर आ गई हूँ कि साइबर शील्ड में खुद को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। बिकॉज साइबर क्राइम का ना एक और नया तरीका आ गया मार्केट में। तो नया तरीका ये है, मार्केट में जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं वो आजकल वर्किंग प्रोफेशनल्स को टारगेट करने के लिए नया स्कैम कर रहे हैं। और वो स्कैम ये है, वो आपका बॉस, आपका सीनियर या फिर आपका कलीग बन करना आपको व्हाट्सएप पर एक फाइल भेजते हैं, और जैसे ही आप उस फाइल को डाउनलोड करते हो या फिर ओपन करते हो ना, और फोन में हो जाता है मैलवेयर इंस्टॉल। और इसके बाद होता क्या है, इसके बाद आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाता है और साथ ही पहुंच जाते हैं आपके बैंक डिटेल्स तक। और फिर क्या होता है, फिर होता है आपका अकाउंट खाली। तो अगर इस तरह के स्कैम से बचना है ना, तो किसी भी फाइल को डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, खासकर अगर आपका बॉस कोई फाइल भेजता है। तो आज का साइबर मंत्र सिर्फ इतना सा है, अनोन फाइल्स को इग्नोर कीजिए, डायरेक्ट स्किप कर दीजिए, और अगर कोई फाइल आती भी है तो पहले जाकर अपने बॉस से जरूर कंफर्म कीजिए, देन फिर ही डाउनलोड कीजिए। और इस तरह से खुद भी सुरक्षित रहिए, और आज जाकर अपने पूरे ऑफिस वालों को बता दूं कि किसी भी तरह की फाइल को बिना पूछे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी, नहीं मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।
2: Never miss an update. Subscribe now.

0: दिन भर हम इतने बिजी रहते हैं कि रात को सोने से पहले बस ये सोचते हैं कि आज क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आज क्या क्या अच्छा हुआ? बस इसी बात ने मुझे आज सोचने पर मजबूर कर दिया। आज रात ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। सोने से पहले सिर्फ 10 सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिए और पूरे दिन की 3 ऐसी चीजें याद कीजिएगा जिनके लिए आप दिल से ग्रेटफुल हैं। हो सकता है सुबह मम्मी की बनाई हुई चाय हो, ऑफिस में किसी दोस्त की एक छोटी सी हेल्प हो, घर वापस आते वक्त बारिश की ठंडी हवा हो, या सिर्फ इतना ही कि आज का दिन ठीक ठाक निकल गया। देखिए, खुश रहने के लिए हमेशा बड़ी वजह नहीं चाहिए होती। कभी कभी ग्रैटिट्यूड ही हैप्पीनेस का शॉर्टकट बन जाता है। तो आज का हैप्पी आवर्स चैलेंज ये है कि आज रात कंप्लेंट से पहले अपनी 3 ब्लेसिंग जरूर काउंट करिएगा। बिलीव मी, प्रॉब्लम्स शायद कल भी होंगी लेकिन उन्हें देखने का नजरिया जरूर बदल जाएगा। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज का द हैप्पी आवर्स को यहीं शटर डाउन करते हैं। मैं हूं आरजे पलक और आप सुन रहे थे द हैप्पी आवर्स सिर्फ 89.6 FM रेडियो महारानी पर। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रेटफुल रहिए। मैं मिलूंगी कल इसी वक्त दोपहर 2 बजे द हैप्पी आवर्स के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और कीप स्माइलिंग। हैप्पी आवर्स।
1: Lui, tu te fais du mal, s'il te plaît, il pense. Il a souillé ton âme, toi tu t'es battu. Ton cœur est

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चले, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
5: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
6: झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: मोरने, बाका मा बोले आधी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ को पेड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब सही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: झुमका लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Oh my god! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599! Click on the link now.
1: ठहरो जरा, रुको जरा, ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी। सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी, फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना हो

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट का ओवर

मौसम अच्छा हो गया ना आज, और पता है आप लोगों को जितनी फरीदाबाद में बारिश हुई है ना, उससे कई ज्यादा दिल्ली के अंदर बारिश हुई है। एंड मुझे दुख हो रहा है, क्या नफरत है फरीदाबाद से, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त पलवल में रहते हैं, मेरे कुछ दोस्त गुड़गांव में रहते हैं, मेरे कुछ दोस्त दिल्ली में रहते हैं। सब कहते हैं कि बारिश आ रही है, सब स्टेटस लगाते हैं, स्टोरी लगाते हैं, और फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ जलन होती है। स्वागत है सभी का रेडियो महारानी HR 896, सुन रहे हैं आप एंड मैं हूं कौन, जी बिल्कुल आप सभी का स्वागत करते हैं आपका रेडियो महारानी पर, तहे दिल से स्वागत है। आज दोपहर में लाइक 2 बजे के करीब मैं घर से निकला एंड मैंने दिल्ली की तरफ देखा तो बिल्कुल घने काले बादल, उसके बाद मैंने अपने फरीदाबाद की तरफ वापस मुंह किया तो बादल ही नहीं थे, धूप बिल्कुल चटकती हुई और इतना ज़्यादा ह्यूमिड टेम्परेचर कि मेरी हालत ख़राब हो गई। और खैर मौसम विभाग तो कह रहा था कुछ और, मगर हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में। चलिए स्वागत है जी सभी का, 3 घंटे के लिए मैं आप सभी के साथ हूँ, और जो लोग अभी पहली बार जुड़ रहे हैं मेरे साथ उनको बता देता हूँ कि मैं अगले 3 घंटों तक खूब सारी बातें करने वाला हूँ। कॉमनवेल्थ गेम्स इज नाउ ऑफिशियली ओवर, मेडल्स की टैली के बारे में भी बात करेंगे हम लोग, और इसी के साथ साथ फरीदाबाद की अगर कोई भी प्रॉब्लम है जो कि आप मुझसे शेयर करना चाह रहे हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ पूरे फरीदाबाद की पब्लिक तक पहुँचे तो आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करके भेजिए। कैसे भेज सकते हो, नंबर है हमारा एक सिंपल सा 9654896896, इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं आप लोग, और व्हाट्सएप पर भी ये नंबर अवेलेबल है। एंड साथ ही साथ पता है आप लोगों को स्ट्रीट फूड खाने के शौकीन तो हम सब ही हैं, तो स्ट्रीट फूड के टॉप 20 लिस्ट में से भारत के भी कुछ शहरों के नाम आए हैं और एक तो हमारे बहुत पास ही है, तो करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में बात, और इसी बीच गाने भी चलेंगे खूब सारे, तो सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, 5 से 9 आप सभी के साथ यहीं पर हूँ, मैं हूँ RJ गौरव आप सभी के साथ।

0: मेरा नाम डॉक्टर शिलाखा चमन है। मैं मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में सीनियर कंसल्टेंट हूँ पीडियाट्रिक्स और न्यूनेटोलॉजी में। वैक्सीनेशन का मतलब सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता, वैक्सीनेशन का मतलब है हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन किसी भी बीमारी से। जिस बीमारी से हमें प्रोटेक्शन चाहिए उसके खिलाफ हम वैक्सीन देते हैं। उससे क्या होता है, छोटी सी थोड़ा सा जीवाणु जो कि बीमारी नहीं कर सकता बच्चे को दिया जाता है, उससे उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और इम्यून सेल्स में मेमोरी रहती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब असल जीवाणु उसको इन्फेक्ट करे तो वो उसके खिलाफ लड़ सके। तो वैक्सीनेशन सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता। बच्चा बिल्कुल ठीक लग रहा हो फिर भी वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी हमारे लिए पर्याप्त नहीं होती। नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो एक इम्यूनिटी है जो हमें सभी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि वो हमें हर इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगी। अगर हमारा इम्यून सिस्टम पहले से सचेत हो किसी भी बीमारी के खिलाफ तो वो अच्छे से लड़ सकता है उस बीमारी से। इसीलिए हमें बच्चा बिल्कुल ठीक हो फिर भी वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है।
1: डॉक्टर कॉलिंग। जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट का

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है। शर्म इसलिए नहीं है क्योंकि देखो ये चीज़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, और हम सब में से कोई ना कोई इंसान कभी ना कभी इन लोगों से टकराया ज़रूर होगा। हो सकता है आप लोगों ने इनको ठग दिया हो क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसा करते हैं, और हो सकता है कि आप शिकार हो गए हो, एंड भगवान ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ कौन, रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। रेडियो का गौरव स्वागत करता है आप सभी का तहे दिल से। एंड एक बात बोलना चाहता हूँ, वो बात ये है कि साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड ये सबसे बड़ा एक मुद्दा है। एक्चुअली होता क्या है, आप लोगों को ना झूठे इन्वेस्टमेंट के वादे करे जाएंगे, और ऐसा नहीं है कि वो लोग चालाकी नहीं दिखाएंगे, वो पता क्या बोलेंगे आपको कि सर हम आपको पैसा बढ़वा सकते हैं, और फिर आपको एक ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलेंगे। हो सकता है वो फर्जी ऐप हो सकता है वो जेन्युइन ऐप हो, तो फिर उसके बाद वो बोलेंगे सर आप खुद से पैसे लगाइए और आप लाइन पर बने रहिए हमारे साथ, और आप खुद से पैसे लगा भी देंगे, और जैसे ही वो आपको एग्जिट करने के लिए बोलेंगे आपका प्रॉफिट भी हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके दिमाग में आएगा कि यार मेरा प्रॉफिट हो तो रहा है, अच्छे लोग हैं, चलो मैं इनको पैसे दे देता हूँ। आपने मान लेते हैं आपने उनका सब्सक्रिप्शन खरीदा 5,000 रुपये का। अब 5,000 रुपये का जब आपने सब्सक्रिप्शन खरीदा, फिर उसके बाद वो उस 5,000 रुपये से आपके 10-15,000 रुपये का प्रॉफिट बनवा देंगे। यहाँ वो आपसे ट्रस्ट जीत लेंगे। उसके बाद वो बोलेंगे सर एक काम कीजिए, आप इतना टाइम नहीं बैठ पाते तो आप मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, मैं ही आपके पैसे लगा दूंगा। और वहाँ पर फिर 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, 5,00,000, 50,00,000, नो लिमिट। मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है जिस इंसान के पास पैसा बहुत होता है, उसके पास टाइम नहीं होता, वो पैसा अपना दे देता है, और फिर उसके बाद उसके साथ हो जाती है साइबर ठगी। और इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ कही जाती है, और वो ये है कि जितनी जल्दी आप कंप्लेंट करेंगे उतने चांसेस है कि आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, वापस अगर और भी साइबर फ्रॉड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि फरीदाबाद की साइबर क्राइम टीम ने कुछ कमाल कर दिखाया। क्या कमाल है वो करेंगे इसके बारे में बात, मगर इस गाने के बाद।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक पर क्लिक ना करें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

यो गाइस, स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मौसम कितना प्यारा है ना, मौसम तो प्यारा है मगर उससे भी ज्यादा अच्छी चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि 129 साइबर क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं एंड उनसे करीब करीब 1 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए गए हैं। आई नो दिस अमाउंट इज वेरी लेस क्योंकि हर साल बहुत ही ज्यादा करोड़ों में फ्रॉड होता है और ये लोग पैसे का हेर फेर तुरंत कर देते हैं और ये लोग सच में बहुत ज्यादा दिमाग वाले होते हैं मगर ये अपना दिमाग डिस्ट्रक्शन मोड में लगाते हैं, कंस्ट्रक्टिव मोड में नहीं। मतलब कंस्ट्रक्टिव चीजों में अगर दिमाग लगाएंगे तो शायद ये हजारों करोड़ों की कंपनी खड़ी कर सकते हैं, बट नहीं, इनका दिमाग तो चलता है ऐसी चीजों में। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि 129 लोगों को पकड़ा गया है साइबर फ्रॉड के केस में। एक हैट्स ऑफ है फरीदाबाद की साइबर टीम को, हरियाणा की साइबर टीम को, और इसी के साथ साथ मैं बस यही प्रे करूंगा कि

0: जितने भी लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है उन सब के आरोपी पकड़े जाएं और उनके पैसे जितनी जल्दी हो सके उनको मिल जाएं। अच्छा, यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन वाली बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो फरीदाबाद की पब्लिक, देखो एक चीज़ है कि अगर भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, बट अगर साइबर फ्रॉड होता है तो जितनी जल्दी आप लोग कंप्लेन करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस है कि आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। तो इसके बारे में ज़रा सोचिए। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी को एंजॉय करते जाइए, क्योंकि आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजेंगे एंड उनमें से एक गाना अभी मैं चला देता हूँ आप सभी के लिए। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं HR 89.6, मैं हूँ RJ गौरव आप सभी के साथ।
1: इट इज अ सनी डे।
2: ओ सनी शेयर दे यार।
1: यार सॉरी।
2: और फिर मिला है तुलसी?
1: कितने ब्रो, मेरी तुलसी कुमारी को अता पता है ही नहीं यार।

हेलो एंटरटेनमेंट के पागल लोग, वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, जहां हम स्क्रीन के इस पार की दुनिया को थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा फनी और फुल मसालेदार अंदाज में डिकोड करते हैं। तो भाई, जिस शो ने जेल के अंदर से इतना ड्रामा बाहर भेजा कि घर बैठे लोगों को भी लगा, भाई हमारी लाइफ तो काफी पीसफुल है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लॉकअप की। तो अब लॉकअप पहुंच चुका है अपने ग्रैंड फिनाले के दरवाजे तक, और जैसे जैसे ट्रॉफी करीब आ रही है, कंटेस्टेंट के असली गेम प्लान्स भी बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि रियलिटी शो का रूल सिंपल है। शुरुआत में सब बोलते हैं मैं ना यहाँ दोस्त बनाने आया हूँ, और फाइनली आते आते वही दोस्ती बदल जाती है, सॉरी ब्रो, ट्रॉफी के बीच में फ्रेंडशिप नहीं आती। इस शो में फाइट्स भी मिले, इमोशंस भी मिले, सीक्रेट्स भी मिले, और कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आए जहां ऑडियंस ने रिमोट नहीं बल्कि अपना पेशेंस पकड़ रखा था। और अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन बनेगा लॉकअप का अल्टीमेट विनर? किसके फैंस करेंगे सबसे ज्यादा नॉइस? किसका गेम पड़ेगा सबसे स्ट्रॉन्ग? और कौन निकलेगा असली जेल का बाजीगर? क्योंकि रियलिटी शो में आखिरी वीक में ना भाई कंटेस्टेंट नहीं बल्कि उनकी स्ट्रेटेजी का मेकओवर होता है। तो अगर आप भी पॉपकॉर्न लेके बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं उस फाइनल धमाके का, तो बने रहिए एंटरटेनमेंट की दुनिया के साथ। मैं हूँ गीत और चल रहा है सिनेमा का कैप्सूल।

0: नाम डॉक्टर आनंद है, आई एम ए कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एट सर्वोदय सेक्टर 8। जैसे कि आपने सही कहा कि 6 महीने के बच्चों के लिए सबसे आइडियल और कंप्लीट न्यूट्रिशन इज मदर्स मिल्क यानी कि ब्रेस्ट मिल्क। और ये सही कहते हैं कि लोग की माँ का दूध बेस्ट है। साइंटिफिकली इसलिए ऐसा बोला जाता है कि मदर्स मिल्क में सारी चीजें जो बच्चे के ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हैं स्टार्टिंग के 6 महीने में वो पर्याप्त मात्रा में हैं। मदर्स मिल्क में बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता और उसके कण भी हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी भी है और जिस क्वांटिटी फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स अवेलेबल हैं वो बच्चे के द्वारा आसानी से पचाए जा सकते हैं। साथ साथ में बच्चे की दिमाग और बच्चे की आंखों के विकास के लिए और पूर्ण विकास के लिए मदर्स मिल्क इज द बेस्ट मिल्क। एंड जैसे आपने कहा कि सिर्फ एज ग्रुप में बच्चे को मिल्क ही काफी होता है, ये सही कह रहे हैं आप कि 0 से 6 महीने के बच्चे में सिर्फ मदर्स मिल्क ही देना होता है। और पानी देना चाहिए या नहीं, खासकर जब मौसम चेंज होने वाला है, गर्मी आने वाली है, काफी पेरेंट्स का कंसर्न ये रहता है, तो 6 मंथ्स तक पानी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है बिकॉज मदर्स मिल्क कंटेन्स मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर जो बच्चे की नीड के लिए अप्रोप्रिएट होता है। तो सिर्फ मदर्स मिल्क ही इम्पॉर्टेंट है 0 to 6 months में, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मेडिकेशन देने की जरूरत नहीं है, कोई टॉप फीड नहीं, कोई पानी नहीं, कोई घुटी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये बस एक ही कंडीशन होता है, अगर बच्चा बीमार है तो सिर्फ दवाइयां या ORS वो आप दे सकते हैं 6 महीने से कम के बच्चे में, उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ मदर्स मिल्क ओनली।
1: डॉक्टर कॉलिंग
2: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

0: बारिश हुई कब? कल रात को। बारिश हुई कब? आज दोपहर को। और इसी के साथ साथ क्या हुआ? वाटर लॉगिंग। बिल्कुल, ये तो होता ही है। मतलब देखो, उतना लेवल का वाटर लॉगिंग नहीं हुआ, बट जितना भी हुआ वो बहुत था। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। जी बिल्कुल, आरजे गौरव आप सभी के साथ है। एंड एक बात बोलना चाहूंगा, वो ये कि देखो, फरीदाबाद में बारिश जैसी हो जाती है ना, फिर उसके बाद पता नहीं क्यों पानी भरना शुरू हो जाता है। इसका एक मेन रीज़न है कि जितनी भी नालियाँ हैं ना, उन सब की सफाई नहीं हुई है, और अगर सफाई होती भी है तो फिर लोग उसमें पन्नियाँ डाल देते हैं। और मैं दोनों की गलती बताऊंगा। देखो, सफाई नहीं हो रही तो हम लोग दोष दे सकते हैं सरकार को, बट अगर सफाई होने के बाद भी फिर से वही चीज़ रिपीट हो रही है तो फिर गलती किसकी है? गलती हम सिटीजन्स की है। और मैं काफ़ी सारी जगह ऐसे गिनवा सकता हूँ ऑन फिंगर टिप्स कि जहाँ पर मैं ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन देखता हूँ सफाई हो रही है, बट तीसरे दिन फिर से वहाँ पर कचरा आ जाता है। तो वहाँ पर सरकार आके खुद से तो कचरा डाल नहीं रही है, सरकारी कर्मचारी खुद से तो आके कचरा नहीं डाल रहे। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके कचरा खुले में डालने से बचिए। एंड अगर आप लोग किसी और को भी देखते हैं तो उनको गाइड कीजिए, उनको बताइए कि नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है, तभी तो स्वच्छ फरीदाबाद बनेगा। स्वच्छ फरीदाबाद बनेगा तो स्वच्छ भारत बनेगा। और आप लोगों को बस समझाना है प्यार से, हाँ, लठ मार के नहीं समझाना है। हाँ, मैं मानता हूँ कि जवान खून है, गर्मी होती है अंदर, बट नहीं ब्रो, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों ने दूसरे को समझाना, और दूसरी चीज़, आप लोगों ने खुद को भी ध्यान से रखना है कि हम जो भी चीज़ खा रहे हैं गाड़ी में बैठ के, तो वो पन्नी ना उसकी गाड़ी से बाहर नहीं जानी चाहिए, गाड़ी के अंदर ही रहनी चाहिए, और फिर उसको डस्टबिन में ही आपको डालना है। तो चलिए, इसी के साथ साथ एक गाना चला देता हूँ। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं 89.6। मैं हूँ गौरव आप सभी के साथ।
1: पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट, सारेगामा कारवां।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रास्ता रास्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: से स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी। यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वार्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वार्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधरा थेरेपी, वार्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
1: और सिर्फ यही नहीं, दे आल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
2: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरी वन। स्ट्रीट फूड में तो बाजी मार ली हम लोगों ने। नहीं, मैं तारीफ कर रहा हूँ, मैं यहाँ सरकाज़म में नहीं बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं स्ट्रीट फूड दुनिया भर के 2026 के बेस्ट सिटीज में से इंडिया के 3 शहर शामिल है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ कौन,
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव।
0: बिल्कुल, रेडियो का गौरव है आप सभी के साथ। एंड जो मैं ये बात बोल रहा हूँ वो ऐसा है कि द बेस्ट सिटीज फॉर स्ट्रीट फूड इन 2026, इसमें भारत के 3 शहर हैं जिसमें से 10th नंबर पर जयपुर है। तो जयपुर को बहुत अच्छी जगह मिली है। माफ कीजिए, 16वें नंबर पर जयपुर है, 10वें नंबर पर मुंबई है। तो मुंबई, क्या खाना मिलता है वहाँ पर स्ट्रीट फूड? वड़ा पाव, मिसल पाव और भी बहुत सारी चीज़ें, पानी पूरी है, भेलपूरी है, दाबेली है। दाबेली वैसे गुजराती डिश है, बट आपको वहाँ भी मिल जाएगी, आपको वहाँ वड़ा पाव भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको वहाँ पर साउथ इंडियन फूड भी मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़, पाव भाजी कैसे मिस कर सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो जयपुर का नाम आया है। जयपुर एक्चुअली में 15th पोजीशन पे आया है। अब जयपुर का क्या स्ट्रीट फूड है ये मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट अगर कोई जयपुर का इंसान फरीदाबाद में रह रहा है तो वो मेरे साथ शेयर कर सकता है। और हाँ, इसी के साथ साथ हमारा पड़ोसी मीन्स बिल्कुल यहाँ से कह रहे हैं दिल्ली अब दूर नहीं, तो दिल्ली पड़ोस में ही तो है। नई दिल्ली का नाम आ गया है टॉप 20 सिटीज में बेस्ट फूड, बेस्ट स्ट्रीट फूड बोलूंगा मैं। तो यहाँ पर दिल्ली में तो सब कुछ ही मिल जाता है। यहाँ कोरियन लाफिंग भी मिल जाती है, चाइनीज मोमोज भी मिल जाते हैं और बहुत सारी अदर डिशेस भी मिल जाती है। साउथ इंडियन खाना हो या फिर अमेरिकन कुजीन हो, इंटरनेशनल कोई भी कुजीन हो ना, वो सारी दिल्ली में तो ज़रूर मिल जाती है। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को दिल्ली की बेस्ट चीज़ क्या लगती है, खाने के मामले में कह रहा हूँ, कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ जाना प्रेफर करते हैं कि हाँ यहाँ जाएंगे और यहाँ जाके हम लोग यही खाएंगे, बताइएगा ज़रूर। नंबर है हमारा 9654896896। फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ, सुनिए इस गाने को। मैं हूँ द मोस्ट वॉन्टेड मंडा आप सभी के साथ।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो पिया।
1: क्या आप लोगों को कभी सपने में सांप दिखाई दिया है? क्योंकि मुझे तो बहुत दिखाई दिया है। एंड मैंने जैसे ही इसके बारे में सोचा तो मुझे पता लगा कि हाँ, सांप दिखने का भी एक मतलब होता है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं HR 89.6। मैं कौन हूँ बता दीजिए, मोस्ट वांटेड मुंडा, बट नहीं
2: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव।
1: रेडियो का गौरव स्वागत करता है आप सभी का नाइटमेयर में। नाइटमेयर मीन्स डरा नहीं रहा हूँ आप लोगों को, सपने डिकोड कर रहे हैं हम लोग। और सपनों की बात जब आई तो सपनों में से एक सपना निकल कर आया, और वो सपना था सांप दिखने का। सांप कैसा दिख सकता है? सफ़ेद सांप दिख सकता है, काला सांप दिख सकता है, या फिर आपने सांप को पकड़ लिया है, या फिर सांप उड़ रहा है, ऐसे भी हो सकता है ना। अगर आपको सफ़ेद सांप दिखाई दिया ना सपने में, तो इसका मतलब है आपके पास पैसा ही पैसा होगा, किस्मत बदलने वाली है, इसका इशारा है। दूसरी चीज़, सांप को पकड़ना। अगर आपने सपने में देखा कि आप सांप को पकड़ रहे हो, तो आपको एक बहुत ही बड़ी सफलता मिलने वाली है, सक्सेस बहुत पास है। और अगर सांप को उड़ते हुए देख रहे हो, तो फिर करियर या फिर बिजनेस में तरक्की होने वाली है। अब नेगेटिव चीज़ें भी तो होती है ना सपने में। मतलब सपने में अगर आपने काला सांप देख लिया तो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है। और अगर आपको सांप ने काट लिया है सपने में, जो कि मुझे कुछ टाइम पहले काटा था, तो इसका मतलब है कि आपको आने वाले टाइम में सावधान रहना है, क्योंकि कोई भी दुश्मन आपका नुकसान कर सकता है। और अगर आपके पीछे सांप पड़ गया है, तो सांप को पीछे भागते हुए देखने का मतलब है कि कोई बड़ा डर या फिर दुश्मन आपके पास आने की कोशिश कर रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में रोज हम बात किया करेंगे इसी टाइम, मतलब ऑलमोस्ट इसी टाइम पे बात किया करेंगे कि कैसे सांप के बारे में बात कर सकते हैं, फिर सपने कैसे डिकोड कर सकते हैं। तो करेंगे हम लोग सपनों को डिकोड। अगर आपने भी कोई सपना देखा है तो शेयर कीजिएगा हमारे साथ। नंबर है जी 9654896896। व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आप लोग, कॉल भी कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ। मैं हूँ कौन, गौरव, आप सभी के साथ, और आप सुन रहे हैं HR 89.6।
3: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ, AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।

0: कुछ हटके।
1: राजस्थानी तड़के में हरियाणवी गाना रुचि का जांगर राजमावर और अपने इंग्लिश म्यूजिक

0: क्या आपको पता है कि कॉमनवेल्थ 2030 इंडिया में होने जा रहा है? स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। हम कौन?
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव।
0: बिल्कुल, रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है। एंड आप सभी को बता दूं, 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो खत्म हो चुका है ऑफिशियली और इंडिया चौथे स्थान पर आ गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस। और यहाँ पर मैं एक और बात बोलना चाहूँगा, देखो पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे इंग्लैंड, तीसरे पे कनाडा, चौथे पे है इंडिया। और यहाँ पर ना चाइना नहीं था अभी, चाइना कभी भी कॉमनवेल्थ गेम्स में होता नहीं है, बट अगर चाइना होता तो शायद तगड़ी टक्कर मिल सकती थी। अमेरिका भी नहीं है इसमें, तो तगड़ी टक्कर और भी ज़्यादा मिल सकती थी। तो इंडिया की बात करते हैं, इंडिया ने चौथे नंबर पर पोजीशन होल्ड रखी। टोटल 39 मेडल्स आए इंडिया के, जिनमें से 13 थे गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज। एक बहुत ही अच्छा नंबर मिला है गोल्ड में, मतलब 13 गोल्ड लाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वहीं पर स्कॉटलैंड की बात करूँ तो स्कॉटलैंड भी ऑलमोस्ट हमारे बराबर ही है, उसके पास भी 13 गोल्ड है, उसके पास भी टोटल 39 मेडल्स है, बट वो कहीं ना कहीं सिल्वर में पीछे रह गया। और इसी के साथ साथ आप सभी को बता दूं कि इंडिया ने क्या कहाँ, मतलब एक चमचमाती हुई रेस जीती है। रेस मींस नॉट रनिंग वाली रेस, बॉक्सिंग में सबसे बढ़िया किया, 7 गोल्ड 3 सिल्वर। वेट लिफ्टिंग में कंट्रीब्यूटिंग 8 मेडल्स। एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स में भी हमारे पास सिल्वर आया। और इसी के साथ साथ आप सभी को बताऊं, जूडो में भी पहली बार एक ब्रेक थ्रू मिला है, गोल्ड मेडल आया अस्मिता देव और हर्ष सिंह की तरफ से। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं और अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर सभी अंकलों से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ बच्चों को खेलने दो, आप लोग पार्क में खेलने नहीं देते, प्लीज़ खेलने दो बच्चों को। बच्चे खेलने कहाँ जाएंगे, मोबाइल में तो ही ना खेलेंगे। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गानों में से ये वाला गाना रेडियो महारानी पर।

0: ऑफिस स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी। यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वार्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वार्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधरा थेरेपी, वार्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
1: और सिर्फ यही नहीं, दे आल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
2: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहें। बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

अभी कुछ दिन पहले ही मैं रश्मिका मंदाना की तारीफ कर रहा था और मुझे लगता है मेरी ही नजर लग गई इंडिया के नेशनल क्रश को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई है इन्हें रिसेंटली। इनको हिप इंजरी हुई थी और उसकी वजह से शूटिंग से इन्हें बहुत देर तक रेस्ट लेना पड़ गया। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ कौन, रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। देखिए मैं जो बात कर रहा था, रेडियो को गौरव आप सभी का स्वागत करते हैं पहले तो, और बात कर रहा था मैं रश्मिका मंदाना के बारे में। उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही मीसा की और उसमें बहुत सारे एक्शन सीन्स इन्होंने करने थे, तो वो एक्शन सीन्स कर रही थी। अब उनके बेसिकली राइट हिप में एक टेंडन में चोट आ गई थी, बिल्कुल अलग हो गया था वो टेंडन। और अब इन्होंने खुद से आके एक अपडेट दिया है, बोला कि देखो कूल्हे में दोनों तरफ चार चार टेंडन होती है और जो कूल्हे और पैरों को जोड़ती है, ठीक है। अब यहाँ से उनका कहना है कि उनका जो राइट वाला कूल्हा है ना, वहाँ से उनके टेंडन अलग हो गया था। अब यहाँ पर मीसा के डांस कर शूटिंग करते वक्त ये इंजरी हुई है और अभी ये बहुत बेटर हो चुकी हैं, मगर इनका यही कहना है कि दर्द तो ऐसा है कि कभी कभी बर्दाश्त भी नहीं होता। तो ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी है, बट अभी भी इनको टाइम लगेगा रिकवर करने में। तो हम तो बस यही बोलना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये स्टे हेल्दी, स्टे फिट और जल्दी जल्दी रिकवर करके वापस आए, ताकि अपने फैंस के बीच में एक बार फिर से अपना जलवा बिखेर सके। और इसी के साथ साथ मैं एक और बात बोलना चाहूँगा, जो भी इंसान सोच रहा है क्रिएटर बनने की या फिर इन्फ्लुएंसर बनने की या फिर सोचते हैं कि बॉलीवुड में जाना है, तो ऑल द बेस्ट टू यू, बट सोच के रखिएगा कि हाँ, उनकी लाइफ बाहर से ग्लैमरस भले ही दिखती है मगर अंदर से बहुत सारे कष्ट उनको भी होते हैं। सोचिए इस बारे में। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने और खूब सारी बातें चलती रहेंगी मेरे दोस्त।

0: हैलो जी सत श्रीकाल, तुम हमने साडा गाना सुन के हटे हो, सुनिया लाइक कमेंट करके जरूर दस्यो तुम्हें गाना किमें लग्या। कि मेरे अगले गाने सुनने लिए मिक्सिंग यूट्यूब चैनल में जरूर सबसक्राइब कर लियो। थैंक यू सो मच।
1: रेडियो महारानी कुछ हटके।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: मेरा नाम डॉक्टर शिलाखा चमन है। मैं मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में सीनियर कंसल्टेंट हूँ पीडियाट्रिक्स और न्यूनेटोलॉजी में। वैक्सीनेशन का मतलब सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता, वैक्सीनेशन का मतलब है हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन किसी भी बीमारी से। जिस बीमारी से हमें प्रोटेक्शन चाहिए उसके खिलाफ हम वैक्सीन देते हैं। उससे क्या होता है, छोटी सी थोड़ा सा जीवाणु जो कि बीमारी नहीं कर सकता बच्चे को दिया जाता है, उससे उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और इम्यून सेल्स में मेमोरी रहती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब असल जीवाणु उसको इन्फेक्ट करे तो वो उसके खिलाफ लड़ सके। तो वैक्सीनेशन सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता। बच्चा बिल्कुल ठीक लग रहा हो फिर भी वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी हमारे लिए पर्याप्त नहीं होती। नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो एक इम्यूनिटी है जो हमें सभी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि वो हमें हर इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगी। अगर हमारा इम्यून सिस्टम पहले से सचेत हो किसी भी बीमारी के खिलाफ तो वो अच्छे से लड़ सकता है उस बीमारी से। इसीलिए हमें बच्चा बिल्कुल ठीक हो फिर भी वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है।
0: डॉक्टर कॉलिंग।

अरे जस्ट लिसन, पता है आप लोगों को क्या हुआ? प्राइजेस गिर गए, वो भी आईफोन के। और मेरा दोस्त अभी रिसेंटली खरीद के लाया है महंगा वाला फोन। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ कौन? रेडियो का गौरव, आरजे गौरव जी। बिल्कुल, रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है। एंड अभी फ्रीडम सेल के नाम से सेल शुरू होने वाली है, फ्लिपकार्ट पर भी होगी, अमेजोन के ऊपर भी होगी। और अभी कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि जो आईफोन 17 आया था, प्रो मैक्स नहीं, सिर्फ प्रो की बात करेंगे, कह रहे हैं उनके रेट्स बहुत ज़्यादा डाउन कट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं। और उसकी वजह से आईफोन 15 जो अभी आउटडेटेड हो चुका है वैसे तो, बट स्टिल लोगों के पास है, लोग अभी भी खरीदने की होड़ में लगे हुए हैं। ऑल दो बनने बंद हो चुके हैं बट अभी बिकने बंद नहीं हुए हैं, तो उसके प्राइजेस 40,000 रुपये तक आ गए हैं। तो एक्साइटेड मत हो, मत खरीदना आईफोन 15, क्योंकि आउटडेटेड वर्जन है वो। और खरीदना तो 16 खरीद लीजिए, 17 खरीद लीजिए। और मैं तो बोलूँगा, देखो इन सब चीज़ों पे पैसे बर्बाद मत कीजिए। अगर सिर्फ शौक के लिए खरीद रहे हो, तो सिर्फ शो ऑफ के लिए खरीद रहे हो, तो बिल्कुल मत खरीदिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोई अच्छा सा कंपैटिबल फ़ोन लीजिए जिसकी आपको ज़रूरत है। अब देखो, हवाबाजी करने के लिए तो मेरे दोस्त ने भी लिया था, मगर फिर आज भी EMI भर रहा है, और फिर स्क्रीन अलग तोड़ दी उसने, फिर स्क्रीन चेंज कराने के पैसे अलग दे रहा है, और वो भी EMI पर ही दे रहा है। तो ये दूध का जरा शायद भी फूक फूक के पीता है, ऐसा मेरा दोस्त है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हाँ, मैंने चीज़ें देखी है, वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। खैर, फ्रीडम सेल की बात कर रहे हैं, तो फ्रीडम सेल आने वाली है दोनों प्लेटफॉर्म्स पर, अमेज़न पर भी आएगी, और मेन दो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही है हमारे पास, अमेज़न और फ्लिपकार्ट। तो बहुत सारी चीज़ें सस्ती हो जाएगी, अभी से विश लिस्ट करके रख दो, और जैसे ही फ्रीडम सेल शुरू होती है तो फटाफट खरीद लीजिएगा। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजते रहेंगे। आप सुन रहे प्रोग्राम HR 896, मैं हूँ कौन, गौरव आप सभी के साथ।

सुनो सुनो सुनो, सबको तरसाने, मोहल्ले में आग लगाने, अपना मैजिक बरसाने आ गई है कोल्हापुर की बिजली।

0: आप लोगों को कॉर्पोरेट का एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। वो एग्जाम्पल ये है कि आप लोग काम मिनिमम कीजिए, बट दिखाइए ऐसे कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और यही तरीका है, यही वजह है कि आपके कलीग जो कि काम नहीं करते उनको एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मिलती है कि नहीं? आपने भी नोटिस किया होगा ये बात। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम HR 896। क्या हाल है?
1: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ।

0: से स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी। यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वार्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वार्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधरा थेरेपी, वार्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
1: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
2: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।

ऐसा लग रहा है बड़ी मुद्दतों बाद आज बारिश आई, बारिश प्रकट हुई है कहूंगा मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था आज बारिश ही नहीं आने वाली। मौसम विभाग का तो कहना था कि बारिश आएगी आएगी आएगी।

बट कहीं ना कहीं हम भी सब लोग परेशान थे। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। बिल्कुल, रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है। एंड बारिश की बात कर रहे थे हम लोग, तो मौसम विभाग का कहना है कि देखो 7 तारीख तक यानी कि अगले 3 दिन और यानी कि फ्राइडे तक आप लोगों को ठंडक मिल सकती है, ठंडक महसूस होगी। फरीदाबाद में ऐसा ही मौसम रहेगा अब कल परसों और फ्राइडे तक। बट अगर गूगल बाबा की बात करें तो गूगल बाबा दिखा रहा है कि देखो सैटरडे को भी आप लोगों को बारिश देखने को मिल सकती है। बट मैं किसी पर भी विश्वास नहीं करने वाला, क्योंकि ये बारिश वाली सीन ना बहुत दिनों से दिखा रहे थे और बहुत दिनों से बोल रहे थे कि बारिश आएगी आएगी आएगी। जिन लोगों को बारिश नहीं भी पसंद ना, वो लोग तक इस बार बोल रहे हैं कि भाई बारिश हो क्यों नहीं रही है, क्योंकि उमस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इतनी ज़्यादा उमस हम लोगों ने, मेरे ख्याल से, मैंने तो नहीं देखी, आप लोगों ने शायद ही देखी होगी इतने पिछले कुछ सालों में, या फिर जब से होश संभाला तब से। आप बताइए कि इतनी ज़्यादा उमस वाली मानसून कभी देखा है? और ये मानसून तो मानसून लग भी नहीं रहा है, काले बादल आ रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। बस मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग लगान वाले लोग हो गए लगान के लोग जो मिलके एक साथ खड़े रहते थे, फिर उसके बाद जैसे ही बादल देखते थे डांस करना शुरू कर देते थे, खुश हो जाते थे। बट बारिश होती नहीं थी, तो अभी हमारे

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहें। बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
2: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

मुझ में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल में लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

मैं आजकल जिससे भी पूछ रहा हूँ ना कि आप लोग कैसे हो या फिर क्या हाल है, तो सबका रिप्लाई आ रहा है भाई हाल बेकार है, पूछ रहा हूँ क्या हो रखा है, तो कोई कह रहा है जॉन्डिस, तो कोई कह रहा है टाइफॉइड, तो कोई कह रहा है डेंगू, तो कोई कह रहा है मलेरिया। ये बीमारियाँ बढ़ती जा रही है, मौसम बदल रहा है तो मच्छर आ गए हैं तो वो कर रहे हैं डेंगू मलेरिया। पानी खराब अगर आप लोग ले रहे हैं तो फिर उसके बाद आपको टाइफॉइड हो सकता है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं कौन, रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। बिल्कुल, रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है। एंड देखो, तबीयत खराब हो रही है, इस बात से मतलब नकारा नहीं जा सकती ये बात, क्योंकि मेरे नोन में भी बहुत सारे लोग हैं, मेरे ऑफिस में कोई ना कोई आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमारी फैमिली में इसको उसको उसको पता नहीं किसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज अपना ध्यान रखिए। देखिए, मैं भी अपना ध्यान बहुत ज्यादा रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे आप लोगों से आके मिलके बात करनी है, आपसे बात करके मुझे अच्छा लगता है। तो वापस आते हैं इस मुद्दे पे। हल्का सा भी बुखार आपको फील होता है, हल्की सी भी हरारत सी भी फील होती है, तो सबसे पहला कदम आपको क्या करना है, खुद डॉक्टर नहीं बनना है। यह हम सब की आदत है, हम सब खुद से डॉक्टर बन जाते हैं। दवाई जो पहले से रखी होती है हम लोग खा लेते हैं उस चीज़ का, हम बोलते हैं डोलो ले लेते हैं ठीक हो जाएंगे, ये ले लेते हैं ठीक हो जाएंगे, वो ले लेते ठीक हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों को, आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है। और अगर आपको लगता है डॉक्टर की फीस ज़्यादा है तो आप लोग सरकारी हॉस्पिटल जा सकते हैं, आप लोग डिस्पेंसरी जा सकते हैं, वहाँ पर आपको दवाई भी मिल जाएगी और डॉक्टर कंसल्टेशन भी ऑलमोस्ट फ्री में हो जाएगी, मतलब 1-5 रुपये की पर्ची लगती है, तो इतना तो दे ही सकते हो आप लोग। तो चलिए, इसके बारे में सोचिए ज़रा। और मैं फिर से बोलूँगा, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ रहेगी तो पैसा आता रहेगा। बस इसी के साथ साथ एक गाना चला देते हैं आप लोगों के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर। सुनिए इस गाने को, मैं हूँ रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। बिल्कुल, रेडियो का गौरव।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

0: यो गाइस, स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मौसम कितना प्यारा है ना। मौसम तो प्यारा है, मगर उससे भी ज्यादा अच्छी चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि 129 साइबर क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं एंड उनसे करीब करीब 1 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए गए हैं। आई नो दिस अमाउंट इज वेरी लेस, क्योंकि हर साल बहुत ही ज्यादा करोड़ों में फ्रॉड होता है और ये लोग पैसे का हेर फेर तुरंत कर देते हैं। और ये लोग सच में बहुत ज़्यादा दिमाग वाले होते हैं, मगर ये अपना दिमाग डिस्ट्रक्शन मोड में लगाते हैं, कंस्ट्रक्टिव मोड में नहीं। मतलब कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में अगर दिमाग लगाएंगे तो शायद ये हज़ारों करोड़ों की कंपनी खड़ी कर सकते हैं, बट नहीं, इनका दिमाग तो चलता है ऐसी चीज़ों में। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि 129 लोगों को पकड़ा गया है साइबर फ्रॉड के केस में। एक हैट्स ऑफ है फरीदाबाद की साइबर टीम को, हरियाणा की साइबर टीम को। और इसी के साथ साथ मैं बस यही प्रे करूंगा कि जितने भी लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है उन सब के आरोपी पकड़े जाएं और उनके पैसे जितनी जल्दी हो सके उनको मिल जाएं। अच्छा, यहां पर एक और इन्फॉर्मेशन वाली बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो फरीदाबाद की पब्लिक, देखो एक चीज़ है कि अगर भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, बट अगर साइबर फ्रॉड होता है तो जितनी जल्दी आप लोग कंप्लेन करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस है कि आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। तो इसके बारे में ज़रा सोचिए और अभी फिलहाल रेडियो महारानी को एंजॉय करते जाइए, क्योंकि आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजेंगे एंड उनमें से एक गाना अभी मैं चला देता हूँ आप सभी के लिए। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं HR 89.6, मैं हूँ RJ गौरव आप सभी के साथ।
1: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके
3: अरे थारी किस्मत में गुलाम लिखे है। रानी गुलाम ने नहीं, राजा ने मिला करे।

सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ, AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

क्या आप लोगों को कभी सपने में सांप दिखाई दिया है? क्योंकि मुझे तो बहुत दिखाई दिया है। एंड मैंने जैसे ही इसके बारे में सोचा तो मुझे पता लगा कि हाँ, सांप दिखने का भी एक मतलब होता है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं HR 89.6। मैं कौन हूँ बता दीजिए, मोस्ट वांटेड मुंडा, बट नहीं, रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। रेडियो का गौरव स्वागत करता है आप सभी का नाइटमेयर में। नाइटमेयर मींस डरा नहीं रहा हूँ आप लोगों को, सपने डिकोड कर रहे हैं हम लोग। और सपनों की बात जब आई तो सपनों में से एक सपना निकल कर आया, और वो सपना था सांप दिखने का। सांप कैसा दिख सकता है? सफ़ेद सांप दिख सकता है, काला सांप दिख सकता है, या फिर आपने सांप को पकड़ लिया है, या फिर सांप उड़ रहा है, ऐसे भी हो सकता है ना। अगर आपको सफ़ेद सांप दिखाई दिया ना सपने में, तो इसका मतलब है आपके पास पैसा ही पैसा होगा, किस्मत बदलने वाली है, इसका इशारा है। दूसरी चीज़, सांप को पकड़ना। अगर आपने सपने में देखा कि आप सांप को पकड़ रहे हो, तो आपको एक बहुत ही बड़ी सफलता मिलने वाली है, सक्सेस बहुत पास है। और अगर सांप को उड़ते हुए देख रहे हो, तो फिर करियर या फिर बिजनेस में तरक्की होने वाली है। अब नेगेटिव चीज़ें भी तो होती है ना सपने में। मतलब सपने में अगर आपने काला सांप देख लिया तो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है। और अगर आपको सांप ने काट लिया है सपने में, जो कि मुझे कुछ टाइम पहले काटा था, तो इसका मतलब है कि आपको आने वाले टाइम में सावधान रहना है, क्योंकि कोई भी दुश्मन आपका नुकसान कर सकता है। और अगर आपके पीछे सांप पड़ गया है, तो सांप को पीछे भागते हुए देखने का मतलब है कि कोई बड़ा डर या फिर दुश्मन आपके पास आने की कोशिश कर रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में रोज़ हम बात किया करेंगे, इसी टाइम, मतलब ऑलमोस्ट इसी टाइम पे बात किया करेंगे कि कैसे सांप के बारे में बात कर सकते हैं, फिर सपने कैसे डिकोड कर सकते हैं। तो करेंगे हम लोग सपनों को डिकोड। अगर आपने भी कोई सपना देखा है तो शेयर कीजिएगा हमारे साथ। नंबर है जी 9654896896। व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आप लोग, कॉल भी कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ। मैं हूँ कौन, गौरव है आप सभी के साथ, और आप सुन रहे हैं HR 89.6। Right.

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: क्या आप लोग जिम जाते हैं या फिर क्या आप लोग वर्कआउट करते हैं? अगर नहीं करते तो फिर आप लोग सही जगह पर आए हैं, क्योंकि अब से आप करने लग जाएंगे। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं कौन?
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव।
0: बिल्कुल, रेडियो वाला गौरव आप सभी का स्वागत करता है। एंड देखो, एक चीज है कि कभी भी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट के आने का इंतजार मत कीजिए, अभी से वर्कआउट शुरू कीजिए अगर नहीं करते हैं तो। कल भी मैं इस बारे में बात कर रहा था, आज भी इस बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ जिम ब्रो आप सभी के साथ। एंड एक गलती जो हर इंसान करता है वो ये सोचता है कि 70% बॉडी घर में बन जाती, 30% इज योर लाइक जिम, 70% इज योर डाइट। नहीं, इट्स ऑलवेज 50-50%। जितनी मेहनत आप जिम में कर रहे हो उतनी मेहनत और उतना ही डिसिप्लिन आप लोगों को अपनी डाइट के साथ भी करना है। ये नहीं कि बारिश हुई और हमने जलेबी खरीद ली और फिर जलेबी खाने लग गए, नहीं करना है आप लोगों को ऐसा। जलेबी क्या है ज़रा सोचिए उसके बारे में। मैदा, जो कि हमारे पेट के लिए अच्छा नहीं है, हम सबको पता है। फिर उसके बाद उसको फ्राई किया जाता है, जो कि हमें पता है कि अगेन तेल हमारे लिए अच्छा नहीं है। फिर उसके बाद उस सबको शुगर सिरप में डिप कर दिया जाता है, यानी कि चाशनी के अंदर डिप कर दिया जाता है। और हम सबको पता है कि चीनी कितनी ज़्यादा ख़राब है हम सब के लिए। इंडिया में डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो देखो, वंस इन अ वाइल चलता है, बट आप लोगों को हमेशा अपनी डाइट को 50-50% करके चलना पड़ेगा। यानी कि 50% अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो 50% आपको वर्कआउट भी करना पड़ेगा। मतलब डेली हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप लोग विदाउट एनी सिक लीव अपने ऑफिस जा सकते हैं, या फिर सिक लीव लेके आप लोग कहीं घूमने भी जा सकते हैं। ये वैसे करना नहीं है, ठीक है? तो चलिए, इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए। और मेरा एक दोस्त कहता है मुझसे कि भाई तू क्या इतना ज़्यादा ज्ञान देता है फिटनेस को लेकर, तू लंबा जीना चाहता है क्या? मैंने कहा नहीं, मैं लंबा नहीं जीना चाहता, मैं जितना भी जीऊँगा उसको खुल के एंजॉय करके जीना चाहता हूँ। तो इसी बात को आप लोग भी अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। मैं हूँ कौन?
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव।
2: लिखा मेरी।

पूरे 3 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता, और ऐसे ही आप लोगों को भी कुछ पता नहीं चलेगा जब मैं आप सभी के साथ आ जाऊंगा। मतलब आ चुका हूं ऑलमोस्ट, और 3 घंटे खत्म भी हो गए हैं पता भी नहीं चला। एंड आज हमने कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करी जिसमें इंडिया 4th स्थान पर था 39 मेडल्स के साथ, और इसी के साथ साथ हम लोगों ने बहुत सारी और भी बातें करी, जैसे कि फरीदाबाद में जल भरा, वाटर लॉगिंग एक आम प्रॉब्लम है, और इसके अलावा अभी आप लोग अपने आसपास देखिए, आपकी फैमिली में भगवान न करे कभी ऐसा हो, मगर आपके दोस्त में या फिर आपके कोई कलीग्स में, ऑफिस कलीग्स में कोई ना कोई इंसान बीमार ज़रूर पड़ रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ अपना ख्याल ज़रूर रखिए, अपने लिए मत रखो मगर अपने चाहने वालों के लिए तो रखो ना, क्योंकि आपका भी घर में कोई इंतज़ार कर रहा है। और अगर गाड़ी चला रहे हैं इस टाइम तो सीट बेल्ट ज़रूर पहनिएगा, और बारिश अगर हो रही है तो गाड़ी सीधे घर पे जाके लगाइएगा, किसी फास्ट फूड के स्टॉल पर नहीं, और ना ही वो चमचमाती हुई लाइट वाले स्टॉल पर। समझ रहे हो ना किसकी बात कर रहा हूँ। तो चलिए इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूंगा आप सभी से कल शाम फिर से सेम टाइम सेम जगह 5 से 9। तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और मैं स्टार्टिंग में 3 घंटे बोल रहा था, 4 घंटे हो गए हैं पता ही नहीं चला। चलिए मैं निकलता हूँ यहाँ से, वापस आएगी गीत विदेश कुबाजियाँ, प्यार भरी बातें, प्यार भरे गाने, सब कुछ प्यारा प्यारा सा लेकर आएगी, मगर तब तक के लिए आप सभी के लिए ये गाना चला रहा हूँ रेडियो महारानी 89.6 पर। दिस इज आरजे गौरव साइनिंग ऑफ फ्रॉम रेडियो महारानी।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

अभी जो गाना आपने सुना है, गाने का नाम है खत, नवजोत आहूजा की आवाज में है। कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, वो सीधा दिल के उस हिस्से तक पहुंच जाते हैं जहां हम अपने सबसे सच्चे जज्ब छुपा कर रखते हैं। खत आज के दौर में शायद सिर्फ एक शब्द बनकर रह गया है, लेकिन कभी खत लिखना सिर्फ लिखना नहीं होता था, वो किसी को अपना वक्त देना होता था, अपना दिल कागज पर उतार देना होता था। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। रात के 8 बज चुके हैं और इस वक्त जब बाहर की दुनिया थोड़ी सी धीमी हो जाती है, अंदर की दुनिया थोड़ी तेज हो जाती है, यादें, बातें और कुछ अधूरे खत सब वापस आने लगते हैं। तो चलिए इसी एहसास के साथ शुरू करते हैं हमारा पहला सेगमेंट इश्क शायराना, जहां मैं बात करती हूँ उन अल्फाजों की जो कभी किसी ने लिखे थे लेकिन ऐसे लगते हैं जैसे हमारे लिए ही लिखे गए हों। तो आज का ये एहसास भी कुछ ऐसा है। क्या कभी आपने किसी के लिए कुछ लिखना चाहा है? ये सवाल है आपसे। ऐसा कुछ जो आपने कभी कहा नहीं लेकिन दिल में हमेशा रहा, एक खत जो कभी भेजा नहीं गया क्योंकि डर था कि अगर वो पढ़ लिया गया तो शायद सब बदल जाएगा, और अगर नहीं पढ़ा गया तो शायद कुछ नहीं बदलेगा। इश्क में ना सबसे मुश्किल यही होता है कह देना, क्योंकि जो कह दिया जाता है वो कहानी बन जाता है और जो नहीं कहा जाता वो उम्र भर एहसास बनकर रह जाता है। इसीलिए शायद खतों में लिखी हुई मोहब्बत हमेशा थोड़ी ज्यादा सच्ची लगती है, क्योंकि वहां दिखावा नहीं होता, बस दिल में जो होता है वो कह देना होता है। तो आज इश्क शायराना में मैं उन्हीं एहसासों के बारे में बात करूंगी जो कहीं नहीं गए लेकिन महसूस हुए हैं। मैं हूं गीत और ये है इश्क बाजियां। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। अभी मैंने बात की थी उन खतों की जो कभी लिखे तो गए लेकिन भेजे नहीं गए, और कभी कभी खत सिर्फ कागज पर नहीं होते, वो इंसान के लहजे में होते हैं, उसकी बातों में, उसके बदले हुए अंदाज में भी छुपे होते हैं। आज की इस खामोश रात में एक गजल याद आ रही है दाग दहलवी साहब की, तो दाग दहलवी साहब की गजल के ये चार शेर मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। उन्होंने क्या लिखा है, तुम्हारे खत में एक नया सलाम किसका था, ना था रकीब तो वो आखिर नाम किसका था। कितनी अजीब बात है ना, पहले हम किसी के हर लफ्ज में अपना नाम ढूंढते हैं और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब उसी के लफ्जों में किसी और का नाम दिखाई देने लगता है। खत वही होता है, कागज भी वही होता है, लेकिन एहसास बदल जाते हैं। और तब दिल पूछता है कि ये जो बदला हुआ लहजा है, ये जो नया सा अपनापन है, या फिर किसके लिए है। दाग आगे लिखते हैं, वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं, ये काम किसने किया है, ये काम किसका था। इश्क में सबसे खतरनाक चीज पता है क्या होती है, बदल जाना। जब कोई इंसान धीरे धीरे बदलता है और हमें पता भी होता है कि वो हमें चोट दे रहा है, लेकिन फिर भी हम उसी से जवाब चाहते हैं, जैसे दिल को यकीन ही नहीं होता कि जिसने इतना प्यार दिया था वो इतना दर्द भी दे सकता है। और आगे कहते हैं, वफा करेंगे, निभाएंगे, बात मानेंगे, तुम्हें भी याद है ये कलाम किसका था। कभी किसी ने आपसे भी ऐसे वादे किए हैं, वो वादे जो उस वक्त बहुत सच्चे लगते थे लेकिन वक्त के साथ बस लफ्ज बनकर रह गए। इश्क में सबसे ज्यादा तकलीफ धोखा देना नहीं होता है, बल्कि भूल जाना होता है। जब सामने वाला इंसान उन बातों को ही भूल जाए जो कभी उसने बड़ी सच्चाई से कही थी। और आखिर में दाग कहते हैं, गुजर गया वो जमाना, कहूं तो किससे कहूं, ख्याल दिल को मेरे सुबह शाम किसका था। यानी अब वो वक्त चला गया लेकिन दिल अभी भी उसके ख्याल में अटका हुआ है। सुबह भी वही है, शाम भी वही है, बस वो इंसान बदल गया है। और शायद यही इश्क की सबसे खामोश सच्चाई है, इंसान चला जाता है लेकिन उसका ख्याल नहीं जाता। मैं हूं गीत, लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे उन्हीं अनकहे एहसासों के साथ।

आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। और सच कहूँ तो आजकल इश्क ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो हो गया है। मतलब लोग फॉरएवर बोलते हैं लेकिन इंटेंशंस टेम्पररी होते हैं। इसी आज की कंफ्यूजिंग से इश्क को बहुत पहले ही समझ लिया था जॉन एलिया साहब ने। उनकी शायरी सीधा दिल पर नहीं लगती लेकिन सीधे सच बोल देती है। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा है अपनी खूबसूरत सी गजल में। बड़ा एहसान हम फरमा रहे हैं, बड़ा एहसान हम फरमा रहे हैं कि उनके खत उन्हीं को लौटा रहे हैं। मतलब इमेजिन करो, किसी को भूलने के लिए आप उसकी सारी मेमोरीज उसे वापस कर रहे हो। टेक्स्ट डिलीट, फोटोज डिलीट, और जो तोहफे कभी उन्होंने भेजे थे वो भी आपने उनको भेज दिए। और ऊपर से ये भी फील कराना, देखो हम कितना मैच्योर बिहेव कर रहे हैं लेकिन अंदर से आप टूट जाते हैं। और फिर वो आगे कहते हैं, नहीं तरके मोहब्बत पर वो राजी, कयामत है कि हम समझा रहे हैं। आजकल रिलेशनशिप्स में यही तो हो रहा है, एक इंसान ऑलरेडी मूव ऑन करना चाहता है और दूसरा अभी भी लेट्स फिक्स दिस मोड में होता है। एक कन्वेंस कर रहा है और दूसरा कन्वेंस होने को तैयार भी नहीं है। और फिर वो आगे लिखते हैं, ये मत भूलो कि ये लम्हात हमको बिछड़ने के लिए मिलवा रहे हैं। कितनी स्कैरी लाइन है ना ये। कभी कभी कुछ रिश्ते शुरू ही इसीलिए होते हैं ताकि एक दिन वो हमें छोड़कर जाने की आदत से खा सके। मतलब आप किसी से मिलते हो, आप उसे अटैच होते हो लेकिन और फिर आपको रियलाइज होता है कि दिस वॉज नेवर मेंट टू लास्ट, बस एक लेसन था। और जॉन ही आगे कहते हैं, तुम्हें चाहेंगे जब छिन जाओगी तुम, अभी हम तुमको अर्जा पा रहे हैं। दिस इज सो रियल। जब कोई हमारे पास होता है हम उसे बहुत लाइटली लेते हैं, सीन करके लेट रिप्लाई, बहुत हाफ एफर्ट्स होते हैं, अटेंशन डिवाइडेड होती हैं। और जैसे वो हमसे दूर जाता है सडनली आई मिस यू, आई डिडंट रियलाइज योर वैल्यू। इश्क की टाइमिंग बहुत ही गड़बड़ सी है यार। और सबसे डेंजरस लाइन शायद यही है, अजब कुछ रब्त है तुमसे कि तुमको हम अपना जान के ठुकरा रहे हैं। मतलब हम जानते हैं कि वो हमारे अपने हैं फिर भी हम उन्हें ही हर्ट कर रहे होते हैं। क्यों? ईगो, इमैच्योरिटी, अनहील्ड इमोशंस। आजकल का इश्क ना सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता, उनमें पास्ट ट्रॉमा, ओवरथिंकिंग और व्हाट इफ भी शामिल होता है। और शायद इसीलिए रिलेशनशिप आजकल बहुत कम चल रहे हैं और ओवरथिंकिंग ज्यादा। तो थोड़ा सा म्यूजिक सुनते हैं, इसके बाद लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं आपके साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

0: इसी खूबसूरत से गाने के साथ फिर से स्वागत है शो है इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। खतों के बारे में बात चल रही है। कभी कभी ना जिंदगी में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो ज्यादा वक्त हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन उनका एहसास, उनकी याद, उनकी मौजूदगी हमारे अंदर बहुत लंबे वक्त तक रह जाती है। और शायद इसी एहसास को बहुत ही नर्म और गहराई से लिखा है गुलजार साहब ने। वो कहते हैं, खुशबू जैसे लोग मिले अफसानों में, एक पुराना खत खोला अनजाने में। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? आप बिल्कुल ठीक होते हैं, अपनी लाइफ में बहुत बिजी, थोड़ा आगे बढ़ चुके होते हैं और फिर अचानक कोई पुरानी चैट, कोई पुराना फोटो या बस किसी का नाम और वापस आप उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से आपने बहुत मुश्किल से खुद को निकाला था। हम कहते हैं वी आर हील्ड बट ऑल इट टेक्स इज वन मेमोरी एंड एवरीथिंग्स कम बैक। और फिर शायद शाम के साए बालिश्तों से नापे हैं चांद ने कितनी देर लगा दी आने में। यहाँ एक शब्द यूज किया गया है बालिश्त। बालिश्त का मतलब होता है हाथ की फैलाव, जैसे हम अपने हाथ की उंगलियों को फैलाकर किसी दूरी को नापते हैं। लेकिन यहाँ इसका मतलब सिर्फ माप नहीं है, यहाँ शायर कहना चाहता है कि उसने इंतजार को इतना महसूस किया है कि हर पल हर साया वो अपने हाथ से नाप रहा हो। इमेजिन करो, आप किसी का इंतजार कर रहे हो और हर मिनट इतना भारी लग रहा है कि आप उसे लिटरली महसूस कर सकते हैं। आजकल हम कहते हैं यार रिप्लाई क्यों नहीं आया, लास्ट सीन कब का है। लेकिन पहले इंतजार ऐसा होता था जहां वक्त को महसूस किया जाता था, गिना नहीं जाता था। और फिर आगे गुलजार साहब ने लिखा है, जाने किसका जिक्र है इस अफसाने में, दर्द मजे लेता है जो दोहराने में। बहुत गहरी बात है। कभी कभी हम खुद को अपने दर्द को बार बार जीते हैं, सेम मेमोरीज, सेम कन्वर्सेशन, सेम एंडिंग, और हमें पता भी होता है कि इससे हर्ट होगा, फिर भी हम वापस वहीं जाते हैं। क्योंकि सच ये है, कभी कभी हम इंसान को नहीं उसके साथ जुड़े एहसासों को मिस करते हैं। और आखिर में गुलजार साहब कहते हैं, हम इस मोड़ से उठकर अगले मोड़ चले, उनको शायद उम्र लगेगी आने में। कितनी सच्ची बात है। हर कोई एक ही स्पीड से मूव ऑन नहीं करता, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देर से समझता है और कोई शायद कभी समझ नहीं पाता। और शायद यही प्यार की सबसे खामोश सच्चाई है, टाइमिंग कभी परफेक्ट नहीं होती। कोई जल्दी आगे बढ़ जाता है, कोई पीछे रह जाता है और कोई बहुत पीछे रह जाता है। और बीच में रह जाती हैं कुछ यादें, कुछ अधूरी बातें और कुछ अनकहे खत। मैं हूं गीता, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे।
1: देखो देखो

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

गाना है फिल्म चलती का नाम गाड़ी से और गाना है किशोर दा की बहुत ही खूबसूरत आवाज में। और इसी गाने के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ शो इश्क बाजिया में हूँ इश्क वाली गीत। और अब समय है रेट्रो इश्क का, जहां मैं लेकर आई हूँ आज एक और ही बहुत ही खूबसूरत सी प्रेम कहानी, उस जमाने की प्रेम कहानी। बॉलीवुड में तमाम प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनको उनके रिश्ते की मुकम्मल मंजिल मिल गई, वहीं कुछ प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनकी दास्तान अधूरी रह गई, जिनका अंत बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वो जो मेमोरीज क्रिएट हुई ना वो बहुत अच्छी थी। तो इन्हीं यादों को आप तक पहुंचाती हूँ रेट्रो इश्क के जरिए। और आज एक ऐसी ही लव स्टोरी लेकर आई हूँ कि जिन्हें प्यार हुआ, इकरार हुआ और मंजिल भी नहीं मिली। ये बहुत ही खास सी लव स्टोरी है जिससे आज आपको रूबरू कराऊंगी, लेकिन अभी वक्त गाने का है। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यह होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

आर डी बर्मन साहब का म्यूजिक, लता जी और किशोर दा की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम। देखिए, जब किसी की याद आती है और ये पुराने गाने जब हम सुन लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो इतनी सारी यादें इकट्ठी हो जाती हैं, इतने सारे थॉट्स दिमाग में चल रहे होते हैं। और ये क्या जमाना था ना, जहां प्यार इशारों में हुआ करता, अगर किसी से इश्क हो तो वो आंखों से ही पता चल जाता, अगर किसी से कोई बात कहनी हो तो वो इशारों में ही हो जाती। और हाँ, जहां किसी को दिल की बात कहने में, इजहार इश्क करने में बहुत वक्त लगता, पहले उसे समझा जाता, फिर खतों के जरिए उस तक अपनी बात पहुंचाई जाती, और फिर ये भी देखा जाता कि हाँ, क्या उसे भी उतना ही इश्क है। क्या खूबसूरत सा जमाना था ना ये, जहाँ किशोरदा के, रफी साहब के, लता जी की आवाज में बहुत खूबसूरत से गाने होते और किसी को ये गाने डेडिकेट भी किए जाते। उसी रेट्रो वाले जमाने की, उसी रेट्रो इश्क की बातें होंगी यहाँ पर। अभी वक्त है गाने का, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

कुछ अनसुनी कहानियाँ मिलती हैं गलियों से, कुछ जज्बात भरी अनोखी निकलती हैं दिल से। फरीदाबाद की गलियों में सिर्फ रास्ते नहीं, कहानियाँ भी बसी हैं। कहीं एक पुरानी हवेली अपनी कहानी सुनाने को बेकरार है। तो कहीं एक नया स्टार्टअप का सपना पंख फैला रहा है। हर मोड़ पर एक नई कहानी लिखी जा रही है और हम लेकर आए हैं वही कहानियाँ जो इन गलियों से निकलती हैं और सीधा आपके दिल तक पहुँचती हैं। तो सुनिए फरीदाबाद की गलियों से, सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: शुरू हो जाओ।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: कर रहा हूँ।
0: तो करना।
1: इरशाद तो बोलो।
0: इरशाद।
1: हाँ, पानी से नहाकर निकलते हैं, पसीना भिगा देता है।
0: अरे रे।
1: अरे पानी से नहाकर निकलते हैं तो पसीना भिगा देता है, एसी कूलर वाला हमें देखकर शटर गिरा देता है।
0: मारी हरकतें जानता होगा।
1: अबे पूरा सुनो पहले। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। अंदर सोया हुआ गार्ड हमें थप्पड़ मार के भगा देता है।
0: आप डिजर्व भी यही करते हैं।
1: अरे
0: अब तू बोलता रहे भाई, हम चल।

कुछ वादे सच्चे होते हैं, लेकिन ये वादे ताउम्र निभाए जाएं ऐसा हो नहीं पाता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उसे मंजूर नहीं होती हैं, और ये रिश्ते, ये जो मोहब्बत होती है, ये अक्सर अधूरी रह जाती है। गाना है फिल्म हम किसी से कम नहीं, और गाना है पूर्णिमा और रफी साहब की आवाज में। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत, और रेट्रो इश्क में आज बातें होने वाली है एक उस जमाने की अधूरी लव स्टोरी के बारे में। और जैसे कहते भी हैं कि जो सच्ची मोहब्बत होती है वो अक्सर अधूरी रह जाती है, और ये अधूरी मोहब्बत थी राज कपूर साहब और नरगिस की। वैसे दोनों की रियल लाइफ में तो बहुत ही अच्छी जोड़ी थी, बहुत ही सुपर हिट जोड़ी थी। इवन लोगों को ये जोड़ी इतनी ज्यादा पसंद आई कि लोगों ने बैक टू बैक फरमाइशें की इस जोड़ी को ऑन स्क्रीन देखने की। असल जिंदगी में भी उतनी ही जोड़ी ये एक दूसरे के लिए परफेक्ट थी। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों कभी साथ नहीं रह पाए। इनकी स्टोरी भी ना बिल्कुल फिल्मी स्टोरी जैसी है, इस स्टोरी के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: ब्रेकिंग न्यूज, मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी अपने चरम सीमा पर है। धूप इतनी तेज कि आम का अचार बिना धूप में रखे ही बन रहा है और सड़क इतनी गर्म कि चप्पल भी इमरजेंसी मैसेज भेज रही है। पर सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन है? वो जो बोल नहीं सकते, सिर्फ उम्मीद से देख सकते हैं।
2: लेकिन टेंशन लेने का नहीं, सॉल्यूशन देने का टाइम है। एक बोल पानी रखो और किसी की प्यास का कूलिंग सिस्टम बन जाओ, क्योंकि एसी तो घर के अंदर है पर इंसानियत हर जगह होनी चाहिए।
1: रेडियो महारानी 89.6 एफएम कहता है, गर्मी से लड़े या ना लड़े, लेकिन प्यास से लड़ने के लिए एक कदम जरूर बढ़ाएं और इंसानियत का फर्ज निभाएं।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजियां। मैं हूं इश्क वाली गीत और सेगमेंट है रेट्रो इश्क। बातें चल रही हैं राज कपूर साहब और नरगिस की अधूरी लव स्टोरी के बारे में। एक ऐसा इश्क जो मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन उस इश्क में एक अलग सी बात थी। ये इश्क बेपनाह था। वैसे हिंदी सिनेमा में कई प्रेम कहानियां बहुत फेमस हुई जिनके आज भी चर्चे होते हैं। उन्हीं में से ये जोड़ी थी राज कपूर साहब और नरगिस दत्त की। इनकी दास्तान बहुत ही खूबसूरत है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर भी प्यार से ये दिल भला क्यों डरा। ये गाना दोनों पर एकदम फिट बैठता है। दोनों के बीच बेपनाह प्यार था, फिर भी ये दास्तान कभी पूरी नहीं हो पाई। राज कपूर और नरगिस की सुपरहिट जोड़ी ने कई हिट फिल्में दी। रियल लाइफ में भी दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते, पर किस्मत को दोनों का साथ मंजूर नहीं था। और इन दोनों की केमिस्ट्री तो वैसे फिल्मों में गानों में भी दिखाई देती थी। और जब इनकी पहली मुलाकात हुई, उस वक्त नरगिस हिंदी सिनेमा में काफी अच्छी एक्ट्रेस बन चुकी थी। इन दोनों की पहली मुलाकात का किस्सा भी बहुत अलग है और बहुत ही खास है। दरअसल राज कपूर मिलने गए थे नरगिस की माँ से, लेकिन दरवाजे पर सबसे पहले इनकी नजर जब पड़ती है नरगिस पर, तो ये उन्हें देखते रह जाते हैं और अपना दिल हार जाते हैं। और इसे कहते हैं पहली नजर की मोहब्बत, जहाँ ये इस कदर अपना चैन खो देते हैं कि ये दोस्ती कर लेते हैं नरगिस के साथ, और ये दोस्ती जो है धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। तो इस तरह से इनकी पहली मुलाकात होती है। और इसके बाद दोनों ने काफी सारी फिल्में एक साथ की। बरसात के बारे में अगर बात करूं, 1949 में जो आई थी, उसके बाद प्यार, आवारा, आशियाना, पापी, श्री 420, चोरी चोरी, बहुत सारी फिल्मों में एक साथ नजर आए। और मैंने कहा ना, उस टाइम की बहुत डिमांडिंग जोड़ी थी ये। और आज इसी जोड़ी के बारे में बातें चल रही हैं। फिलहाल वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां। मैं हूँ इश्क वाली।

0: इंतजार ही ना रह जाए।
1: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

गाना है फिल्म चुपके चुपके से और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और सेगमेंट है रेट्रो इश्क, जहां बातें चल रही हैं रेट्रो की बहुत ही फेमस जोड़ी राज कपूर साहब और नरगिस दत्त के बारे में। जहां नरगिस से पहली नजर का प्यार हो जाता है राज कपूर साहब को और वो उनके प्यार में पूरी तरह से गिरफ्तार हो जाते हैं। राज कपूर साहब उस वक्त शादीशुदा थे, इतना ही नहीं उनके बच्चे भी थे और ये बात नरगिस को भी पता होती है, लेकिन इसके बावजूद वो भी प्यार कर बैठती हैं राज कपूर से। और इसके बाद हर बार वो राज कपूर के साथ फिल्मों में आने लगती हैं और हर फिल्म उनकी हिट हो जाती है और दोनों ऐसे ही बैक टू बैक बॉलीवुड को बहुत हिट फिल्में दे रहे थे। उस दौरान इन दोनों को बॉलीवुड के क्लासिक कपल भी कहा जाता। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को जो मंजूर होता है वही होता है, और 9 साल के एक रिश्ते में रहे जहां नरगिस ने राज कपूर का इंतजार किया 9 साल। शादी भी करना चाहती थी लेकिन राज कपूर चाह कर भी उनके पास लौट कर ना आए, और इस तरह से ये जो मोहब्बत थी ये इश्क की कहानी अधूरी रह गई। यहाँ बातें हुई राज कपूर साहब और नरगिस दत्त के बारे में और फिलहाल वक्त है गाने का। शो इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली।

0: सफर को खूबसूरत है बनाना तो गाड़ी नियंत्रित स्पीड पर ही चलाना।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं इश्क बाजों की दिल दिया गल्ला।

गाना बहुत खूबसूरत है और गाना है फिल्म ए दिल है मुश्किल से। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्कबाजियां और सेगमेंट है दिल दिया गल्ला। आपके दिलों की बातें जो हैं वो आप तक पहुंचानी है और आज एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक लेकर आई हूँ दिल दिया गल्ला में। कहते हैं ना कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, और दोस्ती होती भी है तो धीरे धीरे वो दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। और बहुत सारे लोग ना इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यार क्या होता है ऐसा कि एक बहुत ही खूबसूरत सी दोस्ती प्यार में बदल जाती है जबकि दोनों के बीच एक बहुत ही थिन लाइन होती है। लेकिन कहते हैं कि जब आप किसी के साथ थोड़ा ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, जब आपको उसकी हर बात से फर्क पड़ता है, चाहे दोस्ती क्यों ना हो, जब आप उससे अपने दिल की हर बात शेयर करते हैं और सेम सामने से भी वही फीलिंग है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अटैचमेंट्स के जरिए ये दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। इसी के बारे में बातें होंगी, शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, अगला गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से हमनवा।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
4: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
5: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
6: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
1: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शान की आवाज में है बहुत ही खूबसूरत सा गाना। रेडियो महारानी 89.6 एफएम सुन रहे हैं आप। शो है इश्क बाजियां और सेगमेंट है दिल दिया कल्ला। अभी मेरे पास एक मैसेज आया है, मैसेज है मेघा का, और ये लिख रही है कि दोस्ती को प्यार में बदलने से कैसे रोका जा सकता है। हाँ बिल्कुल, कहते हैं ना कि कुछ फीलिंग्स पर तो आपका कंट्रोल नहीं होता, वो हो जाती हैं और कई बार गो विद द फ्लो आपको भी हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं जरूर आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जनाब वो दोस्ती ही क्या जिसमें प्यार ना हो, ऐसा तो लोग कहते हैं, पर प्यार तो वो हसीन एहसास है ना जो हर रिश्ते में एक अलग सी बात ला देता है। और ऐसा भी लोग कहते हैं कि प्यार मर्जी से नहीं होता, ये हो जाता है। आप मानेंगे नहीं, कई बार अगर आप दिल से एक्सेप्ट कर लेना कि सामने वाले से आपको प्यार नहीं होगा, तो यकीनन प्यार नहीं होगा। अगर आपने दिल से ही सोच लिया है कि आपके दिल में है कुछ उसके लिए, तो आप खुद को कैसे रोक पाएंगे। इसीलिए अगर आप पहचानना चाहते हैं कि आपको किसी से प्यार है या नहीं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, आप ये देख सकते हैं कि आपको उसकी चिंता तो नहीं रहती। जैसे आप जब भी सोचते हैं किसी बात को लेकर, तो आप परेशान हो जाते हैं उसकी लाइफ की प्रॉब्लम से, आप परेशान होते हैं और आप हर बार कोशिश करते हैं कि वो इंसान अच्छा फील करे, आप उसे सही रास्ते पर ले जा पाए, या आपको किसी की याद आती रहती है। तो अगर ये आपके साथ हो रहा है तो मुबारक हो मेरे दोस्त, आप प्यार में हैं। और अब अगर आप प्यार में हैं तो ये पक्का है, पर प्यार जो है वो बहुत से रिश्तों में हो सकता है, जैसे कि दोस्ती का रिश्ता। जैसे कि मेघा का सवाल आया है कि कैसे बचा जाए, तो दिक्कत प्यार में नहीं है, प्यार को समझने में है। अगर कोई आपसे कहता है कि मेरे सिवा तुम्हें और कोई प्यार नहीं करता, तो सामने से ये रिप्लाई आता है कि आपको भी इसी तरह की सेम फीलिंग्स हैं। तो मेघा मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि दोस्ती में प्यार होता है, लेकिन दोस्ती में और प्यार में एक थिन लाइन होती है। दोस्ती में किसी की केयर होती है, किसी को आप समझते हैं, लेकिन हाँ जब इमोशंस का बहुत जुड़ाव हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप प्यार की तरफ खिंच जाते हैं। तो आप अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं वाकई में इस प्यार से बचना, और अगर बचना नहीं चाहते तो गो विद द फ्लो। फिलहाल वक्त है गाने का, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ऐसा आपने सोच लिया? और आप फिर ये भी सोचते हैं कि सामने वाले के मन में अगर ऐसी कोई चीज ना हो, ऐसी कोई फीलिंग ना हो, तो खामखा ही गलत फहमियां बढ़ेंगी और गलत कदम उठाकर आप उसकी दोस्ती को भी खो दोगे। इसीलिए आप शायद सोचते हैं कि आपको उसकी जिंदगी से अब दूर रहना है या उस इंसान से दूर चले जाना है। और इसमें होता ही है कि एक बहुत ही खूबसूरत सी दोस्ती कहीं खो जाती है, कहीं गायब हो जाती है। तो आपको खोना नहीं है, और आपको ये भी जानना है कि सामने वाले को भी उतना ही इश्क है या नहीं है, या क्या फीलिंग है। तो इसके बारे में बात करने वाली हूँ शो इश्कबाज़ियाँ। मैं हूँ इश्क वाली गीत, और गाना है अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

0: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
1: आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
0: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
1: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाए कुछ सरल उपाय।
3: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहे, बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचे।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
4: डियरा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो। क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
1: यह होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ऑनलाइन दुनिया एक डिजिटल मेला है जहां हर चमक सोना नहीं होती, और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं खुद। एक दिन मुझे ऑनलाइन दिख गए कोरियन बूट्स सिर्फ 500 रुपए में, वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। मैंने सोचा क्या कमाल की डील है, तभी तुरंत ही ऑर्डर कर दिया। और फिर जो हुआ, मेरे घर आए सिर्फ 500 रुपए का चूना। बूट्स तो कभी आए नहीं, बस मेरा दिल बोला अलेक्सा प्ले हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स। इसलिए ओटीपी पासवर्ड बैंक डिटेल्स किसी को मत दीजिएगा, और कोई डील ज्यादा ही परफेक्ट लगे तो समझ जाओ स्कैम का जादू चल रहा है। रमेश बाबू अलर्ट रहिए, सेफ रहिए, वरना ऑनलाइन बाजार आपको भी कोरियन बूट्स का चूना लगा देगा।

सी दोस्ती है वो भी कहीं ना कहीं खो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको टाइम बहुत कम स्पेंड करना है। अब आप ये सोचेंगे कि गीत ऐसी बात क्यों कह रही है, बल्कि टाइम तो ज्यादा गुजारना चाहिए तभी तो आप समझ पाएंगे। लेकिन नहीं, आपको उनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, बल्कि आपको थोड़ा सा समय अपने लिए बिताना है। ध्यान भटकाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। उनके लिए बहुत इजीली अवेलेबल ना रहे, उनके मैसेजेस का और कॉल्स का जवाब देने में थोड़ा सा टाइम लगाए यार, ताकि आपको भी तो पता चले कि उनको इंटरेस्ट है आप में या नहीं। तो आपकी जो गैर मौजूदगी है वो उन्हें आपकी याद दिलाने वाली है, और उन्हें लगेगा कि आपको ऐसा क्या हो गया कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो इस बारे में सोचेंगे। और कहते हैं ना, जो चीज़ हमसे दूर जाने लगती है हमें तभी उसका ख्याल आता है, और हो सकता है कि आपकी गैर मौजूदगी उन्हें आपके ना होने का एहसास दिला दे, और उन्हें एहसास दिला दे कि शायद आपने उनमें इंटरेस्ट नहीं लिया था, इसीलिए वो कहीं चले गए हैं, कहीं खो गए हैं। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि उनको भी मोहब्बत है या नहीं, और यहाँ दोस्ती भी नहीं टूटेगी और आपको भी पता चल जाएगा। और देखिए, इतनी सारी बातें हो गई हैं सेगमेंट दिल दिया गल्ला में, अभी मेरे जाने का है समय। मैं मिलूंगी आपसे कल जहां ढेर सारी बातें होंगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक में क्लिक ना करें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित

0: सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
1: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से, हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो, रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
2: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा, सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक, हंस टी स्टॉल, गोपी कॉलोनी चौक, ऋषि मार्केट, नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियां लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज के कार्यक्रम में हम एक ऐसी महिला से बात करेंगे जिनका वर्ष 2017 में अंग प्रत्यारोपण हुआ और जिन्हें एक अनजान व्यक्ति और परिवार द्वारा बिना किसी संकोच के किए गए अंगदान ने एक नई खुशहाल जिंदगी दी। सुनते रहिए, हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: इस इलाके में नए आए हो साहब, क्योंकि हेलमेट पहन के राइड करने का रूल बच्चा बच्चा जानता है।
1: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
2: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
3: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
4: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: नमस्कार दोस्तों, ऑर्गन इंडिया के खास कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में आपका फिर से स्वागत है। आज ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर गीतिका वशिष्ठ स्टूडियो में है और वे श्रीमती जया जी से बात कर रही हैं, जिनका वर्ष 2017 में किडनी ट्रांसप्लांट या गुर्दे का प्रत्यारोपण हुआ है। एक अंगदाता ने जया जी के जीवन को एक नई रोशनी दी, तो चलिए अंगदान से जुड़ी उनकी कहानी जानते हैं।
1: शुक्रिया पायल। नमस्कार दोस्तों, मैं ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर गीतिका वशिष्ठ आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जया जी, जो हमें अंगदान से जुड़े अपने जीवन के एक पड़ाव से रूबरू करवाएंगी। जया जी, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे श्रोताओं के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद।
2: मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद गीतिका जी।
1: जया जी, हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दें।
2: मेरा नाम जया है, मेरी उम्र 32 वर्ष है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरा एक छोटा सा परिवार है जिसमें मेरे हस्बैंड हैं जो आर्मी में हैं और एक 6 साल का बेटा है।
1: जया, तो आपको क्या बीमारी हुई थी और आपने सबसे पहले ऐसे कौन से लक्षण देखे थे जिससे आपको किसी बीमारी के होने का शक हुआ?
2: मुझे बताया गया था कि मुझे CKD हुआ है, यानी क्रोनिक किडनी डिजीज, मतलब मेरी दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसका कारण मुझे एक दूसरी बीमारी बताई गई थी ल्यूपस नेफ्राइटिस करके। शुरुआती लक्षणों में मुझे ये दिखाई दिया कि मुझे लगातार बुखार आ रहे थे, चक्कर आ रहे थे, मैं बहुत ही ज्यादा वीक फील करती थी, बहुत जल्दी मुझे थकान लग जाती थी, भूख लगना मुझे बंद हो गई थी और मेरा धीरे धीरे वजन भी कम होने लगा था।
1: तो ये जो बीमारी है, ये कौन से वर्ष में हुई थी जया?
2: ये बीमारी मुझे 2015 में हुई थी। जैसे मैंने बताया कि जनवरी 2015 से मुझे लक्षण जो है वो आने लग गए थे, पर धीरे धीरे मैंने जब ये देखना शुरू किया कि मेरी हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आ रहा है, तो फिर मैं डॉक्टर से मिली। वहाँ डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको किडनी की बीमारी हो चुकी है।
1: तो क्या ये आप पहली बार जब आप डॉक्टर से मिली तभी आपको पता चल गया था, या क्योंकि अमूमन देखा गया है कि किसी भी बीमारी को डायग्नोज करने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए भी एक लंबा समय लग जाता है कहीं वहीं पर, तो आपके साथ क्या अनुभव रहा?
2: जी नहीं, मेरा एकदम से तो नहीं पता चला, क्योंकि ये काफी लंबा प्रोसेस होता है। अगर आपको पता करना है कि आपकी किडनी का सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो ये कह सकते हैं कि बहुत लंबा प्रोसेस चलता है। जब मैं अपना शुरुआत में अपना टेस्ट करवाने गई थी तो मुझे मलेरिया की दवाई दे दी गई थी कि आपको मलेरिया के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप ये दवाई ले लीजिए, बट जब दवाई लगातार लेते हुए भी मुझे अपने अंदर कोई सुधार महसूस नहीं हुआ तो मैं दोबारा डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप दूसरे बड़े हॉस्पिटल में जाइए, यहाँ हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है। फिर मैं देहरादून गई, अपने मम्मी पापा के पास देहरादून गई, वहाँ के एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चेकअप करवाया। वहाँ कई टेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि हाँ, मेरी जो किडनी है वो खराब हो चुकी है, ऑलमोस्ट मतलब 70% मेरी किडनी खराब हो चुकी थी उस टाइम पर।
1: और इस सब प्रक्रिया में कितना समय लगा होगा आपको?
2: करीबन मुझे 1 महीना लग गया था पता करने में
1: कि आखिरकार बीमारी क्या है।
2: हाँ जी, आखिर बीमारी क्या है, 1 महीना मुझे लग गया था।
1: और ऐसे में आपके लक्षण जो है वो बिगड़ते जा रहे थे कि कैसे आप अपने परिवार के साथ कोप अप कर रही?
2: देखिए, ऐसे में मेरे जो लक्षण थे वो बराबर जारी थे। मुझे वॉमिटिंग की जो फीलिंग थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, मेरा जो हीमोग्लोबिन था वो बहुत ज्यादा मतलब हद तक कम हो गया था, मैं जो भी खाती थी वो मुझे पचता नहीं था, मैं किचन में जाना पसंद नहीं करती थी क्योंकि खाना बनाते हुए जो तड़के की जो स्मेल होती है इतनी स्ट्रॉन्ग लगती थी कि मैं खाना भी नहीं बना पाती थी, बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी। तो इस दौरान बहुत ही मुश्किल से मैंने अपना ये फेज निकाला है।
1: यहाँ पर जया, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस आकर आपकी आगे की कहानी सुनेंगे। दोस्तों, हम थोड़ी ही देर में फिर लौटते हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में। मैं डॉक्टर दीपिका वशिष्ठ हूँ और मेरे साथ है एक खास मेहमान जया। तो जया जी, हमने जाना कि कैसे सही बीमारी का पता लगाने में आपको एक लंबा समय लगा, जिस कारण इलाज भी सही नहीं हुआ। आपको पहले मलेरिया की दवाई दे दी गई, सही डायग्नोसिस न होने के कारण आप विभिन्न लक्षणों से जूझती रही। तो जब आपको डॉक्टर्स ने बताया कि आपकी किडनीज ने काम करना बंद कर दिया है, जिसके कारण आपको इतनी तकलीफ हो रही है, अचानक आपके मन में क्या आया और उसके बाद आपने क्या किया?
2: जब मुझे पहली बार पता चला कि किडनी खराब हो चुकी है, डॉक्टर्स ने बताया कि अब 70% हमारी मेरी किडनी जो थी वो खराब हो चुकी थी। तो पहले तो समझ ही नहीं आया कि क्या करना है, कहाँ जाएं, क्योंकि इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं था हमारे पास, कुछ पता ही नहीं था। एक छोटे शहर से हम आते हैं तो इन सब चीजों, छोटे शहरों में जो है इन बीमारियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो जब हमें पता चला कि जो मेरी किडनी है वो खराब हो चुकी है, तब जिस डॉक्टर ने मुझे कंफर्म किया था कि हाँ आपकी किडनी खराब हो चुकी है, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप जो है अपना इलाज, जो अपना ट्रीटमेंट जो है वो मिलिट्री हॉस्पिटल से करवाएं, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड थे वो आर्मी में थे। हम अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, आरआर में या बेस हॉस्पिटल में हमें अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट मिल सकते हैं। उनके सजेशन से जब उन्होंने सजेस्ट किया तो हमें लगा कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए। तो हम देहरादून के मिलिट्री हॉस्पिटल में गए, फिर वहां से हमने मुझे दिल्ली बेस हॉस्पिटल के लिए रेफर करवाया गया। तो 15 मई 2015 को मैं दिल्ली पहुंची थी। वहाँ मेरा जो रिपोर्ट थी वो डॉक्टर कर्नल श्रीनिवासन सर ने देखी थी, तो मेरी रिपोर्ट देखते ही उन्होंने मुझे डायलिसिस पे डाल दिया था, क्योंकि मेरा जो क्रिएटिनिन था उस समय 10 पे पहुंच चुका था, और बोला कि 2 यूनिट ब्लड भी चढ़ाने को कहा गया, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन था मेरा उस समय 4 पे आ गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस माना जाता है किसी के लिए भी। फिर बाद में कर्नल श्रीनिवासन सर ने मुझे वहीं बेस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, ताकि मेरी किडनी किस वजह से फेल हुई है इसका कारण का पता चल सके, क्योंकि 3 मेन कारण माने जाते हैं किडनी फेल होने के। एक तो हो गया आपका हाई बीपी, दूसरा डायबिटीज, और तीसरा कोई फैमिली हिस्ट्री अगर आपकी रही हो तो आपका हो सकता है कि किडनी खराब हो जाए। बट मेरे केस में ये तीनों ही जो कारण थे वो मिसिंग थे। तो जब ये तीनों कारण मेरे उसमें नहीं, मैं किसी भी कैटेगरी में नहीं पड़ रही थी, तो मेरे काफी टेस्ट करवाए गए। मुझे बीच में आरआर भी रेफर किया गया कि आरआर में जाके आप कुछ टेस्ट करवाइए, ताकि हमें पता चले कि किडनी जो है वो आपकी किस वजह से खराब हुई है। और ये प्रोसेस करने में कम से कम 2-3 महीने लग गए कारण का पता करते करते कि मेरी किडनी क्यों खराब हुई। इस बीच मुझे सीवियर एनीमिया भी हो गया, जिसमें मेरी जो खून की कमी थी वो लगातार, मेरा जो खून हीमोग्लोबिन था वो लगातार मेरा गिरता जा रहा था। ये भी पता नहीं चल पा रहा था कि क्यों गिर रहा है, किस क्या कारण है। तो इस बीमारी का पता लगाने के लिए भी मुझे आरआर में रेफर कर दिया गया, जिसमें मुझे हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट में रेफर किया गया, और रिमाटोलॉजी डिपार्टमेंट में मुझे ल्यूपस के लिए रेफर किया गया। तो तीनों डिपार्टमेंट में मुझे दिखाना पड़ा, डॉक्टर्स को बार बार अपनी रिपोर्ट्स को दिखाती थी मैं। डॉक्टर्स ने मैं समझाया, बीमारी के बारे में जानकारी दी और बताया कि हाँ इन बीमारियों को क्योर किया जा सकता है, बस थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है।
1: तो ऐसे में आपके परिवार को जब आपकी बीमारी का पता चला, और उनका क्या एकदम से रिएक्शन आया जब उनको पता चला कि आपको ऐसी बीमारी है और किडनी जो है वो खराब हो गई है?
2: पहले तो जब पता चला तो सब शॉक में आ गए कि ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। पहला क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है ना, कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, कैसे बीमार पड़ गई। तो पहला रिएक्शन तो यही था। फिर जब धीरे धीरे जब हमने एक्सेप्ट करना शुरू किया कि हाँ खराब हो चुकी है, अब हमें इलाज की तरफ ध्यान देना है, ट्रीटमेंट की तरफ ध्यान देना है, तब मेरे परिवार मेरा साथ खड़ा था, हर मुश्किल में मेरे साथ था। ये सबसे बड़ी बात थी कि हाँ मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे, जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे मॉरली भी सपोर्ट किया कि हाँ तुम सिर्फ अपने अपने ऊपर ध्यान दो, बाकी का हम देख लेंगे।
1: जैसे कि आपने बताया कि आपकी बीमारी समय आपके परिवार ने और आपके हस्बैंड ने आपका बहुत साथ दिया, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा इस पूरी जर्नी में। तो आमतौर पर किडनी डोनेशन की जब बात आती है, हमारे देश में अधिकतर केसेस में परिवार का ही कोई सदस्य किडनी डोनेट करता है। तो आपके केस में क्या ऐसा कुछ हुआ कि कोशिश की गई हो लिविंग डोनेशन के लिए?
2: जी, जब पता चला कि मेरी किडनी खराब हो चुकी है, तो डॉक्टर्स ने हमें बताया कि लास्ट जो ऑप्शन है आपके पास वो ट्रांसप्लांट का है, आप ट्रांसप्लांट करवा दीजिए तो आपकी लाइफ जो है वो ज्यादा बेटर रहेगी। बट इस केस में भी हमें दो ऑप्शन दिए गए कि आप अगर आपकी फैमिली से अगर कोई डोनर आता है, यानी लिविंग डोनर आता है जो सामने से अपना ऑर्गन डोनेट करने के लिए रेडी हो, तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो फैमिली से डोनर आपको देता है उसको मैच करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसमें जो मेरे पेरेंट्स थे, मेरे मम्मी पापा दोनों रेडी हो गए कि हाँ हम देने को तैयार हैं, आप हमारा टेस्ट कर लीजिए, हम आपकी बेटी को किडनी देने के लिए तैयार हैं। बट बहुत सारे मेडिकल इश्यूज हुए, मैच नहीं हुई मेरे केस में, मेरे पेरेंट्स के साथ मेरी किडनी मैच नहीं हुई, क्योंकि सबसे बड़ा मेन जो मुद्दा था वो था ब्लड ग्रुप का। तो मेरे पेरेंट्स से मेरा ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता था, तो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आई कि मैं ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा है।
1: तो चाहते हुए भी आपके पेरेंट्स जो है वो आपको किडनी डोनेट नहीं कर पाए?
2: नहीं कर पाए, थोड़ी बहुत मेडिकल इश्यूज आई थी। पहले तो डॉक्टर ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर ब्लड ग्रुप नहीं भी मैच करता है तो भी हम करने के लिए तैयार हैं। उसमें एक और थेरेपी होती है जिससे आप आजकल आ चुकी है एक थेरेपी, जिससे आप दूसरे ब्लड ग्रुप में भी किडनी को ले सकते हैं। बट बहुत सारी मेडिकल, मेरी कंडीशन में मेडिकल प्रॉब्लम बहुत आई थी जिस वजह से मेरे पेरेंट्स डोनेट नहीं कर पाए।
1: जया, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस आकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों आप कहीं मत जाइएगा, हम अभी गए और अभी आए छोटे से ब्रेक के बाद और बताएंगे कि कैसे जया जी को एक नया जीवन मिला। तो सुनते रहिए कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
3: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चम ओर फहराएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का,

0: से अलग। मेरी बात सुनते हो, रियली लिसन। काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता। Am I making sense?
1: Not at all. But that'll be 3,000 rupees, please.

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाए अपना ब्राइट फ्यूचर।
3: को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: ऑर्गन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जया जी से, जिनका 2017 में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। जया, आपने ब्रेक से पहले बताया कि कैसे आपको अपनी बीमारी का पता चला और कैसे आपके परिवार के सदस्यों ने आपको सहारा दिया, और ये बात साफ हो गई कि बहुत चाहते हुए भी किन्हीं मेडिकल कारणों की वजह से आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति अंगदान नहीं कर पाया। ऐसे में आपके मन में क्या ख्याल आया और आपको क्या लगा कि कैसे इलाज होगा?
2: पहले तो सारी होप ही हमारी जो थी वो खत्म हो चुकी थी कि अब क्या होगा। अब सेकंड होप हमारी बच गई थी कैडेवर डोनर की। कैडेवर डोनर ये था कि कोई अगर एक्सीडेंट या डेथ केस अगर हॉस्पिटल में आता है मेरे ब्लड ग्रुप से मैच करता हुआ, तो वो हमें

0: हमें किडनी मिल जाएगी, बट ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है, क्या पता आपके ब्लड ग्रुप का डोनर आए ना आए। बहुत मुश्किल से जो अंग जो कहते हैं ऑर्गन डोनेशन जो है वो हमारे इंडिया में वैसे भी बहुत कम है, तो कैडेवर लिस्ट जो आप कह सकते हैं बहुत लंबी जाती है। बहुत सारे लोग वेटिंग पे होते हैं कि हमें मिल जाए हमें मिल जाए। तो ये जो हमारे मन में पहला विचार मेरे मन में आया कि अब तो बहुत मुश्किल है, अब सारी लाइफ मुझे शायद डायलिसिस से ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप भी वैसे बहुत रेयर था, तो इस वजह से मुझे किडनी मिलना तो मतलब इम्पॉसिबल लग रहा था।
1: तो अभी जैसे आपने बोला कि आपको लगा कि शायद सारी उम्र आपको डायलिसिस पर रहना पड़ेगा, तो आपके इलाज में डायलिसिस का एक अनुभव कैसा रहा? मतलब बीमारी का पता चलने के बाद और ट्रांसप्लांट होने तक उसके बीच में डायलिसिस के साथ कैसा नाता रहा?
0: जी, डायलिसिस जो है किडनी में जो मेन इलाज हम कह सकते हैं वो डायलिसिस होता है, इम्पोर्टेंट जो होता है वो डायलिसिस होता है। और जो ह्यूमन डायलिसिस होता है जो मशीन के द्वारा किया जाता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है फिस्टुला, और फिस्टुला के साथ भी मेरी बहुत बड़ी कहानियां जुड़ी है कि मेरे बीच बहुत लो रहता था, तो जो मेरे फिस्टुला है वो या तो बहुत धीमा काम करते थे या बिल्कुल ही बंद हो जाते थे। कई बार मेरी दो बार मुझे फिस्टुला बनवाने पड़े, उसमें भी मेरे कई बार उन्हें ओपन करने के लिए मेरी सर्जरी हुई कई, पर ये जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। एक डेढ़ साल तक मुझे फिस्टुला पे रखा गया, खींच खींच के, मतलब कह सकते हैं कि खींच खींच के उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरा इसे डायलिसिस किया। बट जब ये सब सक्सेस नहीं हुआ तो डॉक्टर कर्नल सतीश मंडल का, उस समय जिन्होंने मेरा केस लिया था श्रीनिवासन सर के बाद जिन्होंने मेरा केस लिया था, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप सीएपीडी करवा लीजिए। सीएपीडी हम कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में कि वाटर डायलिसिस, वो थोड़ा इजी होता है ह्यूमन डायलिसिस से, उसमें रिस्ट्रिक्शन कम होती है आपके लिए, ह्यूमन जो डायलिसिस होता है उससे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आपकी कम होती है। पर बहुत हद तक मुझे जो कहते हैं कि सुई चुभने से मुझे बहुत डर लगता है, तो उससे मुझे काफी आजादी मिली थी जब मैंने अपना सीएपीडी करवाया था। और इसी दौरान मेरे पापा का भी टेस्ट चल रहे थे हमारे ट्रांसप्लांट प्रोसेस के लिए, पर क्योंकि मेरे मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुए थे, मैंने बताया था कि मेरी सीवियर एनीमिया थी तो मुझे हर बार ब्लड की जरूरत होती थी, तो मेरा जो पीआरए परसेंटेज था वो बहुत हाई जा रहा था, तो इस कारण से डॉक्टर ने मना कर दिया कि हम आपके पापा फादर की किडनी जो है वो आपको नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर लगाई जाएगी तो फिर वो खराब हो जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं है। फिर मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप अपना नाम कैडेवर लिस्ट में डाल लीजिए ताकि अगर कोई भी केस आता है तो हम आपको बुला सकें। तो कैडेवर लिस्ट के लिए मुझे फॉर्म वगैरह भरवाए गए मुझसे कि हम आपका नाम कैडेवर लिस्ट में डाल रहे हैं। मैं बहुत लकी थी कि मुझे विद इन अ मंथ, मतलब जून में मुझे मना कर दिया गया था कि आपके फादर की किडनी नहीं लगाई जा सकती है, एंड जुलाई एंड तक मुझे कॉल आ गया था कि आप आ जाइए, आपके जो ग्रुप का एक केस आया हुआ है एक्सीडेंट केस है, वो आप जो वो है अपने पेशेंट के ऑर्गन को डोनेट करना चाहते हैं, तो आप आ जाइए अपना ट्रांसप्लांट प्रोसेस का टेस्ट कर लीजिए। तो बाय द गॉड ग्रेस मुझे मेरे जो सारे टेस्ट थे वो उनके साथ

0: पूरे नर्सिंग स्टाफ ने, डॉक्टर्स ने मुझे समझाया कि आप किस तरीके से अपना ख्याल रखेंगे आगे जाके, आप अपना हाइजीन कैसे मेंटेन करेंगे और चीज को आप कैसे सैनिटाइज करके इस्तेमाल करेंगी, अपने जो छोटी छोटी बातें, जो आप घर जो खाना है वो घर का पका हुआ होना चाहिए, घर का खाना होना चाहिए, पानी जो है वो आप उबाल के पीजिए और दवाइयाँ आप टाइम टाइम के लीजिए, जो क्या कहते हैं अपने हाथों को बार बार धोइए, अच्छे से साबुन से धोइए, ये सब चीजें हमें उस दौरान में समझाई गई और बोला गया कि अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपनी मर्जी से कुछ भी दवाइयां वगैरह ना खाएं, और अगर हो सके तो थोड़ी से थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपका वेट मेंटेन रहे, क्योंकि इस दौरान क्या होता है कि आप जब आप भी ट्रांसप्लांट जब होते हैं तो आपको खाने का कुछ भी मन नहीं करता है, और जैसे ही आपका ट्रांसप्लांट होता है तो आपको लगता है कि आप क्या क्या खा जाए, तो उसमें वेट बढ़ने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें कहते हैं कि आप अपनी वेट को कंट्रोल करके रखें, तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जो आप वॉकिंग वगैरह योगा वगैरह कर सकते हैं वो कीजिए, और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जो भीड़ भाड़ वाली जगह है उसमें नहीं जाना, नहीं जाना है, मास्क लगा, अगर आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ जाए तो मास्क लगा के जाइए, ये सब चीजें उस दौरान में बताई गई, समझाई गई, और ये भी एक मतलब एक खुशी का एहसास होता है ना कि हाँ अब मैं अपनी फैमिली के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाऊंगी, मैं अपने बच्चे के साथ खेल पाऊंगी, उसे पढ़ा पाऊंगी, जो पहले मजे करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक तो बीमारी होती है ऊपर से आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो उस बीमारी से, तो उतना दूसरों पर ध्यान नहीं दे पाते हो, तो वो मेरे लिए बहुत मतलब एक खुशी का पल था कि हाँ अब मैं सब कुछ कर सकती हूँ, नॉर्मल लाइफ जी सकती हूँ।
1: तो जाने से पहले जया, आप हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई संदेश दें ताकि वो लोग भी ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा दें।
0: जी मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अंगदान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी जागरूकता पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं कि उन्हें कोई अंग मिले ताकि वो अपनी लाइफ एक नए तरीके से जी सके, और अगर यदि कुछ मेरे या मेरे परिवार के साथ घटित होता है तो मैं अपना वॉलेंटरी अपना अंगदान करने के लिए ऑर्गन डोनेशन में अपना नाम लिखवाना चाहूंगी, और बस अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अच्छी सोच, नेक इरादा, अंगदान से समाज का भारी फायदा।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद जया, आपने बहुत सही बात कही, अच्छी सोच, नेक इरादा, और हम सभी को आगे बढ़कर इस इरादे को और मजबूत करने की आवश्यकता है। हमें चाहिए कि हम अंगदान के बारे में और बात करें, अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों को बताएं और इसे बढ़ावा दें। तो आपने यहाँ आकर अपनी कहानी हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जया। हम दोस्तों फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।
2: शुक्रिया डॉक्टर कीतिका, आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंगदान करके अपने जाने के बाद किसी की जान बचा सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-120-3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताइए और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दीजिए। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।

0: करो।
1: जीवन एक अनमोल उपहार है, अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
2: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन, उसके मालिक, कर्मचारी, प्रबंधन, प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है, वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते।

हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी, तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

गाना है फ्रॉम द मूवी MS धोनी और इसी गाने के साथ स्वागत है शो लेकर आ गई हूँ बिजनेस अनप्लग्ड, जहाँ मैं बात करती हूँ कुछ ऐसी कहानियों की जिन्होंने अपनी लाइफ की दिशा ही बदल दी। और सक्सेस कहते हैं एक ऐसा वर्ड है जो सुनने में बहुत ग्लैमरस लगता है, लेकिन उसके पीछे की कहानी ऑफन साइलेंट होती है, लोनली होती है और कई बार इनविजिबल होती है। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड, जहाँ मैं बात करती हूँ उन कहानियों की जो सिर्फ बैलेंस शीट में नहीं बल्कि हिम्मत, पेशेंस और रिस्क के पन्नों में लिखी जाती है। आज की स्टोरी कोई स्टार्टअप फंडिंग वाली फेरी टेल नहीं है, ना ही कोई ओवरनाइट वायरल सक्सेस। ये कहानी है पेशेंस की, ऑब्जर्वेशन की और उस कॉन्फिडेंस की जो भीड़ में ऑपोजिट जाकर डिसीजन लेने की हिम्मत देता है। इमेजिन करो एक छोटा सा सिंगल रूम अपार्टमेंट जहाँ स्पेस कम था लेकिन सपने बहुत बड़े थे, जहाँ लग्जरी नहीं थी लेकिन सीख बहुत थी, और जहाँ किसी ने ये डिसाइड किया कि जिंदगी सरकमस्टांसेस से नहीं डिसीजन से बनती है। ये कहानी उस इंसान की है जिसने कॉलेज की डिग्री पूरी नहीं की लेकिन मार्केट को ऐसे पढ़ा जैसे कोई किताब पढ़ता है, जिसने बिजनेस शुरू करने के लिए करोड़ों नहीं सिर्फ 5,000 रुपए से शुरुआत की और आज वही इंसान ग्लोबल रिच लिस्ट में जगह बना चुका है। बिलियंस की नेटवर्थ, हंड्रेड्स ऑफ स्टोर्स और एक ऐसा ब्रांड जो मिडिल क्लास की शॉपिंग हैबिट का हिस्सा बन चुका है। लेकिन हर बड़ी सक्सेस स्टोरी की तरह यहाँ भी एक ट्विस्ट है, क्योंकि शुरुआत बिजनेस से नहीं हुई थी, शुरुआत लॉस से हुई थी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक ऐसा बिजनेस जो ऑलरेडी घाटे में था। उस मोमेंट पे दो रास्ते थे, एक सेफ जॉब या अनसर्टेनिटी भरा रिस्क।

और इन्होंने चुना बिल्कुल सही रिस्क। लेकिन रिस्क भी ऐसा जो समझ से लिया गया था, ना कि एक्साइटमेंट से। इन्होंने मार्केट को ऑब्जर्व किया, लोगों की साइकोलॉजी को समझा और सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंस सीखी। आज के टाइम में हम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन इस इंसान ने इयर्स तक क्वाइटली ग्राउंड वर्क किया। नो हाइप, नो मीडिया इंटरव्यूज, नो फ्लैशी लाइफस्टाइल, बस ऑब्जर्वेशन, स्ट्रेटजी और साइलेंट एग्जीक्यूशन। इंटरेस्टिंग बात यह है, जब पूरा मार्केट एक डायरेक्शन में भाग रहा था, ये इंसान ऑपोजिट डायरेक्शन में सोच रहा था और यही डिसीजन इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। क्योंकि कभी कभी सक्सेस भीड़ के साथ चलने में नहीं बल्कि भीड़ को समझने में होती है। तो आज हम सक्सेस को सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करेंगे बल्कि समझेंगे कैसे लॉस अपॉर्चुनिटी बना, कैसे पेशेंस प्रॉफिट में बदला और कैसे एक सिंपल साइकोलॉजी ने रिटेल इंडस्ट्री की डेफिनेशन बदल दी। लेकिन स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि जिस इंसान के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो स्पॉटलाइट से दूर रहना पसंद करता है। मीडिया से दूरी, सिंपल वाइट क्लॉथ्स और लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा सिंपल। लोग उन्हें एक निकनेम से भी जानते हैं जो उनकी पर्सनालिटी को परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। लेकिन वो निकनेम क्या है और आखिर वो इंसान है कौन, ये मैं बताऊंगी लेकिन गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

गाना है फ्रॉम द मूवी अग्निपथ और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है बिजनेस अनप्लग्ड और आज मैं बात करने वाली हूँ एक साइलेंट बिलियनियर के बारे में जो स्पॉटलाइट से दूर रहकर भी करोड़ों लोगों की डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। नाम है राधा किशन दमानी। जी हाँ, वही विजनरी माइंड जिन्होंने बनाया डीमार्ट। आज दुनिया इन्हें रिटेल किंग के नाम से जानती है। ब्लूमबर्ग इंडेक्स के मुताबिक इनकी नेटवर्थ 1,00,000 करोड़ तक पहुँच चुकी है, लेकिन जर्नी शुरू हुई थी सिर्फ 5,000 रुपए से। स्टॉक मार्केट से शुरुआत, फादर के गुजरने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फिर एक ऐसा डिसीजन जिसने इन्हें मार्केट में एक अलग पहचान दी। जब पूरा मार्केट तेजी पर भरोसा कर रहा था तब इन्होंने गिरावट पर दाव लगाया और यही स्ट्रेटेजी खासकर हर्षद मेहता दौर में इनका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। लेकिन दमानी सिर्फ इन्वेस्टर नहीं थे, वो ऑब्जर्वर थे। इन्होंने समझा भारत की असली ताकत लग्जरी नहीं बल्कि वैल्यू शॉपिंग है और इसी ऑब्जर्वेशन ने जन्म दिया एक ऐसे रिटेल मॉडल को जो प्रॉफिट से पहले ट्रस्ट बनाता है। लेकिन सवाल अब ये है, सिंगल रूम से रिटेल एम्पायर तक का ये सफर आखिर शुरू कैसे हुआ, इनका बचपन कैसा था, फैमिली बैकग्राउंड क्या था और कॉलेज ड्रॉप होने के बाद इन्होंने खुद को कैसे रीबिल्ड किया, ये सब बताऊंगी। लेकिन लगान फिल्म का गाना आ रहा है, गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, तो आज से ही स्माइल शेयर करो और हैप्पीनेस डबल।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड। मैं आपके साथ गीत हूँ। हर बड़ी सक्सेस स्टोरी की शुरुआत किसी ऑफिस केबिन से नहीं बल्कि एक छोटे से कमरे से होती है बॉस। राधा किशन दमानी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। साल 1954, राजस्थान के बीकानेर में एक मारवाड़ी परिवार में जन्म और बाद में परिवार का शिफ्ट होना सपनों के शहर मुंबई में। लेकिन मुंबई की चमक हर किसी को लग्जरी नहीं देती। फैमिली सिंगल रूम अपार्टमेंट में रहती थी जहां स्पेस कम था लेकिन सीख बहुत थी। इनके फादर शेयर ब्रोकर थे और बचपन से ही नंबर्स, रिस्क और मार्केट की बातें इनको सुनने मिलती थी। शायद वहीं से ऑब्जर्वेशन की आदत डेवलप हो गई। इन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की मुंबई यूनिवर्सिटी से, लेकिन फर्स्ट ईयर में ही कॉलेज

उन्होंने लोगों को ऑब्जर्व किया, फियर और ग्रीड को समझा और पेशेंस को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना लिया। 1990 का दशक इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे ड्रामेटिक फेज, जहां एक्साइटमेंट भी थी और अनसर्टेनिटी भी, और इसी फेज में दमानी ने वो किया जो बिगनर्स रेयरली करते हैं। इन्होंने भीड़ को फॉलो नहीं किया बल्कि भीड़ को पढ़ा, और यहीं से उनकी आइडेंटिटी एक स्मार्ट इन्वेस्टर के रूप में बनने लगी। लेकिन इन्वेस्टर से एंटरप्रेन्योर बनने तक का डायरेक्शन कैसा था, वो अचानक नहीं था, उसके पीछे था इयर्स का ऑब्जर्वेशन और एक सिंपल रियलाइजेशन। भारत का कंज्यूमर लग्जरी नहीं, वैल्यू चाहता है, और इसी रियलाइजेशन ने फ्यूचर में एक रिटेल रेवोल्यूशन की नींव रखी। लेकिन वो रियलाइजेशन बिजनेस में कैसे बदला, पहला स्टोर खोलने का डिसीजन कैसे आया, और एक इन्वेस्टर अचानक रिटेलर क्यों बना, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

वेलकम बैक, मैं हूं गीत और आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड। इन्वेस्टर बनना एक जर्नी थी लेकिन एंटरप्रेन्योर बनना एक रिस्क। राधा किशन दमानी के बारे में बात चल रही है आज बिजनेस अनप्लग्ड में, जिन्होंने स्टॉक मार्केट में पेशेंस और स्मार्ट डिसीजन से अपनी पहचान बना ली। प्रॉफिट भी था, रिस्पेक्ट भी थी, लेकिन अंदर कहीं एक ऑब्जर्वर अभी भी एक्टिव था। वो लगातार एक चीज नोटिस कर रहे थे, इंडिया का मिडिल क्लास शॉपर, शॉपिंग उनके लिए एक्सपीरियंस नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बजट इम्पोर्टेंट होता है और ट्रस्ट उससे भी कहीं ज्यादा। मार्केट में ऑप्शंस तो थे लेकिन अफोर्डेबिलिटी और कंसिस्टेंसी का गैप भी था, और यहीं से एक थॉट आया, क्या रिटेल को सिंपलर, चीपर और मोर रिलायबल बनाया जा सकता है। ये थॉट सिंपल था लेकिन एग्जीक्यूशन रिस्की, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप नंबर से खेलते हो, रिटेल में हैबिट से। साल 2002 मुंबई के पवई में एक क्वाइट शुरुआत हुई, पहला डी मार्ट स्टोर खुला। नो हाइप, नो ग्रैंड लॉन्च, बस एक क्लियर साइकोलॉजी, कम मार्जिन ज्यादा वैल्यू और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट। लेकिन स्ट्रगल यहीं खत्म नहीं हुई बल्कि यहीं से शुरू हुई। रियल बिजनेस ग्लैमरस बाहर से लगता है लेकिन अंदर लॉजिस्टिक, इन्वेंट्री, सप्लायर रिलेशन और ऑपरेशनल प्रेशर का कॉन्स्टेंट चैलेंज होता है। दमानी साहब ने एक अनयूजुअल डिसीजन लिया, स्टोर किराए पर नहीं होंगे, ओनरशिप होगी। ये डिसीजन शॉर्ट टर्म में हैवी इन्वेस्टमेंट था लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी। इन्होंने सप्लायर पेमेंट सर्कल भी छोटा रखा, 7 से 10 दिन, जहां बाकी कंपनीज 20 से 30 दिन लेती थी, वहीं इस अप्रोच ने सप्लायर्स का ट्रस्ट जीत लिया। और बिजनेस में ट्रस्ट आप जानते ही हैं, एडवर्टीजमेंट से ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन बिजनेस अकेले नहीं बनता, टीम बनाना, राइट पीपल चुनना और अनग्लैमरस कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। दमानी स्पॉटलाइट से दूर रहते थे लेकिन टीम के लिए उनकी क्लैरिटी बहुत विजिबल थी। नो अननेसेसरी एक्सपेंशन, नो प्रेशर ग्रोथ, बस सस्टेनेबल स्केलिंग। धीरे धीरे स्टोर्स बढ़ने लगे, कस्टमर लॉयल होने लगे और ब्रांड साइलेंटली हाउसहोल्ड नेम बनता गया। लेकिन हर ग्रोथ फेज के साथ प्रेशर भी आता है, एक्सपेंशन का प्रेशर, कॉम्पिटिशन का प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर। अब सवाल ये था, क्या ये स्लो एंड स्टेडी स्ट्रेटेजी फास्ट ग्रोइंग रिटेल मार्केट में टिक पाएगी? क्या साइलेंट ग्रोथ एक दिन एक्सप्लोसिव सक्सेस में बदलेगी या कंपटीशन इसे पीछे छोड़ देगा? इसका जवाब मैं आपको बताऊंगी लेकिन गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके शो है बिजनेस अनप्लग्ड। और कभी कभी सक्सेस शोर नहीं करती बल्कि स्टेडली बढ़ती रहती है। डीमार्ट के साथ भी यही हुआ, कोई ओवरनाइट एक्सप्लोजन नहीं लेकिन कंसिस्टेंट एक्सपेंशन। 2011 से 2012 के करीब 55 स्टोर्स और फिर 60, 75, 100 और देखते ही देखते सैकड़ों स्टोर्स का नेटवर्क। आज मल्टीपल स्टेट में प्रेजेंस और करोड़ों कस्टमर्स की डेली शॉपिंग हैबिट का हिस्सा। ये ग्रोथ सिर्फ नंबर्स की नहीं, ये ट्रस्ट की ग्रोथ थी। फाइनेंशियल्स भी इसी कहानी को रिफ्लेक्ट करते हैं। रेवेन्यू हर साल स्टेडली बढ़ता गया, प्रॉफिट इम्प्रूव होता गया और मार्केट कैप कई गुना बढ़ गया। 2017 में पेरेंट कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स का IPO आया और लिस्टिंग के साथ ही मार्केट ने क्लियर मैसेज दे दिया, साइलेंट एग्जीक्यूशन भी ब्लॉकबस्टर हो सकता है। नेटवर्थ के मामले में राधा किशन दमानी ग्लोबल रिच लिस्ट में नाम बना चुके थे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात उनकी सिंप्लिसिटी वही रही, वाइट क्लॉथ्स, लो प्रॉफिट लाइफ, मीडिया से दूर। शायद इसीलिए इन्हें मिस्टर वाइट एंड वाइट भी कहा जाता है। लेकिन इस एम्पायर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ लग्जरी नहीं, डिसिप्लिन है। कम मार्जिन, फास्ट पेमेंट साइकिल, ओन स्टोर्स, कंट्रोल एक्सपेंशन और यही स्ट्रेटजी इन्हें कंपटीशन से अलग बनाती है। क्योंकि हर सक्सेस स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा नंबर नहीं बल्कि लेसन होता है। राधा किशन दमानी की कहानी हमें बताती है, आपको फ्लैशी होने की जरूरत नहीं, आपको फास्टेस्ट होने की भी जरूरत नहीं, लेकिन आपको पेशेंट और ऑब्जर्वेंट जरूर होना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे बड़ा कैपिटल पैसा नहीं, क्लैरिटी होती है। उन्होंने मार्केट को समझा, कंज्यूमर को समझा और सबसे इम्पोर्टेंट खुद को समझा। अगर आप एक नए एंटरप्रेन्योर हो तो शायद ये मैसेज आपके लिए है, स्टार्ट स्मॉल बट थिंक लॉन्ग टर्म। फॉलो ट्रेंड्स नहीं, अंडरस्टैंडिंग फॉलो करो और ग्रोथ के पीछे भागने से पहले ट्रस्ट को बिल्ड करो। फेलियर्स आएंगे, कंफ्यूजन होगा, कंपैरिजन भी होगा, लेकिन याद रखना हर सक्सेसफुल ब्रांड कभी अननोन ही था और शायद आज आप भी उसी अननोन फेज में हो जहां पेशेंस सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। सो टेक योर टाइम, ऑब्जर्व मोर, पैनिक लेस और कंसिस्टेंसी को बोरिंग समझने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना।

0: क्योंकि बोरिंग कंसिस्टेंसी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट बनाती है। इसी के साथ ये था आज का एपिसोड बिजनेस अनप्लग्ड। मैं हूँ गीत और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ जहाँ सक्सेस सिर्फ दिखाई नहीं देगी बल्कि समझ भी आएगी। टिल देन ड्रीम बिग, स्टे ग्राउंडेड एंड कीप बिल्डिंग एंड कीप लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।
1: ईश्वर, हम माफी मांगते हैं कि हमने अपनी सारी ब्लेसिंग्स को इग्नोर किया और हमेशा आपसे ज्यादा और ज्यादा की आस करते रहे। वी आर सॉरी, पर आज हम हाथ जोड़ के उन खुशियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।

नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो। है मन उदास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स लॉट।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसे लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा, बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।

0: यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी कहानी जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
1: तुम्हें देखो ना ये क्या हो गया।
0: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहां हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन। मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
2: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: शुरू आजा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ
2: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारो।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारो।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता।
2: अरे यार वो कह रहा था बस से उतरो और आगे बढ़ो, मुंह उठा के आगे बढ़ना था। अब मैं चली, तुम बोलते रहो।

के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, एक UI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: आपका KYC अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।
3: जमाना बीता चेहरे बदले मगर आवाज वही पुरानी, रात बाकी बात बाकी में सुनते रहिए बातें।

0: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी एक कहानी जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
1: है फिर क्यों आँखों में नमी, क्यों मैं रोता हूँ।
0: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहाँ हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन। मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।
2: जब HR 51 की गाड़ियाँ दिखे तो समझ जाना ये है हरियाणा का फरीदाबाद शहर पुराना, और जब बैठो इन गाड़ियों में तो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 ही बजाना।

कभी सोचा है प्लेट भी जिंदा हो सकती है? कभी महसूस किया है कि जब गर्म चावल किसी हरे पत्ते को छूते हैं तो सिर्फ भाप नहीं उड़ती, एक पुरानी याद उड़ती है शहर के स्टील और सेरेमिक के बीच। कहीं खो गया है वो हरा रंग जो कभी हर शादी, हर भोज, हर उत्सव का सेंटर हुआ करता था। वो कहा है कि चांदी के बर्तन चमक सकते हैं पर मिट्टी और पत्ता महका करते हैं। कुछ चीजें दिखती कम है पर महसूस ज्यादा होती है। 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो लेकर आई हूँ कल्चर गरबा, जहाँ आज हम बात करेंगे एक ऐसे थाल की जो फैक्ट्री में नहीं बल्कि एक पेड़ पर उगा। अब बात कर रहे हैं बनाना लीफ की, तो चलिए आइए जानते हैं परंपरा का गहरा इतिहास क्या कहता है। भारत में प्रकृति कभी सिर्फ रिसोर्सेस नहीं रही, वो रिश्ता रही है। फिर बात करें तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में केले के पत्ते पर भोजन सिर्फ एक कस्टम नहीं, एक मर्यादा है। पुराने दौर में हर घर के पास बर्तन नहीं होते थे, मेटल काफी महंगा था पर पेड़ वो सबका था। और रही बात केले की पेड़ की, तो केले का पेड़ शुभ माना गया। विवाह और पूजा में इसके पत्ते और तना दोनों का उपयोग होता था, इसलिए जब भोजन पत्ते पर आने लगा तो उसमें पवित्रता का एक भाव जोड़ दिया गया। वो कहा है कि जिस पेड़ ने सांस दी उसी ने थाल दिया, इंसान और प्रकृति का ये सबसे पुराना सौदा था। केले का पत्ता सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि एक साइंस भी अपने साथ लाता है। इस साइंस के बारे में बात करेंगे वापस आकर, तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: सफर।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो लेकर आई हूँ कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं बनाना लीफ के बारे में। तो चलिए आइए जानते हैं इसके पीछे का साइंस, साइंस जो स्वाद बदल देती है। बनाना लीफ के सरफेस पर एक नेचुरल वैक्स कोटिंग होती है। जब गर्मा गर्म खाना जैसे सांबर, चावल या घी बनाना लीफ पर डाला जाता है तो पत्ते की सरफेस हल्का सा रिएक्ट करता है और बस इसी रिएक्शन से एक सटल अर्थी अरोमा रिलीज होता है, इसलिए बनाना लीफ पर खाने का टेस्ट थोड़ा अलग लगता है, जरा सा फ्रेश, जरा सा वार्म। और बात करें हाइजीन की तो बनाना लीव्स में नेचुरल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो सिंगल यूज, बायोडिग्रेडेबल, जीरो डिटर्जेंट और साथ ही जीरो रेसिड्यू होती है। और बस इसीलिए आज दुनिया में इको फ्रेंडली का टैग लगाकर बेचा जा रहा है इन्हें। जबकि अगर बात की जाए हमारे पुरखों की तो बिना टैग के जी रहे थे बनाना लीव्स के साथ। जब साइंस परंपरा के साथ खड़ी हो जाए तो रिवाज अंधविश्वास नहीं रहता, विजडम बन जाता है। तो चलिए फिर इसी के साथ जानते हैं सर्विंग की ज्योमेट्री। अगर आप कभी ट्रेडिशनल साउथ इंडियन फेस्ट में बैठे हैं तो आपने नोटिस किया होगा हर आइटम की जगह फिक्स्ड होती है। जैसे बात करें मीठा, तो मीठा सबसे पहले दिया जाता है, नमक ऊपर लेफ्ट साइड रखा जाता है, पीकल साइड में रखा जाता है और राइस हमेशा सेंटर में। ये कोई रैंडम अरेंजमेंट नहीं है बल्कि ये एक डाइजेशन पैटर्न और प्रैक्टिकल सर्विंग लॉजिक का एक प्लांट है। और बस इतना ही नहीं, पत्ता किस डायरेक्शन में रखा जाएगा वो भी एक ओकेजन बताता है। खाने की प्लेट भी एक लैंग्वेज बोलती है, बस हम सुनते नहीं। वो कहा है कि हर दाने की जगह तय होती है, हर स्वाद का अपना मकाम होता है। जिंदगी भी तभी बैलेंस्ड लगती है जब हर रिश्ता सही जगह होता है। बनाना लीफ से जुड़ी और भी बहुत सारी बातें हैं, जानेंगे इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमें

89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो लेकर आई हूँ कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं बनाना लीफ के बारे में। तो चलिए जानते हैं ओनम सद्या पत्ते पर जो त्योहार मनाया जाता है। ओनम के दौरान जो सद्या सर्व होता है वो बनाना लीफ पर ही परोसा जाता है। 20 से 26 आइटम्स तक अवियल, ओलन, तोरण, पायसम, रंग, टेक्सचर, टेम्परेचर सब एक पत्ते पर नजर आता है। सोचिए एक लीफ पर पूरा फेस्टिवल। ये सिर्फ खाना नहीं, कम्युनिटी एक्सपीरियंस है। और इतना ही नहीं, शादी, सम्मान और समानता। माना जाता है बनाना लीफ पर खाना खाना एक इक्वालिटी सिंबल रहा है। सब लोग एक ही लाइन में बैठकर खाते हैं, सेम पत्ता सेम सर्विंग, ना वीआईपी प्लेट ना स्पेशल बॉल, एक पत्ता सबके लिए। इसमें एक साइलेंट डेमोक्रेसी देखी जाती है। वो कहा है कि जब पत्ता सबका एक सा हो तो फर्क सिर्फ पेट का रहता है, स्टेटस का नहीं। बनाना लीफ ने हर घर में कैसे अपनी जगह बनाई, परंपरा से लेकर साइंस तक सब कुछ अपने साथ समेट ही रखा। अब वापस आकर जानेंगे कि आज के जमाने में कितनी अहमियत है इस लीफ की। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा, पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं बनाना लीफ के बारे में। तो आज का जमाना और कल की सीख का एक परफेक्ट कॉम्बो है। आज वेडिंग्स में फैंसी क्रॉकरी है, थीम डेकोर है, इम्पोर्टेड कटलरी है, पर जब बनाना लीफ आता है तो लोग फोटो लेते हैं क्योंकि उन्हें फील आता है वो उनके बचपन, दादी का घर या किसी टेंपल फेस्ट से जुड़ा हुआ है। कभी कभी सिंपलिसिटी ही लग्जरी होती है। और बात कर ही रहे हैं बनाना लीफ की, वो कहा है कि थाल बदलते गए जमाना बदलता गया, पर जो पेड़ से जुड़ा रहा वो कभी अकेला नहीं रहा। अगली बार अगर मौका मिले तो स्टील की प्लेट साइड रख देना और एक पत्ता बिछा कर देखना, हो सकता है खाना वही हो पर एहसास बदल जाए। इसी के साथ अब वक्त हो गया है मेरा यहाँ से जाने का, मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए जायके के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। दिस इज योर आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जो बातें हम नॉर्मल जिंदगी में कह नहीं पाते वो हम किसी नज्म में लिख देते हैं, किसी कविता में लिख देते हैं। और शायद इसीलिए हर कविता सिर्फ लिखी नहीं बल्कि महसूस की जाती है। तो आज दिल शायराना में बहुत सारी बातें होने वाली हैं। मेरे साथ काफी सारे जो कवि हैं वो मौजूद हैं, कवित्री मौजूद हैं मेरे साथ। अनिका जी हैं, आलोक जी हैं, स्मिता सिंह चौहान जी हैं, स्वाति जी हैं और जय सिंह जीत जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
5: बहुत बहुत धन्यवाद
4: जी। तो सबसे पहला सवाल मेरा सभी से है, ये सवाल है कि लिखना जो था वो आपकी चॉइस था या जरूरत है? और
6: मजबूरी
4: क्यों? बट
6: बिकॉज हर एक शायर शायरी शौक से नहीं लिखता, बजाय इसके कि वो किसी से वो अपनी बातें कहे, वो लिखना ज्यादा जरूरी समझता है। तो वो मजबूरी धीरे धीरे उसका शौक बन जाती है, और जब मजबूरी शौक में बदलती है तभी बड़ा शायर बनता है।
4: क्या बात है, बहुत बहुत गहरी बात कह दी है आपने। अनिका जी, आपसे भी इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगी।
5: जी बिल्कुल सही कहा सर ने, लिखना एक वो होता है जब हम किसी से कुछ कह नहीं पाते। आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं होता जिससे आप अपनी जिंदगी की कहानी रख सकें, उसको फिर हम गजल, नज्म, शायरी, किताब जैसे शब्दों में पिरो के ऑफर लोगों के आगे रखते हैं।
4: जी।
5: लोग वो सुन लेते हैं पर दर्द नहीं सुन पाते हैं। तो इसलिए ये सही बात है, बिल्कुल आप मजबूर हैं तभी कुछ लिख रहे हैं। बट हाँ, शौक भी है, क्योंकि जब तक आपको कहते हैं ना, शायर पैदा होते हैं बने ते नहीं है। दिल तो सभी के टूटते हैं पर सब लिखते भी नहीं है। तो हम लिख पा रहे हैं, ये कृपा है ऊपर वाले की हम पे।
4: स्वाति जी
7: बिल्कुल मैम और सर ने बहुत अच्छे से बोला और अच्छे बताए। जैसे आजकल की, मतलब मैं समझ पाती हूँ आजकल की जो दुनिया है ना, उसके सामने आप कुछ कहने जाओ तो वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो आप पे उल्टा रिएक्शन देंगे। लेकिन अगर आप उसे शब्दों के साथ उनको रखते हो समाज में तो सब कोई सुन लेता है। कहीं ना कहीं वो आपकी एक सच्चाई ही होती है। जो प्रॉपर आप किसी के सामने रखोगे तो नहीं सुनेंगे, लेकिन आप वही अब शब्दों में पिरो देते हो, समाज के सामने रखने लगते हो, तो वो एक अच्छा निर्देश की तरह लोग लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एक वो होता है कि हम जो नहीं कह पाते समाज में उसे अपने शब्द के माध्यम से पहुंचाते हैं
4: जी।
7: और एक लिखना बाद में वही शौक बन जाता है
4: जी। स्मिता जी आपके पास आते हैं।
8: मेरे लिए तो लिखना जो है वो मौन को आवाज देना है, और वो मौन कोई भी हो सकता है, चाहे वो इस पृथ्वी में चिड़िया का मौन हो, चाहे वो जानवरों का है, जंगलों का है, अपना मौन हो, या फिर किसी समाज की ऐसी समस्या का मौन हो जिसमें कोई कुछ नहीं बोल पाता तो कवि बोल देता है। तो मेरे लिए

0: पे बोल नहीं पाएगा ना, और अगर मैंने वो नोटिस की है और मुझ में ये हुनर है तो मैं उसे आवाज़ ज़रूर दूंगी।
1: क्या बात है। सर आपके पास आते हैं जयसिंह जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में?
2: जी गीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। मैं बहुत बचपन से कविताएं सुनता था जी, कवि सम्मेलनों में जाता था।
1: हाँ।
2: कब सुनते सुनते मैं कवि बन गया मुझे सच में पता ही नहीं चला। और अब मेरा उद्देश्य है कि कुछ अच्छा पेश किया जाए। जैसे प्यार को हवस ना करके प्यार ही रखा जाए, मैं इस प्रयास में लगा हूँ।
1: क्या बात है। और ये जैसे आपने कहा कि मैं बस बन गया, तो कभी कभी इत्तेफाक भी अच्छे होते हैं।

0: कवि का ना एक अलग मूड होता है लिखने का, है ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है, स्मिता जी आपसे ही पूछते हैं ये सवाल, ये जो इमोशंस हैं ये कहाँ से पैदा होते हैं?
1: इमोशंस तो पैदा कैसे होंगे, आप देखेंगे जी कि अगर मेरे तो इमोशन ऐसे भी पैदा हो जाते हैं, जैसे अभी मैंने हाल ही में कविता चिड़िया पे लिखी थी,
0: हाँ।
1: मैं उसे दाना ही दे रही थी, पर मैं ये सोच रही थी कि कई लोग देते होंगे दाना, पर मेरे कवि मन में ये आया कि ये दाना जो है ना मेरा उस पर कोई एहसान नहीं है, ये मेरी झिझक है जो जंगल में काट के हम जिस बिल्डिंग में बैठे हैं उसकी शायद कहीं झिझक कोई शर्मिंदगी मैं मिटाना चाह रही हूँ और इसलिए मैं इसे देती हूँ। तो उसी पर वो एक इमोशन आया और मैं लिखने बैठी और बन गई कविता। ऐसे ही जैसे अभी मदर्स डे था तो 80s 90s की जो माएं हैं जो अपनी बात कभी कह ही नहीं पाती थी उन्होंने सबसे ज्यादा सहा है, ठीक है। तो अभी मेरी माँ बहरीन से आई थी, आपको पता है वहाँ क्या चल रहा है इस वक्त युद्ध का, तो वो बहरीन से आई तो मैं उन्हें देख रही थी क्योंकि वो एक ट्रॉमा में थी। तो जब मैंने उन्हें देखी तो मुझे लगा कि इनका जो अंदर का जो ट्रॉमा युद्ध को देख के पैदा हुआ ना वो सिर्फ वो नहीं था, वो उनकी वो कहानी भी है जो पिछली रह गई, क्योंकि वो उसी चीज पे कह रही थी कि हमने क्या देखा, हमने कुछ नहीं देखा और अब हम ये भी देख रहे हैं। तो वहां से इमोशन आ गया। इमोशन को आप बांध नहीं सकते, वो एक ऐसा समंदर है आपके अंदर, वो कहीं से भी आप पे उफन सकता है, कहीं से भी सुनामी ला सकता है। तो मेरे लिए तो इमोशन यही है
0: जी। क्या बात है सर, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आपसे एक सवाल है। हम अगर बात करें हमारे हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि जो रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी, जो समाज को आईना दिखाने का काम किया करते थे, तो क्या लगता है आज के समय जो कविताएं लिखी जा रही हैं समाज को आईना दिखा रही हैं?
2: जी, आज की कविताएं आज के हिसाब से आईना दिखा रही हैं, और उस वक्त जो परिस्थितियां थी प्रेमचंद जी के समय में उन्होंने उन परिस्थितियों को यथार्थ बनाकर लिखा, उस वक्त भी बहुत पसंद की जा रही थी
0: जी।
2: और आजकल के कवि भी किसी टॉपिक को पकड़कर बहुत अच्छे से पेश कर रहे हैं, मैं मानता हूँ इस बात। आज जो जरूरतें हैं कवि बखूबी उसको निभा रहे हैं, लिख रहे हैं
0: जी। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि आज जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं फेम के लिए भी लिख रहे हैं, इंस्टाग्राम के लिए?
2: सभी तो नहीं होंगे,
0: सभी नहीं है,
2: सभी नहीं होंगे
0: जी,
2: कुछ लोग वास्तव में अपने अंदर की तड़प को प्रस्तुत कर रहे हैं
0: जी,
2: ऐसे बहुत हैं।

0: जी आपके पास आती हूँ. स्टेज पोइट्री का एक अलग ही प्रेशर होता है और आप मंच की कवित्री हैं, तो आप बहुत ही बखूबी ये बात जानती हैं, जहाँ लोग सिर्फ सुनते नहीं है बल्कि रिएक्ट भी करते हैं, अपने इमोशंस भी दिखाते हैं. तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन से आपकी जो क्रिएटिविटी है वो इफेक्ट हुई हो, आप जो सोच कर गई हो एग्जैक्ट वो परफॉर्म ना कर पाई हो? ऐसा
1: हाँ, कुछ अक्सर हर बार यही होता
0: है. अच्छा, हर बार होता है,
1: सबके साथ होता होगा शायद. हम अपने अंदर से कुछ पैरामीटर्स लेके चलते हैं कि हम ये पढ़ेंगे. पब्लिक डिपेंड करता है कि आप यूथ के जेंजी हैं तो क्या हमें प्रस्तुत करना है, आप थोड़े बुजुर्ग हैं, शायराना मतलब प्रॉपर उस्ताद लोग हैं, तो हम क्या करेंगे उर्दू मुशायरे में. तो वो डिपेंड पब्लिक पर ही करता है कि आप कैसे सुन रहे हैं, क्योंकि हमसे पहले भी लोग पढ़ रहे होते हैं
0: जी.
1: उतना भी जजमेंट हो जाता है कि वो लोग कैसे सुन रहे हैं.
0: हाँ.
1: अगर नहीं तो फिर चेंज करते हैं सेम टाइम पर. लेकर तो हम एक्स्ट्रा ही जाते हैं
0: जी. आलोक यादव जशनूर जी.

0: जो कवि हैं वो बिना फिल्टर के लिख रहे हैं या कहीं ना कहीं फिल्टर आ गए हैं पोएट्री में भी?
1: जी, ये मेरे हिसाब से पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, एंड मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे नोन है वो, जो कि विदाउट एनी फिल्टर्स लिख रहे हैं.
0: ओके.
1: एंड करंट सिचुएशन मैं अगर डिस्कस करना चाहूँ तो मैं यही बोलूँगा कि उन लोगों का जो बोलने का तरीका है, जो भी उनकी परफॉर्मेंस रहती है, लाइक एक नाम है अनंत गुप्ता करके हैं, आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो जब स्टेज पर परफॉर्म करते हैं तो सीरियसली ऐसा लगता है कि उनकी वाणी में, बोलने में, उनके एक प्रवाह जो उनका चलता है बोलने का, उसमें कोई भी किसी भी तरह का फिल्टर नहीं है. कुछ लोग रखते हैं जिन्हें मैं कह सकता हूँ कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मुझे अपनी मर्यादा में बोलना है, जिन्हें ऐसा लगता है कि मेरे वर्ड्स किसी को हर्ट कर सकते हैं, तो ऐसे लोग फिल्टर लगा सकते हैं, बट पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है.
0: एग्जैक्टली, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि आप कैसे डिसाइड करते हैं, क्या आपको पब्लिक को सुनाना है, क्या उनसे छिपाना है?
1: मैं कभी कोई भी चीज कभी सोच के नहीं लिखता, मैं अपने इंस्टिंक्ट्स पर काम करता हूँ. सो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैं लिख रहा हूँ वो हमेशा उस चीज के लिए तैयार होके ही लिख रहा हूँ कि मैं किसी को भी ये चीज सुना सकता हूँ, किसी भी मंच पर.

0: स्वाति जी आपके पास आते हैं। देखो मुझे नाम याद हो गया है
1: बहुत अच्छा
0: जी। एक वक्त था जब शायरी सिर्फ महसूस की जाती थी, अब रिकॉर्ड भी होती है, इनफैक्ट वायरल भी होती है। आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने पोएट्री को ज्यादा पावरफुल बनाया है या कहीं ना कहीं पोएट्री और ये लिटरेचर पीछे छूट गया है इसके वजह से?
1: बिल्कुल नहीं। पहले नंबर तो सोशल मीडिया के जरिए आज जहाँ नहीं जाना चाहिए पोएट्री वहाँ तक पहुँच रही है। हम गांव तक भी इसको ले जा रहे हैं। जो पोएट्री शब्द है उसको कोई जानता नहीं था गांव में, आज गांव में भी जो है वो सुनना चाह रहे हैं
0: जी।
1: और पोएट्री एक ऐसा माध्यम है जिससे मतलब समाज में क्या हो रहा है, क्या ट्रेंड कर रहा है, उसको भी ले जाया जा रहा है। तो मैं तो पोएट्री को ये मानती हूँ कि बहुत अच्छा है, जो पहले था वो भी अच्छा था।

0: उस समय के हिसाब से आज के हिसाब से जो है वो भी अच्छा है।
1: जी स्मिता जी,
0: जी
1: बहुत सारे लोग लिखते हैं लेकिन हर कोई कनेक्ट नहीं कर पाता, तो आपके हिसाब से एक अच्छी कविता की पहचान क्या होती है?
0: मेरे हिसाब से देखिए कविता अच्छी बुरी तो नहीं होती, कविता कविता होती है। और जहाँ तक कनेक्शन का सवाल है कि हम लोगों से कनेक्ट आप तब हो पाते हैं जब आप बहुत सरल साधारण तरीके से अपनी बात को कह पाते हैं, जिसमें दूसरा ये समझे कि अरे ये तो मेरा ही दर्द था जो उसने बोल दिया, है ना। लेकिन बहुत क्लिष्ट अगर आप शब्दों को इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज्यादा ऐसा कि जैसे आजकल एक जो आपने अभी सोशल मीडिया वाली बात की कि सोशल मीडिया में ना एक होड़ लगी हुई है कि हम कैसे किससे आगे जाना चाहते हैं उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन हम जाना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी तकनीक को जब बीच में डाल रहे हैं। ये चीज मैं इसलिए यहाँ पे बोल सकती हूँ क्योंकि अभी कुछ नए नए पोएट भी मैंने देखे हैं जहाँ चैट जीपीटी का इस्तेमाल हो गया।
1: मैं यही बोलने वाली थी।
0: तो वो जब आते हैं ना तो आप वो कनेक्ट नहीं कर पाते बिकॉज तकनीक आपके भाव नहीं ला पाएंगे, तकनीकी चीजें सरलता नहीं ला पाएंगी, तो वो कनेक्ट नहीं हो पाते। लेकिन जो लोग वाकई लिख रहे हैं, लिखते हैं, चाहे वो चार लाइनें लिखें, दो लाइनें लिखें, पर वो जब भी बोलेंगे ना तो वो कनेक्ट होगा और होगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं होते।
1: जी सर आपके पास आना चाहूंगी। जय सिंह जी, अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे इस बारे में कि आपको लिखने से पहले एक बहुत अच्छा पढ़ने वाला होना चाहिए, सुनने वाला होना चाहिए। लेकिन अगर मैं कविताओं की बात कहूँ, अगर जैसे मैं बात करती हूँ सिंगिंग की या किसी और अदर आर्ट की, तो वहाँ लोग अपना मेंटोर चुनते हैं, उनसे सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कविता के क्षेत्र में ये चीज उतनी नहीं है, उतना मेंटोर नहीं है, वो सिखाने वाले नहीं है, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप?
2: जब कोई फील्ड में आता है इसमें कविता के फील्ड में तो हो सकता है कि वो बगैर किसी गुरु के आ जाए।
1: हाँ।
2: लेकिन यदि आने के बाद वो गुरु को ढूंढ कर लिखता है तो बहुत अच्छा लिखता।
1: हाँ।
0: क्या बात है?
2: वो एक बहर में चल सकता है।
1: हाँ।
2: एक पूरी परंपरा में चल सकता।
1: हाँ।
2: है।
1: हाँ। हाँ।
2: और मेरे हिसाब से हमें गुरु तो बनाना चाहिए ताकि हम अपने इमोशंस को भली भांति पेश कर सके।
1: जैसे आपने बात की बहर की, आजकल लोग मोस्टली मीटर में नहीं लिख रहे हैं, छंद मुक्त ही लिखते हैं, तो क्या लगता है? मीटर है उसका भी? अच्छा, जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक कवि से पूछा था, मुझे इसके बारे में नहीं पता था, तो उन्होंने कहा जो मीटर में ना हो उसे आप ख्याल कह सकते हैं, आप उसे, हाँ आप उसे गजल नहीं कह सकते।
3: गजल नहीं।
1: तो ये जो लिख रहे हैं लोग इस तरीके का जो कंटेंट है, इसके बारे में आपकी क्या राय है?
2: मैं ये मानता हूँ, मान ले इमोशंस अगर किसी के अंदर बहुत ज्यादा आए हुए हैं किसी विषय के ऊपर, उस वक्त वो मीटर की तरफ जाएगा तो इमोशंस या तो खत्म हो जाएंगे या आधे हो जाएंगे,
1: बंद जाएंगे।
2: लेकिन अगर हमें एक्सपीरियंस है मीटर्स का तो हम मतलब अपनी बात को ढंग से कह भी सकते हैं, ऐसा भी मुनासिब है, मुश्किल भी नहीं है।
1: जी जी।
2: लेकिन उसके लिए एक एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी है।
1: जी जी। तो किन किन कवियों को पढ़ सकते हैं जो हमारी यंग जनरेशन है? बिकॉज बहुत इम्पोर्टेंट है कि कुछ भी ऐसे ना लिखा जाए, अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो बहुत अच्छा पढ़ के आए। तो कौन कौन से ऐसे कवि हैं जिनको आप रिकमेंड करना चाहेंगे?
2: डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी हैं, सुनील जोगी हैं, राजेंद्र चौहान हैं, और बहुत ऐसे और भी कवि लिखते हैं, और जैसे कुमार विश्वास जी हैं,
3: उनकी तो बात ही अलग है,
2: और सबीना अदीब जी हैं, बहुत गहरा लिखती हैं। जो जितना ज्यादा सुनेगा गीत जी वो उतना अच्छा लिखेगा, मैं ये मानता हूँ।
3: सुनना पढ़ना जरूरी है।
0: हाँ, सुनना पढ़ना बहुत जरूरी है।
1: अनिका जी, आपसे भी यही सवाल है, एग्जैक्ट सेम सवाल ही है, अगर आज की यंग जनरेशन पोएट्री लिखना स्टार्ट कर रही है तो उन्हें सबसे पहले क्या चीजें सीखनी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए?
3: कि ख्याल तो कुछ भी हो सकता है किसी का, और जैसे कि बहर पैरामीटर की बात चल रही थी, तो पानी जब बिना मर्यादा के है तो कैसा है? मर्यादा मर्यादित है बहर पैरामीटर, आप जब मर्यादा में बहते हैं, नल के थ्रू जा रहा है तो सुविधाजनक है, बिना उसके बाढ़ भी ला सकते हैं शब्द, तो पैरामीटर तो पहले इसलिए भी जरूरी है। और पढ़ने के लिए कुछ भी भाव आपकी जिंदगी कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हम मैं दर्द लिखती हूँ, कुछ मोहब्बत लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आप अच्छे अच्छे राइटर्स को पढ़ें, अच्छे अच्छे जो भी आपसे आप साथ जैसे अब अभी हम जुड़े हैं, आपसे सीखने को मिलेगा, बड़े लोगों से सीखने को मिलता है, सबकी संगत में रहें, कि हर किसी राइटर को पढ़ना और सुनना ज्यादा जरूरी है आपको एक अच्छी चीज करने के लिए।
1: जी जी,
3: बहुत जरूरी है। आप जब तक जैसे कि जॉन इलिया की बात की आपने, जॉन इलिया, प्रवीण शाकिर जी, शबीना अदीब जी, अंजुम रहबर जी, बड़े बड़े नाम, कुमार विश्वास, जैसे मैं तो फैन हूँ, बिग फैन ऑफ कुमार विश्वास, उनकी वजह से ही आज मैं लिख रही हूँ शायद। तो ऐसे नामों को आपको जरूरी है, जैसे कोई पूछता है कि क्यों लिख रहे हैं, तो ऐसा कुछ खास नहीं है, बस वो शायरी सुन ली थी उनके, उसके बाद लगा यही करना है, तो वो नाम जरूरी है, और पैरामीटर बहुत जरूरी है।

0: लिसनर्स हमें सुन रहे हैं आज दिल शायराना को, वो सोच रहे होंगे कि मेन मुद्दे पर आ जाए, इतने सारे जब कवि और कवित्री जुड़े हैं तो उनकी रचनाएं ना हो तो ऐसा तो नहीं होगा। तो अब हम सीधा रचनाओं पे बढ़ते हैं। तो सबसे ये सेम सवाल है, आपसे शुरुआत करते हैं अनिका
1: जी, बताएं मैम
0: क्या ज्यादा पसंद है, ओपन माइक या मंच की तालियां या अकेले कमरे में बैठी हुई एक सच्ची लाइन?
1: सच्ची लाइन को ही मंच पे ले जा रही हूँ मैं। पहले अकेले में लिखती हूँ और फिर मंच तक जाना मुझे उसके लिए अच्छा लगता है।
0: एक कवि जो होते हैं अपनी बातों को बहुत घुमा फिरा के
1: बात कही मैम आपने, आपको अकेले कमरे में लिखना पसंद है या फिर सबके सामने ले जाना? तो अकेले कमरे में लिख के सामने ले जाना।
0: तो क्या ऐसा लिखा था जिसमें बहुत तालियां मिली हो और बहुत
1: मैम तालियां मिली? वो तो अभी थोड़े दिन के लिए गुप्त रख रही हूँ।
0: अच्छा,
1: वो वायरल भी गया, आपको बताया भी।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
1: तो अभी
0: यहाँ भी गुप्त रखेंगे हम। हाँ, कोई बात नहीं, हम किसी और रचना पर आते हैं।
1: हाँ, तो फिर मैंने एक मतलब धोखे पर ही लिखा था मैम, मतलब दो शेर।
0: हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल।
1: अर्ज है, मैं इश्क कर रही थी ईमान की तरह, वो इश्क कर रहा था एहसान की तरह, जो कलमे के मानी तक जानता नहीं, जो कलमे के मानी तक जानता नहीं, मैं उसको पढ़ रही थी कुरान की तरह।
0: क्या बात है,
2: बहुत
1: एक नज्म की तरह थी मेरी ये जिंदगी, और जिंदगी में गम थे उनवान की तरह,
2: क्या मिश्रण।
1: और छुआ था ख्वाब में उसने एक दफा मुझे, छुआ था ख्वाब में उसने एक दफा मुझे, अब तक महक रही हूँ मैं लोबान की तरह।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। आलोक जी आपके पास आते हैं, आपसे भी ये सेम सवाल है, क्या ज्यादा पसंद है आपको?
2: मुझे, मैं जिस विधा में लिखता हूँ वो अक्सर यही इश्क मोहब्बत प्यार या कह सकते हैं मन वसीयत। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ये भी बोला था कि मजबूरी है, और फिर मैम ने उसको इतनी अच्छी तरह क्लैरिफाई किया ये बात मैम की, जो मैं बहुत अच्छी लगी, वहां से मैं यहाँ से मैं उस चीज को लेके जाऊंगा अपने साथ और अपना नजरिया बदलने की कोशिश करूंगा मैं।
0: बहुत बढ़िया। तो क्या आपको एग्जैक्टली क्या ज्यादा पसंद है, ओपन माइक की तालियां या सच्ची लाइन अकेले कमरे में बैठी?
2: मैं बस ये चाहता हूं कि मेरे सामने बैठे हुए जो लोग हैं वो एक अच्छे श्रोता हूं, वो उन्हें सुनना आता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी

0: ये एक ऐसा ख्याल है जिस पे मैंने जो सोचा था वो मैं एक बार कर चुका हूँ कि टोटल ऑडियंस वाज साइलेंट। मैं अर्ज करता हूँ, मैं ऐसे सबको खुश रख रहा हूँ जैसे मैं खुद खुश रहना भूल रहा हूँ। मुझे इल्म नहीं है किसी की बेरुखी का, मैं तो खुद की बेरुखी से मर रहा हूँ। तेरी गोद में सर रख कर फिर कभी रोऊंगा माँ, फिलहाल मैं तुझसे सच बोलने को तड़प रहा हूँ।
1: क्या बात है।
0: मंसूबे गलत नहीं थे मेरे, मैं किसी को समझा नहीं पाया, इसीलिए आज खुद को खुद से अलग कर रहा हूँ।
2: क्या बात।
0: खुद को उलझा लिया है मैंने पहेलियों में, अब सुलझने के लिए दिल तार तार कर रहा हूँ। मुझसे प्यार करने वालों मुझे माफ कर देना, मैं आखिरी दफा आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ।
1: क्या बात है, बहुत जबरदस्त है।
0: आखिरी शेर है कि नहीं रहा दम कि अब एक कदम और भी चल सकूं, ऐ जिंदगी मैं अपनी लाश को इधर से उधर कर रहा हूँ।
1: क्या
3: बहुत बढ़िया।
1: मुझे ऐसा लग रहा है इसको सुन के कि आपने ऐसा कुछ अपने से इंस्पायर्ड होके ये चीज लिखी है, ऐसा कुछ।
0: यस एग्जैक्टली।
1: ओके स्वाति जी, आपके पास आते हैं, क्या ज्यादा पसंद है आपको, ओपन माइक की तालियां या अकेले कमरे में बैठी कुछ बढ़िया सी लाइन?
4: हम सब कवियों का ये है कि हम एकांत जब होते हैं ना, तो हमारे पास भावनाओं का एक श्रृंखला बनते जाता है जिसे हम शब्द देते हैं। और जब हम वो शब्द देते हैं ना, तो हमें लगता है कि कोई सुने और सुनने के बाद उसको सार्थक कर दे, बस हमारी इतनी ही तृप्ति रहती
1: है। जैसे सर ने कहा था, बात चाहिए।
4: हमें उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, बस हम जो अपने भावनाएं रात रात भर कभी कभी महीनों महीनों हम जाके एक रचना पूरी कर पाते हैं, और जब हम चाहते हैं ना कि इसे कोई सुने ना, तो बस उसको सुन के वो सार्थक कर दे। बस इतनी सी इच्छा हमारे पास रहती है, तो बस
1: हम वाह करने के लिए तैयार हैं।
4: बिल्कुल
1: दीजिए आपकी रचना।
4: तो मैं ज्यादा संघर्ष लिखती हूँ
1: जी, जी।
4: और मेरा भी अभी मतलब मैं बैठ तो सीख रही हूँ, लेकिन मुक्तक मेरा एक है, सुनिएगा। क्योंकि हम घर से दूर रहते हैं, प्रॉपर मैं बिहार से हूँ और यहाँ मैं छात्र हूँ, और कोई भी हो, छात्र हो, कोई भी अपने घर से दूर रह रहा है ना, तो ये वो संघर्ष कर रहा है।
1: बिल्कुल।
4: और उसे पता होता है कि एक दिन वो कुछ भी कर ले, उसे घर की तरफ लौटना ही है। तो उसी पे रचनाएं थी।

0: सुमिता जी आपके पास आते हैं
1: जी,
0: आपसे भी सवाल है, क्या ज्यादा पसंद है आपको?
1: देखिए, हर कवि या शायर जो भी है, सबको एकांत ही पसंद होता है। जो तालियों वाला माहौल है, वाहवाही वाला माहौल है, वो तो 2020 के बाद शुरू हुआ। लोग 2020 से पहले भी थे।
0: हाँ जी,
1: ये अच्छी बात है कि डिजिटली ये चीज आई और लोगों को, कई लोगों को पहचान मिली।
0: हाँ,
1: कई लोगों को उनका जो एकांत का लिखा हुआ है वो लोगों के सामने आया। लेकिन अगर आप मेरे से व्यक्तिगत पूछेंगे तो मुझे वाहवाही और तालियों से ज्यादा ये चाहिए होता है कि वाह स्मिता तूने क्या लिखा। वो मुझे बहुत, मतलब कुछ ऐसा लिख दो कि आपको लगे कि हाँ आपने कुछ ना अपने मन को संतुष्ट किया, तो वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। ओपन मिक में भी हम जाते हैं, लेकिन अभी क्या चल रहा है कि कुछ चलन ऐसा हो गया है, क्योंकि कोई चीज जब अधिकता में हो जाती है ना तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। अब ऐसे अधिकता हो गई है कि वहाँ श्रोता नहीं होते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: वहाँ सिर्फ कवि होते हैं। सबको जल्दी है कि हम अपना बोलें, एक दिन के चार चार ओपन मिक हो रहे हैं, तो उसमें ना कोई किसी को सुनता है, ना कोई किसी को परखता है, ना कोई किसी को कुछ बताता है कि भाई तुम अपने को ऐसे

0: प्रचार
1: क्या।
0: अब जब ऐसी माओ से ना हम बेटियां जो आज बाहर निकल पाई हैं उनके सहने की वजह से, तो हम क्या सीखते, बस दो लाइन है
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: कि मैंने

0: का कुछ सच भी बचा रहा है, अपने हिस्से का दरिया भी बचा रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा, क्या बात है, बहुत खूबसूरत रचना है आपकी। सीरियसली ऐसे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मुझे लगता है माँ दुनिया की एक ऐसी चीज है जो सुकून देती है ना
0: जी।
1: तो मैं बहुत अच्छा नहीं लिखती मैं, लेकिन हाँ मैं पढ़ती बहुत अच्छा हूँ। मैंने बहुत अच्छे अच्छे कवियों को, बहुत अच्छे अच्छे शायरों को पढ़ा है, मजाज, फराज, फैज साहब, जॉनी लिया साहब, गालिब, तो बहुत कुछ मैंने सीखा है उनकी रचनाओं से। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लिख लेती हूँ। वैसे ही माँ के लिए लिखा था कि बहुत कुछ मिलता है जिंदगी में, पर है माँ तेरी आंचल जैसी खिली जन्नत नहीं मिलती।
0: बहुत खूबसूरत।
1: सर आपके पास आते हैं, आपसे भी ये सवाल है, आपको क्या ज्यादा पसंद है?
2: मुझे ये पसंद है, हमने कोई चीज मान ली एकांत में लिखी हो, जो देश दुनिया से उठाई हो, उस पे अगर हमें वाह मिले तो बहुत अच्छा लगता है। चाहे वो मंच हो, चाहे ओपन माइक हो,
0: बिल्कुल
2: ऐसी ही एक रचना मैं आपके सामने अगर इजाजत हो।
1: बिल्कुल सर।
2: एक पहले मुक्तक, फिर एक गजल आपके बीच। मुक्तक यूं कहे, ताजगी है हताशा नहीं है, जिंदगी है निराशा नहीं है, ये दिलो जान है शायरों की, शायरी है तमाशा नहीं। और एक गजल है, वैसे तो वो तरन्नुम में है, बहर में है, लेकिन मैं वैसे बहर में पढ़ता हूँ।
1: जी जी।
2: हमें नफरतों को मिटाना पड़ेगा, अमन चैन से दिल लगाना पड़ेगा, वो जिसने हमारे सभी ख्वाब लूटे उसे माफ करके दिखाना पड़ेगा।
1: क्या बात है।
2: कि नफरत हमेशा अंधेरा करेगी, चरागे मोहब्बत जलाना पड़ेगा।
1: क्या बात है।
2: बड़ी मजहबों की दीवारें खड़ी हैं, उन्हें उल्फतों से गिराना पड़ेगा।
3: क्या।
2: और बेटियों के लिए शेर देख लें, सबक हौसलों का सिखा कर पढ़ा कर हमें बेटियों को बचाना पड़ेगा।
0: क्या बात है।
2: और गजल का मक्ता यूं के, अगर चाहता है रहे प्यार जिंदा, तुझे जीत कर हार जाना पड़ेगा।
1: क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया।

0: सब एक अलग चीज है। आपके पास जब आपकी कला है ना तो वो अलग चीज है
1: जी।
0: अगर वो सब होते तो शायद हम ये लिखते ही नहीं, हम लोगों के साथ अच्छे होते
1: जी।
0: जब कोई नहीं बचा, सब खोने के बाद ये मिली, तो ये तो सब कुछ ही है अभी फिलहाल, बाकी ज्यादा बेहतर जानते होंगे।
1: तो जाते जाते कोई और आपकी चंद लाइन जो आप यहाँ पर रखना चाहती
0: हैं? हाँ मैम जरूर, तो चार लाइनों का एक किताब रख देती हूँ मैम, उस इंसान के लिए जिसकी वजह से आज मैं लिख रही हूँ।
1: अरे जी जी।
0: करके वादा मुकर गए तुम भी, बेइरादा मुकर गए तुम भी, जितनी उम्मीद थी मुझे तुमसे, जितनी उम्मीद थी मुझे तुमसे, उससे ज्यादा मुकर गए तुम भी।
1: क्या बात है,
0: शुक्रिया।
1: क्या बात है, वो सुन रहे होंगे वैसे ही। हो सकता है।
0: बिल्कुल आज सुने
1: जी। आलोक जी आपके पास आते हैं, क्या है कविता आपके लिए?
2: अभी जो मैंने जवाब दिया था इस बात का, वो बदल जाएगा।
1: हाँ
2: बेबी, अगली बार मुझसे सवाल।
1: वैसे अभी भी बदल सकता है,
2: अभी
1: आप चाहें।
2: इसलिए
1: तो
2: नहीं कि जो मैंने जवाब दिया था कि शायरी मेरी मजबूरी है, वो मैं माशूका बनाऊंगा और उसका कारण मैं ढूंढूंगा, क्योंकि बिना कारण के किसी बात का जवाब देना मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए ठीक होगा, क्योंकि अपनी ही बात में फंसना मुझे अच्छा नहीं लगता।
1: तो चलिए अगली बार आपसे फिर मिलेंगे और ये जो जवाब है उसका हमें इंतजार रहेगा। तो जाते जाते आपकी कुछ और कोई रचना, कुछ लाइन्स?
2: जी मैं चार लाइनें पेश
1: करता हूं। बिल्कुल।
2: मेरी आंखों की गुलाबी नसें चीख रही थी, मेरी खाल से कोई मेरे रोंगटे खींच रहा था, मेरे आंसुओं को बहने की इजाजत नहीं थी, मुझे क्या बोलना था और मैं क्या बोल रहा था।
1: क्या बात है,
2: बहुत शुक्रिया।
1: क्या बात है स्वाति जी।
3: बिल्कुल।
1: क्या है कविता आपके लिए?
3: कविता मेरे लिए साधना है। हम कोई चीज को मतलब साधना में बदल देते हैं ना, तो हम जितना साधना करेंगे उसके करीब और जाएंगे।
1: मैं कहने वाली थी हंसी आपके लिए, क्योंकि जब से आप आई हैं और आपको कविता की जो कविता के नाम से जो स्माइल आ रही है आपके चेहरे पर।
3: मैं सोच रही थी कि क्या बोलूं
1: जी,
3: तो मेरे लिए साधना ही है
1: जी,
3: मैं
1: जी।
3: जब भी बैठती हूँ कुछ लिखने तो वो एक साधना ही है, माँ भगवती की कृपा होती है तभी हम कुछ रच पाते हैं।
1: क्या बात है।
3: तो
1: कुछ कहना चाहेंगी और जाते हुए आप?
3: हमारे साथ ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो हमें गिराते हैं, हम उठते हैं, कोई गिराने की कोशिश करता है, तो चार पंक्तियाँ उसी पे लिखी थी
1: जी जी।
3: गिराओ मुझे तुम किस हद तक गिरा सकते हो, गिराओ मुझे तुम किस हद तक गिरा सकते हो, खुद को सही मुझे कितना गलत बता सकते हो। आसमान खुला है जमी की गोद खाली है, आसमान खुला है जमी की गोद खाली है, एक इंसान की खातिर कितना पत्थर बिछा सकते हो, एक इंसान की खातिर कितना पत्थर बिछा सकते हो। बहुत शुक्रिया।
1: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।

0: श्वेता जी आपके पास आते हैं जी, आप क्या कहेंगी, क्या है आपके लिए कविता?
1: मेरे लिए तो कविता जो है ना इस पूरी धरा का सबसे खूबसूरत राग है, वो राग जिसे जो अनसुने होते हैं ना वो कवि हृदय सुन लेते हैं। कभी शायद कहा गया है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, वो अनसुने राग जो हम दुनिया को सुनाते हैं ना वो सिर्फ हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो अभी जैसे स्वाति ने बोला कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गिराते हैं और फिर हम उठते हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए कुछ ऐसे लिखा था, चार लाइनें सुना देती हूं, बस लंबी है कविता बट चार लाइनें, कि एक चींटी का रास्ता भी रोकते हैं व्यर्थ बैठे लोग, और आप सोचते हैं कि ये लोग तुम्हें बढ़ाएंगे, जो खुद चल नहीं पाए कभी वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, राहों पर कांटे बोने वाली फितरत हो जिनकी वो तुम्हारे सपनों के लिए क्या कालीन बिछाएंगे, और जो भावनाओं की ऊंचाई छू नहीं पाए कभी वो दूसरों के आसमान नापते हैं, जो उड़ने का हौसला भी जुटा नहीं पाए कभी वो तुम्हारे पंखों की थकान मापते हैं, बढ़ने की बात ना किया करो इनसे, बढ़ने की बात ना किया करो इनसे, ये तुम्हें गिराने का साजो सामान मापते हैं, ये तुम्हें गिराने का साजो सामान मापते हैं, इनकी दुनिया छोटी है इनसे उलझना ठीक नहीं, इनकी दुनिया छोटी है इनसे उलझना ठीक नहीं, ये वो धुंधले आईने हैं तुम्हारी शख्सियत का उन्मान मापते हैं, तुम्हारी शख्सियत का उन्मान मापते हैं।
0: बहुत प्यारा, चार लोग तो नहीं है।

0: जिसे वो एक बार लिख कर अनंत श्रोताओं और पाठकों तक पहुंचा सकता है।
1: हाँ जी,
0: बस मेरे नजर में यही कविता है।
1: तो जाते जाते आपकी कुछ और लाइंस,
0: एक मुक्तक मैं सबके बीच रखता
1: हूं। बिल्कुल सर,
0: एक आदर्श मुक्तक है। न होकर रंग बूतो गुल सिता में कुछ नहीं होता, मोहब्बत के बिना ऊंचे मकाम में कुछ नहीं होता। बहुत रंगीन है दुनिया, बड़ी दिलकश नजारे हैं, मगर माँ बाप से बढ़कर जहाँ में कुछ नहीं।
1: क्या बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। आप सभी से बात करके मुझे बहुत मजा आया। आई होप आप लोगों को रेडियो महारानी के स्टूडियो में आकर उतना ही मजा आया होगा। ये तो आप खुद बताएंगे जब आप इस शो को सुनेंगे। तो सबसे मैंने पूछ लिया है कविता क्या है, तो मैंने जैसे कहा मैं थोड़ा बहुत लिख पाती हूँ। जब शुरुआत में कभी लिखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि क्या लिखूं, क्योंकि बहुत नई थी लिखने में। कविताओं के लिए ही कागजों के लिए लिखा था और पूछा था कि क्या लिखूं मैं, मुझे तुम ही बता दो ना। तो मैंने लिखा था कि कह दूं तुझसे सदियों की कहानी या चंद लम्हों का इतिहास लिखूं, ए कोरे कागज तू ही बता आज क्या खास लिखूं।
2: अरे
1: तो बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो वेरी मच, आप मेरे साथ जुड़े।
2: थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा लगा
1: जी,
2: बहुत ही प्यारा लगा हमें
1: जी
2: यहाँ सो करके
1: जी। तो वक्त बदलता रहेगा, लेकिन जो कविताएं हैं, जो नज़में हैं, जो हमारा लिटरेचर है, वो ऐसे ही जिंदा रहेगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और लिसनर्स, आप सुनते रहें रेडियो महारानी 89.6 FM को छटके। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। भगवद गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। गीता में 18 अध्याय और 7 सौ श्लोक हैं। इसी ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदें सार के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। इन बूंदों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को आशाओं से भरें और सुख एवं संपन्नता से परिपूर्ण जीवन जिएं। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उन्हीं उपदेशों का संकलन है श्रीमद् भगवद गीता।

0: कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता, तुम्हारे कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक गुरु श्री प्रेमानंद जी महाराज के विचार।
1: जो तुम्हारी अवस्था है, जहां तुम फंसे हुए हो, वहां नाम जप करने लगो। इसमें कोई पैसा नहीं खर्चा होना, इसमें किसी के सहयोग की आपको जरूरत नहीं, इसमें कोई स्वाध्याय की जरूरत नहीं है, इसमें किसी पवित्रता अपवित्रता की बात नहीं है, आपके ऊपर किसी भी तरह के कोई सिद्धांत का शासन नहीं है। जैसे भी हो, जहां भी हो, जो भी हो, बस नाम सुमिरन करना प्रारंभ कर दो। सबसे प्रार्थना है आप अपने कल्याण के लिए न सही, भगवत प्राप्ति के लिए न सही, पर जीवन चैन से जी सके, कोई हमारी रक्षा कर सके, कोई हमें सही रास्ता दिखावे, कोई शांति सुख हमारा न छिन पाए, ऐसा कोई समर्थ तो होना। इस सृष्टि में एकमात्र नाम भगवान समर्थ है। सबसे प्रार्थना है, जहां तक आवाज पहुंच रही हो या यंत्रों के द्वारा जब आपको एक कान में सुनाई दे, एक घड़ी 24 मिनट या दो घड़ी 48 मिनट आप नियम ले लो। 24 घंटे में एक घड़ी का नियम ले लो, 24 मिनट का। हमें न परमार्थ समझना है, न कल्याण, न मोक्ष, न भगवत प्राप्ति, पर हमें चैन से जीना है, इसलिए 24 मिनट नाम जप कर लो। 24 घंटे में बिल्कुल छूट है, 24 मिनट नाम जप कर लो। थोड़ी श्रद्धा बने तो अच्छा, न बने तो कोई बात नहीं, हमारी प्रार्थना मान करके शुरू कर दो। आप देखो, बहुत लोगों से मित्रता करते हैं, उनकी बात मानकर घंटों उनके साथ ताश खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, अन्य क्रीड़ाएं करते हैं। आप थोड़ी सी मित्रता हमसे भी कर लीजिए, हम हाथ जोड़कर चरण वंदना करके आपके मंगल के लिए, आपके परम सुख के लिए कहते हैं। यदि आप 24 मिनट हमारे करुणा निधान प्रिया प्रीतम का नाम जप कर लिए, तो फिर आप देख लेना परिणाम क्या होगा, महामंगल। अगर एक घड़ी भी आपको ऐसा रुचि ना बैठे, तो आधी घड़ी 12 मिनट, 24 घंटे में 12 मिनट दे दो हमारे प्रभु के नाम के लिए। ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। एक नाम त्रेलू कहीं तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। हमारे प्रभु बहुत कृपालु हैं, लाई के सम भजन को मानत मेरु।